मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की छठवीं तिथि तदनुसार 25 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं हिंदी समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल

0: बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं इस देशभक्ति गीत के साथ। हिमालय सर पर ताज लिए खड़ा है शान से, तीन समंदर चरणों को चूमते मान से, हर त्योहार पर रंगों की बरसात होती है, ये सुंदरता ही मेरे भारत की पहचान होती है।

एकमात्र वो यथार्थ हैं, वश उनका तीनों काल पे। पूरा जग झूम उठता है भोलेनाथ के डमरू की ताल पे। भगवान शिव शंकर की आराधना में आइए सुनिए सुधा मल्होत्रा का गाया ये भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
1: अग्रगति के लिए शक्ति है, ये वो संकलन है जिसने वर्तमान को पैदा किया है और उस शक्ति का अधिकांश है जो भविष्य का निर्माण करेगी। श्री अरविंद का ये कथन सृजन की निरंतरता और गतिमान जीवन की अबाध परंपरा को उजागर करता है। साहित्य, कलाएं और इतिहास मनुष्य की प्रखर बुद्धि और कर्म के संचित फल हैं, जो धरोहरों के रूप में युगों युगों तक पीढ़ियों से सभ्यताओं से संवाद करती रहती हैं। सृजन को धरोहरों को संस्कृति का उत्कृष्टतम रूप माना जाता है। इसलिए मानव जाति का ये कर्तव्य बनता है कि वो इन्हें संरक्षित करे। आखिर संस्कृति है क्या? मनुष्य अपनी बुद्धि के माध्यम से विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है वही संस्कृति है। इसकी व्याख्या करते हुए विष्णु प्रभाकर कहते हैं, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति के साधनों का जिस ढंग से प्रयोग करता है उससे उसकी सभ्यता का निर्माण होता है, पर चिंतन द्वारा अपने जीवन को सरस, सुंदर और कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो यत्न करता है उसका परिणाम संस्कृति में प्राप्त होता है। मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया, दर्शन शास्त्र के रूप में जो चिंतन किया, साहित्य, संगीत और कला का जो सृजन किया, सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए जिन प्रथाओं और संस्थाओं को विकसित किया, उन सब का समावेश हम संस्कृति में करते हैं। मानव की जो योग्यता आग या सुई धागे का आविष्कार कराती है वो भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी करती है वो भी संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वो भी संस्कृति है। किसी भी मानव समूह के उन सब क्रियाकलापों को उस समूह की संस्कृति कहते हैं जिन क्रियाकलापों के द्वारा वो समूह मानव उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना विशेष अर्थ रखता है कि वो व्यक्ति की संस्कृति ही है जो उसकी आत्मा को मांझकर दूसरों के उपकार के एवज में उसे नम्र और विनत बनाती है। संस्कृति ही आत्मा के बाह्य सौंदर्य को विकसित करती है। संस्कृति की कमी ही व्यक्ति को कुरूप और विकृत बना देती है। संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है और ये तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। संस्कृति एक समग्र समाज की निर्मात्री प्रतिभा होती है जो व्यक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, कार्यक्षम होती है, क्रियाशील होती है। सचमुच वही संस्कृति जो व्यक्ति चरित्र का गठन करती है, उसे अद्वितीय रूप देती है, फिर उसी व्यक्ति में से बहती हुई पूरे समाज का अभिषेक करती है, यही संस्कृति की सृजनशीलता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह भी है कि संस्कृति का पौध बेहद नाजुक होता है। अनेक यत्नों और सावधानियों के बाद ही वो किसी समाज में फलता फूलता है। उसके लिए व्यक्ति का अभिमान और कौम का अभिमान सबको तिलांजलि देनी पड़ती है। मानव जाति जिस दिन संस्कृति के महत्व को समझेगी उसी दिन वो अपनी आत्मा के साथ साक्षात्कार करने की योग्य हो सकेगी। संस्कृति ना तो भौगोलिक सीमा बंधनों को महत्व देती है और ना राजनीति को ही। संस्कृति तो अखिल मानवता की सम्मिलित पूंजी है। दुनिया में कला, साहित्य और शिल्प के रूप में जो भी सृजन हुआ है वो मनुष्य की संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है। विरासतों के माध्यम से संस्कृति को हम जानते समझते हैं तो क्या इनके साज संभाल का दायित्व हमें अपने आप में पैदा नहीं करना चाहिए?
0: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर गर्जन सिंह वरकड़े का था। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर सुरेश वाडकर का। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

काक भुशुंडी से श्री रामचरित और स्वयं उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु एक प्रश्न फिर भी उनके मानस में कौंध किया। प्रश्न था कि संत, ऋषि मुनि, वेद सभी ज्ञान को सर्वाधिक दुर्लभ उपलब्धि बताते हैं, किंतु काकभुशुंडी ज्ञान को भक्ति का सा स्थान नहीं देते। ज्ञान और भक्ति में कितना और क्या अंतर है? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, हे पक्षीराज, ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भौतिक दुख दैन्य मिटाने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं, जिसका प्रताप प्रबल होता है। इसके विपरीत माया और भक्ति स्त्री वर्ग की हैं। ज्ञानी मुनि भी चंद्रमुखी हिरण सी आंखों वाली स्त्री का रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। उधर माया दूसरी स्त्री अर्थात भक्ति को देखकर सकुचा जाती है। रघुनाथ जी को भक्ति अधिक प्रिय है, अतः माया भक्ति से सदा भयभीत रहती है और उस पर हावी नहीं हो सकती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर सुरेश वाडकर का था, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चुकोट।
1: पकड़ी तग तोड़ेल और बेकुम बुरका कड़ेल कोनुरस्ती रहे, लेकिन अधीन उर्सी मंज वीरसनाथ आयो बाली की इले वीर्स के पौधला तगा उड़ो के पौधला तगा पुड़क वास मंज नुकसान किया नाद। अद पुड़क ना पेधेड़ मनता लाली पुड़क, इत पुड़क पौधला ना आकी किन तेना पुंगार किन और फर किन तिंदनाद। इत पुड़क आकिना मोदल मदनाद, तेना रोकताम लाई 1 किलोग्राम कार्बोरिल और 1 किलोग्राम राखड़ी किन प्रति हेकड़ भूम तगा इतकनाद। इलो के 500 ग्राम कार्बोलिक 50% गोला की तनाद पाउडर किन 100 लीटर एरते गोला की समान इतकनाद। और वोन पुड़ का आता परविस्क, परविस्क लेता फर तगा गड़वाम यनाद। अध गड़वाम तगा टाद पुड़क वास मंज तेना गुदा किन तिंदनाद। इले तित के फर नुकसान आयनाद और इदिन 8 बजार तगा वम के गलाय मावा कम दोरकनाद। तेना रोकताम लाय 250 किलोग्राम फेनित्रो तियन 50 EC इलो के 400 मिलीलीटर मेलाथियन इलो की 500 ग्राम कार्बोलिक धूले मत्ताद पाउडर और 1.2 किलोग्राम गुड़ाम किन 250 लीटर एरते मिला किस मंज 10 दिन ते अंतर ते प्रति एकड़ ते इतकनाद। और वोंड आता माऊ पुदका पुड़क, इत पुड़क आकिना रस किन उकनाद। इदिन कारण ते फसल वेंडे कमजोर आयनाद, तेना उपज वेंडे कम आता। इदिन रोकताम लाय 250 मिलीलीटर मेलाथियन और 50 EC 350 लीटर एरतगा मिला किस्मंज 10 दिन तक अंतर ते इतकनाद। इत कौन अत्ता पुड़क और इद बीमारी वेंडे आयनाद, तेना बीमारी ना पेदेड़ आता भभूतिया रोग और दूसरा आता डाउनी मिल्ड्यू और तीसरा आयनाद एंथ्रक नोज व स्केल। और भभूतिया रोग इद फपुंदी आकी तेना तना नगा सफेद चूर्ण जमा आयनाद, तेबे तेना आकी वेंडे मड़कनाद।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गणपति कड़ियारी और साथियों का बजाया कासन पाड़। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आज शाम 5:00 पद्मा अवार्ड्स 2026 का सीधा प्रसारण आप सुन सकेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे काव्य सरिता। इसमें आप सुनेंगे स्वतंत्र वार्ता के अंतर्गत माधवी यादव से वार्ता। विषय होगा क्यों रूठी प्रकृति। कविता पाठ प्रस्तुत करेंगे सुभाष चंद्र साहू और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम लोक मंजरी में आप सुन सकेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म होगी एक विलन। कार्यक्रम गुलशन में आज सुबह 10:00 हम आपको सुनवाएंगे पुराने नगमे। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुबह 10:30 पर सुनेगा फूलधर वड्डे और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। सुबह 11:00 कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का हमारे कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता सुनील दत्त पर। लोकगीतों के कार्यक्रम पाटा केंजा में दिन के 11:30 पर सुनेगा मासो और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत। लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी का प्रसारण हम करेंगे दिन के 12:00। इसमें घासीराम से सुनेगा हल्बी कहानी। ठसा संचालन होगा गोपाल पोयाम का और गोंडी कविता सुनवाएंगे उग्रेश्वर काम। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार दोपहर 12:30 पर। कृषि सामयिकी की बेड़ा खड़ा चुगुट का पुनः प्रसारण हम करेंगे दोपहर 1:05 पर। फरमाइशी फिल्म गीतों के कार्यक्रम श्रोता सुमन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:10 का। दोपहर 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कला और कलाकार। हमारी सांध्यकालीन सभा में आज शाम 5:05 पर होगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। इसका प्रसारण हम करेंगे हल्बी बोली में। शाम 5:10 पर सुनेगा युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी हल्बी बोली में। दिलीप कुमार पांडे और साथियों के गाए लोकगीत आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर

0: के स्वर शाम 7 बजे। ग्रामीण कार्यक्रम आमचो गांव हम आपको सुनाएंगे शाम 7:21 पर। आज रात 8 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम नानोली में सुनिएगा दुकारू सोढ़िया और साथियों के गाए गोंडी लोक गीत। कार्यक्रम पीलामन काजीगोट रात 8:30 पर। इसमें मुंशी प्रेमचंद पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भरत कुमार गंगाधित्य। जीवना चूसूर, इस कार्यक्रम में सुनिएगा महिला स्व सहायता समूह की सदस्य रुक्मणी साहू से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे बलबीर सिंह कच्छ। प्रसारण समय होगा रात 9:15 का। रात 9:30 पर भेंट घाट कार्यक्रम में सुनिएगा साक्षरता की आवश्यकता विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। और आज रात 10 बजे कोदोमाली कार्यक्रम में सुना जा सकेगा हल्बी जगार गीत। गायक कलाकार होंगे जयमणि और साथी। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। नवदिल्ल्यां विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयः विदेशमंत्री मार्को रूबियो च विभिन्नेषु विषयेषु सविस्तरं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ भारतामेरिका रणनैतिक सहभागितां भूयः अपि दृढ़ायितुं स्वस्व प्रतिबद्धतां पुनः उदीरितवन्तौ। ताभ्याम् उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापारोर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षादि क्षेत्रेषु विशेषतः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य अमेरिकादेशेन सह व्यापकः वैश्विकः रणनैतिक सहभागित्व सम्बन्धः वर्तते, यः खलु गहन सहयोगाधृतः वर्तते। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्णविश्वे प्रभावं जनयन्ति, अपि च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमानचर्चा कठिनवैश्विकपरिस्थितिषु अभवत्, परञ्च मुक्तमनसा सार्थका चर्चा अभवत् इति तस्य विश्वासः। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापारसन्धेः निर्णायकरूपेण निर्धारणम् अचिरमेव भवेत् इति आवश्यकम्। तेन ऊर्जा व्यापारे जातः विस्तारः अभिनन्दितः, अपि च उक्तं यत् विविधेभ्यः स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: अमेरिका विदेश मंत्री उक्तवान् यत् उभौ देशौ आतंकवाद कारणात् कष्टम् अनुभूतवन्तौ। भारतम् अमेरिका च तेषु सर्वेषु प्रमुख विषयेषु रणनीतिक रूपेण एकमतौ स्तः, ये नूतन शताब्दीं परिभाषयिष्यन्ति। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् अमेरिका देशीयः विदेश मंत्री मार्को रूबियो चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे सम्प्रति भारते अस्ति। सः अस्य मासस्य 26 दिनांके अर्थात् श्वः क्वाड विदेश मंत्रिणां सम्मेलने सहभागं करिष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने सुमहद् विजयम् अवाप्नोत्। श्री पांडा 21,900,000 भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दलस्य शंभुनाथ कुर्मिणं पराजितवान्। तत्र कांग्रेस दलस्य अब्दुर रजाक मोल्लाह तृतीय स्थाने, अपरतः तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खान चतुर्थ स्थाने अवर्तताम्। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचनस्य मतदानकाले बृहत्स्तरे दुराचारस्य आरोपानन्तरं निर्वाचनायोगः फाल्टानगरे पुनः मतदानस्य आदेशं प्रदत्तवान्। ध्यानास्पदमस्ति यत् अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके पुनः मतदानम् अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य राष्ट्रपतिभवने षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमाब्दस्य प्रथमे नागरिकालंकरणसमारोहे षट्षष्टि पद्मपुरस्कारान् प्रदास्यति। अत्र उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः, अन्ये च सम्मान्यजनाः उपस्थिताः भविष्यन्ति। देशस्य मध्योत्तर पश्चिमीय दिग्विभागेषु अतितापकारणात् जनजीवनं पर्याकुलितम् अस्ति। अत्र क्षेत्रेषु प्रायः समाना एव स्थितिः आगामिभ्यः षड् दिवसेभ्यः प्रवर्तिष्यते इति भारतीयर्तुविभागेन सूचितम्। क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम्। अपरतः राजस्थान रॉयल्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं त्रिंशद्धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमरीका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर, अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

श्रोताओं, गर्मी की सुबह आलस तोड़ने आती है। सूरज की पहली किरण मानो कहती हो, गर्मी तपिश नहीं, तुम्हारी मेहनत का इम्तिहान है। धूप तेज है तो क्या हुआ, हमारे इरादे उससे भी तेज होने चाहिए। नई सुबह और नई उत्साह के साथ आप सभी के मंगलमय दिवस की कामना लिए आज का नमस्कार जगदलपुर लेकर हाजिर हूं मैं सुशील सिंह ठाकुर। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रम में आज है काव्य सरिता के अंतर्गत स्वतंत्र वार्ता और कविता पाठ, और है फिल्मी गीतों की मधुरिमा। न नियम टूटे न वक्त की कदर घटी, खेल ने ही तो हमको इंसानियत सिखा दी। टीम में रहकर मैं को हम बनाना, खेल ही है जो सिखाता है साथ निभाना। श्रोताओं, ये पंक्तियां काफी है हमारे जीवन में खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए। खेल हमारे जीवन में सिर्फ मनोरंजन का एक साधन नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का एक शक्तिशाली माध्यम है। श्रोताओं, खेलों का महत्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, ये मानसिक मजबूती, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, टीमवर्क और आत्मविश्वास जैसे गुणों को विकसित करने में भी सहायक होता है। चाहे कोई बच्चा हो, युवा या बुजुर्ग, खेल सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और जीवन जीने का नया नजरिया लाते हैं। श्रोताओं, खेल सार्वभौमिक है, चाहे आप देख रहे हों या खेल रहे हों। ये एक भाषा है जो लोगों को एक साथ लाती है। संस्कृतियों और महाद्वीपों में खेल जुनून जगाता है, प्रतिस्पर्धाएं पैदा करता है और समुदायों का निर्माण करता है। प्राचीन काल से पूरे विश्व भर में बहुत से खेल खेले जा रहे हैं और वर्तमान समय में व्यावसायिक पहलू से वैश्विक स्तर पर खेलों की परिभाषा बदल गई है। आज फुटबॉल, या जिसे अमरीकी देशों में सॉकर भी कहते हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में जाना जाता है। अपनी सरलता और कम उपकरणों की आवश्यकता के कारण 200 से अधिक देशों में खेले जाने वाले इस खेल के विश्व भर में 3.5 अरब से भी अधिक प्रशंसक हैं। श्रोताओं, 25 मई का आज का यह दिन पूरी दुनिया भर में विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का

श्रोताओं, वर्ष 2026 फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा वर्ष है, क्योंकि इस साल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा। इतिहास में पहली बार तीन देश, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं और इस बार 32 के बजाय 48 टीमें विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं। श्रोताओं, हमारे देश में क्रिकेट की अपार लोकप्रियता के बीच फुटबॉल के प्रशंसकों की भी कमी नहीं है। देश के युवा वर्ग में आज भी फुटबॉल के प्रति दीवानगी है। भारत से बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री जैसे महान फुटबॉलर निकले हैं, जिन्होंने एशिया और पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारा भारत देश भी फुटबॉल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में जरूर कामयाब होगा।

0: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
1: पवन के ठंडे झोंके के साथ
0: हिलोरे लेगी
1: आकाश की वाणी।
0: आकाशवाणी
2: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जग

0: जबलपुर आकर
1: या फोन करें 222150 या 222400
2: 222150 या 222400।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1-5-1-0-2।
6: श्रोताओं, सूचना। हमारे कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक होती है। इस बार की रिकॉर्डिंग का विषय होगा मिलेट्स फसल प्रसंस्करण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार निषाद। इस विषय में जानकारी हेतु और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आप हमें फोन कर सकते हैं कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी में। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब चलते हैं काव्य सरिता की ओर और सुनते हैं क्यों रूठी प्रकृति विषय पर स्वतंत्र वार्ता। वार्ताकार हैं माधवी यादव।
7: आप सभी को पता है कि हम जिस धरती पर रहते हैं वह सबसे सुंदर ग्रह है। हरियाली युक्त सुंदर और आकर्षक है। कुदरत हमारी सबसे अच्छी साथी होती है जो हमें इस धरती पर जीवन जीने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराती है। प्रकृति हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए और रहने के लिए जमीन देती है। प्रकृति हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण संसाधन है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए आवश्यक हैं। परंतु प्रकृति का संतुलन हम स्वयं मनुष्य ही बिगाड़ देते हैं, जो कि एक अभिशाप है हमारे स्वयं के लिए। जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की तपती गर्मी को लगातार ग्रहण करने की वजह से आज हमारी पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए लोगों को इसके कारण और प्रभाव का पता होना चाहिए, जिससे इसका समाधान हो सके। आज पृथ्वी पर प्रकृति का अभिशाप वायुमंडल के रूप में ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से धरती का तापमान इतना बढ़ रहा है। ऐसा आकलन किया जा रहा है कि जीवन के लिए इस धरती पर कई मुश्किलें उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हैं। मनु ने कहा है कि जब पाप अधिक बढ़ता है तो धरती कांपने लगती है। यह भी कहा गया है कि धरती घर का आंगन है, आसमान छत है, सूर्य चंद्र ज्योति देने वाले दीपक हैं, महासागर पानी के मटके हैं और पेड़ पौधे आहार के साधन। हमारा प्रकृति के साथ किया गया वादा है, वह जंगल को नहीं उजाड़ेगा, प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ नहीं करेगा, ऐसी फसलें नहीं उगाएगा जो तलातल का पानी सोख लेती हों, बात बेबात पहाड़ों की कटाई नहीं करेगा। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात नहीं करती। इसके द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। लेकिन जब हम प्रकृति से अनावश्यक खिलवाड़ करते हैं, तब उसका गुस्सा भूकंप, सूखा, बाढ़, तूफान की शक्ल में हमारे सामने आता है। फिर लोग काल के गाल में समा जाते हैं। कालिदास की शकुंतला में शकुंतला वन में पली बढ़ी जब विदा होकर ससुराल जाती है तो ऋषि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि देवी देवताओं से भरे वन वृक्षों को शकुंतला तुम्हें पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, जो आभूषण प्रिय होने पर भी स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती थी, जो तुम्हारे पुष्पित होने के समय उत्सव मनाती थी, वह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। तुम सब मिलकर उसे विदा करो। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य सड़क के किनारे और जलाशयों के तट पर वृक्ष लगाता है, वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता फूलता है जितने वर्षों तक वह वृक्ष फलता फूलता है। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि साहित्य में आदर्शवाद का वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है। अरस्तु ने कहा है कि प्रकृति से मनुष्य का संबंध अलगाव का नहीं, प्रेम उसका क्षेत्र है। इन सभी ने प्रकृति के लिए इतनी प्यारी प्यारी बातें कही है, परंतु अब वही प्रकृति में अनावश्यक व्यभिचार और प्रदूषण इस प्रकार बढ़ रहा है कि कुछ वर्षों बाद इनके द्वारा कही गई बातें व्यर्थ और निरर्थक साबित न हो जाए। वर्तमान में विकास के तथा कथित मॉडल ने पूरी दुनिया को वैश्विक ग्राम का रूप प्रदान तो किया है, किंतु मानवीय मूल्य, संवेदनाएं, सामाजिक सरोकार और प्रकृति के प्रति हमारा व्यवहार सब कुछ कहीं खो सा गया है। तथा कथित विकास के परिणाम स्वरूप जन्मी अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं वस्तुतः हमारी वस्तुपरक भोगवादी दृष्टि का ही नतीजा हैं। अपने लाभ के लिए मनुष्य द्वारा विकास के नाम पर कई ऐसे आविष्कार भी कर दिए गए जो जल, जंगल, जमीन में जहर घोल रहे हैं, परंतु प्रकृति के उपहारों का ऐसा दुरुपयोग किया है कि धरती, आकाश, पाताल जहाँ से भी मिल सकता था उसे लेने में कोई कसर बाकी न रखी। वैज्ञानिकों द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद प्रकृति से अधिकतम पदार्थ प्राप्त कर लेने की इच्छा खत्म नहीं हो रही। प्रकृति के बेहिसाब दोहन के परिणाम स्वरूप अकाल, बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाएं हमारे सामने आ रहे हैं, और ये सभी प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति का अभिशाप ही हैं। पर्यावरण संकट से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली जनधन आदि की हानि भी विकास की अंधाधुंध रफ्तार को रोक नहीं पाई है। उपजाऊ जमीन, घने जंगल, अनेक प्रकार के स्रोत सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन विकास की सीमा रेखा को खतरा साबित हो चुके हैं। प्रकृति के अभिशाप में ज्वालामुखी आता है जो पर्वत के फट जाने से उबलती गर्म लावा निकलती है। उसकी आग की लपटें आसमान को छूती हैं जो कि वर्षा के विनाश का कारण है। ज्वालामुखी से बड़े बड़े नगर तक ध्वस्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी जहरीली गैसें, जल वाष्प, राख, चट्टान के चूर्ण आदि प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, जीवन को दुभर बनाते हैं और भूमि को श्मशान बना देते हैं। इस प्रकोप से बड़ा प्रकृति के लिए अभिशाप और कोई नहीं हो सकता। भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप से भूस्खलन, नदियों के मार्ग रुक जाते हैं, बाढ़ आती है, भूमि पर दरारें पड़ जाती हैं, इससे प्रकृति का लगभग विनाश ही हो जाता है। आप सभी को तो ये पता ही है कि अत्यधिक वर्षा से प्रकृति कितना भयावह रूप लेती है। नदी, नाले, तालाब अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं। चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। बड़े बड़े पेड़ पानी में बह जाते हैं। खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बाढ़ की स्थिति आ जाती है जो कि प्रकृति के लिए एक अभिशाप है। प्रकृति का अभिशाप अत्यधिक गर्मी भी है। अधिक गर्मी से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं। कभी कभी अत्यधिक गर्मी आग उगलती है तो वनों में आग लग जाती है। आज जब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है तो सभी बिलखने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है, सरकार विरोधी नारे लगने लगते हैं, कुछ तो ईश्वर को भी कोसने लगते हैं। मगर किसी ने सोचा भी है कि ऐसा होता क्यों है? हमारी अधिकांश समस्याएं वस्तुपरक भोगवादी दृष्टि से ही पैदा हुई हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज अधिकांश जल स्रोत प्रदूषित होकर समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जल संकट साल दर साल गहराता जा रहा है। हरी भरी जमीन जल विहीन होकर रेगिस्तान में बदलने की स्थिति में है। हवा में बढ़ता जहरीला धुआं बढ़ते बढ़ते ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाने की स्थिति निर्मित कर चुका है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई पर्यावरणविद ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बताते हैं। मानवीय लालच ने प्रकृति की विनाश लीला का काला अध्याय लिखा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रकृति में जो असंतुलन हो रहा है उसके लिए मानव जाति ही जिम्मेदार है। विकास की दौड़ में सरपट भागते इंसानों ने प्रकृति से खिलवाड़ करके वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी की स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। ऐसे हालात में यह जरूरी हो गया है कि विकास को इस प्रकार सीमित व व्यवस्थित बनाया जाए कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रह सके। विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार निर्धारित की जाए कि उससे प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत असर न पड़े। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन उसके लालच की पूर्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति के अभिशाप के जो भी कारण हैं, वह मानव द्वारा ही निर्मित किए गए हैं। बाढ़, अकाल और जो भी प्राकृतिक आपदा हैं, वह सब मानव के कारण ही हैं। हम मानव बड़े बड़े आविष्कार के चक्कर में भूल जाते हैं कि जिस प्रकृति को हम इन आविष्कारों से नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह हमारे स्वयं के लिए एक अभिशाप है। इसे वक्त रहते अगर हमने नहीं समझा तो प्रकृति का विनाश हमारा विनाश कहने में समय नहीं लगेगा।
6: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्र वार्ता में क्यों रूठी प्रकृति विषय पर वार्ता। वार्ताकार थी माधवी यादव।
0: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
0: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्टवेव पर, एफएम पर। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102, या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
8: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
9: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
6: नमस्कार, जगदलपुर में काव्य सरिता के अंतर्गत आइए अब सुने कविता पाठ। प्रस्तुति है सुभाष चंद्र साहू की।
10: मेरी पहली कविता है माँ वागेश्वरी। मन में निर्भयता भर दे माँ वागेश्वरी, मन में निर्भयता भर दे माँ वागेश्वरी, कंठ में भी तो बल दे माँ वागेश्वरी। मन में निर्भयता भर दे माँ वागेश्वरी, कंठ में भी तो बल दे माँ वागेश्वरी। सदा मैं लिखता रहूं, सदा ही पढ़ता रहूं, सदा मैं लिखता रहूं, सदा ही पढ़ता रहूं, जग कल्याण करता रहूं। सदा मैं लिखता रहूं, सदा ही पढ़ता रहूं, जग कल्याण करता रहूं, मेरी सारी जड़ता हर ले माँ वागेश्वरी, मेरी सारी जड़ता हर ले माँ वागेश्वरी, सुभाष का ऐसा वर दे माँ वागेश्वरी, मन में निर्भयता भर दे माँ वागेश्वरी, हर दिशा उज्जवल कर दे, जीवन भी निर्मल कर दे, हर दिशा उज्जवल कर दे, जीवन भी निर्मल कर दे, सत्संग चलूं सबल कर दे, हर दिशा उज्जवल कर दे, जीवन भी निर्मल कर दे, सत्संग चलूं सबल कर दे, पग को ऐसा डगर दे माँ वागेश्वरी, सुभाष का ऐसा वर दे माँ वागेश्वरी, मन में निर्भयता भर दे माँ वागेश्वरी, कंठ में भी तो बल दे माँ वागेश्वरी। मेरी अगली कविता है हवा बन तू आ जाती, जो तू मुझे है

मन हवा बन तू काश आ जाती, जो तू मुझे है याद आती, जो तू मुझे है याद आती। चाहता मन

मेरी अगली कविता है भावना भरी सूरत। भावना भरी सूरत में कई कहानी छुपी है। भावना भरी सूरत में कई कहानी छुपी है, वर्तमान भविष्य संग कुछ पुरानी छुपी है। भावना भरी सूरत में कई कहानी छुपी है, वर्तमान भविष्य संग कुछ पुरानी छुपी है। होठों पे हरकत नहीं पर उसमें भी कुछ दबी है। होठों पे हरकत नहीं पर उसमें भी कुछ दबी है। अगर भावनाओं को समझो तो कोई जुबानी छुपी है, वर्तमान भविष्य के साथ कुछ पुरानी छुपी है। एक टक देखती

0: आंखों से बूंद आंसू भी टपक नहीं रही। एकटक देखती आंखों से बूंद आंसू भी टपक नहीं रही, पर ये तो गौर करो कि कितनी नमी छुपी है, पर ये तो गौर करो कि कितनी नमी छुपी है, वर्तमान भविष्य के संग कुछ पुरानी छुपी है। चमकती बिंदिया तो दास्ताएं रात चांदनी कह रही है। चमकती बिंदिया तो दास्ताएं रात चांदनी कह रही है, पर दुख घड़ी की कहानी तो गेसुओं में रात काली तूफानी छुपी है। पर दुख घड़ी की कहानी तो गेसुओं में रात काली तूफानी छुपी है, वर्तमान भविष्य के साथ कुछ पुरानी छुपी है। भावना भरी सूरत में कई कहानी छुपी है, भावना भरी सूरत में कई कहानी छुपी है। मेरी अगली कविता है मेरी सखी बनी। चाहे मन घड़ी रहे थमी, चाहे मन घड़ी रहे थमी, जो तुम मेरी सखी बनी। चाहे मन घड़ी रहे थमी, जो तुम मेरी सखी बनी। बना रम्य उद्यान हर्षाया मन, बना रम्य उद्यान हर्षाया मन, उद्वास पुष्प पाया कविता कानन। आलोकित हुआ मेरा तम ही अजमी, जो तुम मेरी सखी बनी। बोल तुम्हारे सुने सदैव कर्ण चाहे, बोल तुम्हारे सुने सदैव कर्ण चाहे, रहे तुम पे हरदम ये चितवन भाए। बोल तुम्हारे सुने सदैव कर्ण चाहे, रहे तुम पे हरदम ये चितवन भाए। भा गई तुम्हें भी तो मेरी कटाक्ष चितवनी, और तुम मेरी सखी बनी। दे मलयज सी सुरभि तुम्हारी तनु, दे मलयज सी सुरभि तुम्हारी तनु, हो स्मित अधर तो आए उषा मधु। दे मलयज सी सुरभि तुम्हारी तनु, हो स्मित अधर तो आए उषा मधु। लगने लगी मुझे भी अब हर क्षण सुहावनी, लगने लगी मुझे भी अब हर क्षण सुहावनी, जो तुम मेरी सखी बनी। चाहे मन घड़ी रहे थमी, चाहे मन घड़ी रहे थमी।
1: काव्य सरिता के अंतर्गत कविता पाठ में आपने सुनी सुभाष चंद्र साहू से उनकी कविताएं। आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसमें अब पेश है मधुरिमा।

तेरी एक मुस्कान पर ये जान निसार कर दूं, हुक्म जो तू करे हर ख्वाब तेरे नाम कर दूं, मांग ले ये जिंदगी भी हंस के दे दूंगा, इश्क में तेरे मैं खुद को बेशुमार कर दूं।

तेरे जाने के बाद लफ्ज भी रूठ गए हमसे, अब खामोशी से ही बातें किया करते हैं। दिल तो धड़कता है अब भी तेरे ही नाम से, पर होठों पे कोई शिकवा लाया नहीं करते हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: तुमसे मोहब्बत सांसों जैसी है मेरी, रुक जाए तो जिंदगी ही खत्म हो जाए। दुनिया की हर दौलत ठुकरा दूं तेरे लिए, क्योंकि तू मिल जाए तो खुदा भी मिल जाए।

वक्त की आंधी ने हमको उड़ा दिया, एक ही शहर में रहकर अनजाना बना दिया है। मिलने की चाहत अब भी बाकी है दिल में, पर दूरियों ने रास्ते को धुंधला बना दिया है।

तेरे बिने जीने का सोच भी नहीं सकता। तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम है। लिख दे किस्मत में मेरा नाम तेरे साथ, क्योंकि तुझसे ही मुकम्मल मेरा अंजाम है।

मध्यरिमा के इन्हीं गीतों के साथ ही आज के नमस्कार जगदलपुर से सुशील सिंह ठाकुर को दीजिए अनुमति। आप सबका दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
3: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
5: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
3: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
8: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत

0: को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के

कार्यक्रम लोक मंजरी में आप सुन रहे हैं विभिन्न बोलियों में लोकगीत। कार्यक्रम का अगला गीत गोंडी बोली में, कलाकार हैं दशरू राम और साथी।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: कार्यक्रम के अंत में आइए सुने नीरमती और साथियों का गाया ये हल्बी खेल गीत।

अभी आप सुन रहे थे विभिन्न बोलियों में लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
3: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
4: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने? हम जिनसे आशा भी नहीं करते, वे भी हमारे

निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान

0: योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
0: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्धशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
2: जवानों,
3: जी सर,
2: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
3: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
2: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
4: जी सर।
2: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
4: जी जनाब।
2: हाथ गोला हाथ में लो।
4: ले लिया जनाब।
2: अब पिन रिलीज करो।
5: फेंको,
4: फेंका जनाब।
6: अरे ये क्या हुआ,
7: ये क्या हुआ?
6: अरे बच्चों,
7: फट जाओ,
6: सब पीछे हटो, पीछे हटो, जमीन पर लेट जाओ,
7: वहाँ निकल जाओ, वहाँ निकल
0: जाओ। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
4: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
3: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
4: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
4: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
0: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
3: Yes, come in.
9: Sir.
3: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
3: Well done, Eddie. तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
9: Thank you, sir. Sir, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
3: हाँ हाँ, कहो।
9: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
3: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
9: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
3: गो अहेड यंग मैन।
9: सर।
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
1: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग

0: पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
1: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
2: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
3: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
2: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
4: जी जनाब।
5: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
2: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
2: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
2: फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
3: सर, ये टैंक तो गया।
2: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
3: यस सर।
1: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
0: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।
6: GST काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
7: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हां, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक। तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782-222-666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
5: वीडियो वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है साल 2014 में रिलीज हुई मोहित सूरी निर्देशित सुपरहिट रोमांटिक थ्रिलर फिल्म एक विलेन।

फिल्म एक विलन में सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख मुख्य भूमिकाओं में थे। अपने शानदार हास्य अभिनय के लिए जाने जाने वाले रितेश देशमुख ने इस फिल्म में पहली बार एक खलनायक का किरदार निभाया था। ये उनके करियर की सबसे बड़ी नॉन कॉमेडी हिट फिल्म थी।

फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था, जिन्होंने श्रद्धा कपूर के साथ पहले सुपरहिट फिल्म आशिकी 2 भी की थी। फिल्म एक विलेन को इसके शानदार संगीत के लिए भी जाना जाता है, जिसका निर्देशन मिथुन और अंकित तिवारी ने किया था। ये दोनों कलाकार भी आशिकी 2 के साथ आए थे।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: अपनी बेहतरीन कहानी, दिल को छू लेने वाले संगीत और किरदारों के लिए मशहूर ये फिल्म साल 2014 की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म से अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के करियर को भी उड़ान मिली।

जाने माने संगीतकार मिथुन के साथ साथ अंकित तिवारी ने भी फिल्म के संगीत के लिए खूब प्रसिद्धि बटोरी थी। फिल्म का संगीत उस साल का सबसे बड़ा आकर्षण था। तेरी गलियां और बंजारा जैसे गाने आज भी खूब पसंद किए जाते हैं। तो आइए सुनते हैं मनोज मुंतशिर की शब्द रचना में अंकित तिवारी का गाया और संगीतबद्ध किया ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी एक विलन। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। प्रादेशिक
1: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया, समान नागरिक संहिता से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते प्रदेश के किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। और जशपुर जिले के अनिमेश कुजूर ने फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह समागम आने वाले वर्षों में जनजातीय महाकुंभ के रूप में वैश्विक पहचान बनाएगा। श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय कल्याण का बजट 28,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लोगों से भ्रांतियों से बचने और एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रीय जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज दुनिया को प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग दिखा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवंत स्वरूप है। उन्होंने जनजातीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। श्री साय ने कहा कि आदि परब, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन जनजातीय पहचान और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले दो सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते प्रदेश के किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार बीते वर्ष किसानों को वितरित की गई उर्वरक की मात्रा के आधार पर इस वर्ष का कोटा तय किया गया है। इसके तहत इस वर्ष किसानों को यूरिया की 80% मात्रा ही पारंपरिक यूरिया के रूप में दी जाएगी। शेष 20% मात्रा उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाएगी या उसके बदले नैनो यूरिया दिया जाएगा। डीएपी वितरण भी पिछले वर्ष के मुकाबले 60% ही किया जाएगा। शेष 4% मात्रा के लिए वैकल्पिक एनपीके उर्वरक या नैनो डीएपी उपलब्ध कराया जाएगा। बलरामपुर जिले में सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। ईंट से लदे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम एक ही बाइक पर सवार होकर चारों युवक बाजार से लौट रहे थे, उसी समय यह हादसा हुआ जिसमें चारों की जान चली गई। जशपुर जिले के अनिमेश कुजूर ने फेडरेशन कप 2026 में 200 मीटर दौड़ 10.15 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। निमेश कुजूर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अनिमेश को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते प्रदेश के किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम दिया जाएगा। और जशपुर जिले के अनिमेश कुजूर ने फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन, इसमें हम आपको सुनवाएंगे पुराने नगमे। कार्यक्रम का पहला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। ममता फिल्म के इस गीत को संगीत से सजाया है रोशन ने, शब्द मजरूह सुल्तानपुरी के।

आइए अब सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म दोस्ती से मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान, बीज से लेकर बाजार तक।

0: हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक। तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: गुलशन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पुराने नगमे। इसमें अब सुनिए फिल्म हावड़ा ब्रिज से आशा भोसले का गाया ये गीत। ओपी नैयर का संगीत, बोल लिखे हैं कमर जलालाबादी ने।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल स्वरों में पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी के

तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म छाया से कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा। राजेंद्र कृष्णन की शब्द रचना, संगीतकार हैं सलील चौधरी।

0: गुलशन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पुराने नगमे।
1: जीएसटी परिषद आपलो 56वां बसका ने देह पाए लागून सुविधा और सामान के सस्ता करून देश जो खूबे लोग मन के सहायता कर ली से। डायबिटीज बीमारी चो राजधानी बल तो भारत के ए बीमारी चो बीमार लोग मन का जे रोज दिन चो जरूरत बन लोग ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप सुपरे जीएसटी चो दर ने कम कर तो रोली से। असने ब्रेस्ट कैंसर बलो ने छाती चो कैंसर बीमारी संगे अस्थमा चो इलाज ने काम एतो बीती उपाय थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स उपरे बलेबल टैक्स चो दर के कम कर तो रोली से।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:31 हुए हैं। बस्तर के लोक गीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में लीजिए सुनिए फूलधर वड्डे और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे हैं फुलदर भड्डे और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन रहे थे फूलदार वड्डे और साथियों की आवाज में गोंडे लोकगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, पेश है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो वक्त की रेत पर अपने कदमों के निशान नहीं बल्कि दिलों पर अपनी मोहब्बत की इबारत लिख जाती हैं। आज 25 मई है, एक ऐसी तारीख जो खामोशी से हमें उस महानायक के पास ले जाती है जिसकी आवाज में पहाड़ों सा ठहराव था और जिनके किरदार इंसानियत की मुकम्मल किताब थे। आज का ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं नेकी के उस फरिश्ते के नाम जिन्हें दुनिया सुनील दत्त के नाम से जानती है।

ये कहानी शुरू होती है अविभाजित भारत के झेलम से, जहां एक छोटा सा बालक बलराज दत्त अपनी मिट्टी से जुड़ा था। बंटवारे की आग ने सब कुछ छीन लिया था, पर उनका हौसला नहीं। मुंबई की सड़कों पर बस कंडक्टर की नौकरी पर नियति ने उनके लिए कुछ और ही चुना था। एक रेडियो के उद्घोषक के तौर पर अपनी आवाज का जादू चलाने वाले बलराज कब फिल्मी दुनिया के सुनील दत्त बन गए, पता ही नहीं चला।

साल 1957 और फिल्म थी मदर इंडिया। बिरजू का वो गुस्सैल और विद्रोही किरदार, सुनील दत्त ने उस भूमिका में अपनी रूह फूंक दी थी। वो सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसे अभिनेता का जन्म था जिसने ये साबित कर दिया कि नायक सिर्फ वही नहीं जो गीत गाए, नायक वो है जो अपनी आंखों से विद्रोह की कहानी लिख दे।

फिल्मी पर्दे की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, पर दत्त साहब की असल जिंदगी भी किसी फिल्म से कम न थी। मदर इंडिया के सेट पर जब आग लगी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने नरगिस को बचाया। वो आग तो बुझ गई, पर वहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि साथ निभाना किसे कहते हैं। तब से नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे के पर्याय बन गए।

गिनीज बुक में दर्ज करा दिया। इसी के साथ उन्होंने गुमराह और गबन जैसी फिल्मों के जरिए हमें वो संजीदगी और संगीत दिया जो आज भी हमारी रूह में बसा है।

सुनील दत्त का जीवन उनकी पत्नी नरगिस के बिना अधूरा है। जब नरगिस को कैंसर हुआ तो दत्त साहब ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके निधन के बाद सुनील दत्त ने कैंसर के मरीजों की सेवा के लिए नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। उनका ये प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उनके सामाजिक कार्यों में झलकता था।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: श्रोताओं, एक महान कलाकार की कसौटी ये है कि वो हर सांचे में ढल जाए। सुनील दत्त साहब ने पर्दे पर खुद को कभी दोहराया नहीं। जहां फिल्म मुझे जीने दो में उन्होंने एक खूंखार बागी के अंतर्द्वंद और उसके बदले हुए मन को बड़ी शिद्दत से दिखाया, वहीं फिल्म पड़ोसन में एक सीधे साधे और भूले भाले बनकर हम सबको मोहित कर दिया।

फिल्मों के चकाचौंध के बीच सुनील दत्त का दिल हमेशा समाज के लिए धड़कता था। उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 5 बार मुंबई से सांसद चुने गए। वे खेल मंत्री भी रहे, लेकिन उनके लिए राजनीति सत्ता का साधन नहीं बल्कि लोगों के आंसू पोंछने का जरिया थी। मुंबई के दंगों के दौरान उनकी शांति यात्राएं आज भी लोगों को याद हैं, जब वो बिना किसी सुरक्षा के सड़कों पर निकल पड़े थे।

एक पिता के रूप में भी सुनील दत्त का संघर्ष किसी फिल्म से कम नहीं था। बेटे संजय दत्त के मुश्किल दौर में वो उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहे। उनके करियर की आखिरी यादगार फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS। पर्दे पर जब उन्होंने अपने बेटे को जादू की झप्पी दी थी तो वो सिर्फ एक फिल्मी दृश्य नहीं बल्कि एक पिता का अपने बेटे के प्रति अटूट विश्वास था।

सुनील दत्त साहब के पुरस्कारों के सफर की तरफ नजर डालें तो उनके हिस्से आए सम्मान भी उनकी ही तरह बुलंद रहे। साल 1968 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें मुझे जीने दो और खानदान जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और बाद में सिनेमा को समृद्ध करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

वक्त का पहिया चलता रहा और 25 मई 2005 वो काला दिन आया जब मुंबई स्थित उनके घर इस महान आत्मा ने संसार को त्याग दिया। सुनील दत्त के जाने से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ने एक दिग्गज खोया बल्कि देश ने एक सच्चा देशभक्त और मानवता का रक्षक खो दिया। आज दत्त साहब हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके आदर्श और उनकी वो जादू की झप्पी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं।

0: एक ही कलाकार। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना जो केंद्रित था मशहूर अभिनेता सुनील दत्त पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।

0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं अब एक सूचना, आकाशवाणी जगदलपुर से प्रसारित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी आप सुनते हैं प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 पर। इस कार्यक्रम में आप कृषि से संबंधित समस्याओं और उनके निराकरण के लिए हमारे विशेषज्ञों से फोन पर बात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 के बीच, और कल मंगलवार को इस विषय पर आपसे फोन पर बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार निषाद, जो कि मिलेट्स फसल पर आपको जानकारी देंगे। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम पाटा केंजा में अब सुनिए मासो और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।

0: सासों और साथियों के स्वर में अभी आपने सुने गोंडी लोकगीत। कार्यक्रम था पाटा केंजा। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी की गई। और प्रदेश के सभी डाकघरों में आज से अल्प बचत खाता खोलने के लिए 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में

0: 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह समागम आने वाले वर्षों में जनजातीय महाकुंभ के रूप में वैश्विक पहचान बनाएगा। श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय कल्याण का बजट 28,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जनजातीय समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लोगों से भ्रांतियों से बचने और एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आज और कल अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। बलरामपुर जिले में सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। ईंट से लदे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक रविवार की शाम एक ही बाइक पर सवार होकर चारों युवक बाजार से लौट रहे थे, उसी समय यह हादसा हुआ जिसमें चारों की जान चली गई। और अब पेश है मौसम का हाल। नौतपा की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अगले 4 दिनों तक हीट वेव चलने की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया है। यह रात में हवा भी हल्की गर्म चल रही है। जांजगीर चांपा जिले की पर्वतारोही अमिता श्रीवास ने बीती 22 मई को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतेह किया। हालांकि वापसी के दौरान अत्यंत कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर काठमांडू के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के उच्च अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अमिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पेट्रोल की कीमतों में आज 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी की गई। और प्रदेश के सभी डाकघरों में आज से अल्प बचत खाता खोलने के लिए 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है लोक साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम मोचो माटी। संपादक हैं बलबीर सिंह कच्छ।

0: मचुमाटी लोक साहित्य पत्रिका सुनतो जम्माए दादा दीदी सियान सजन मन के मैं भरत कुमार गंगादित्य करें से खुबे खुबे जुहार। दादा दीदी मन आमी ये कार्यक्रम ने तुमचे लगे लोक कथा कहानी कविता गीत गोविंद ठसा ये जमा है कार्यक्रम मन के धरुने उनसे तसनी आजीचो ये अंक के धरुन भाती मैं ले से और आजीचो ये कार्यक्रम के सबले पहल मूल करूं से आमी हल्बी कविता पाठ ले आजीचो हल्बी कविता पाठ के धरुनीला से भाई संतोष कुमार जोशी।
1: मुझे हल्बी कविता जो नाम है बस्तर या तिहार। बस्तर जो माटी ने जन्म कर लू आमी, बस्तर भूई के जुआर करूं आमी, यही भूई ने खेलू कूदलू, पिलाले बाड़लू जुआन होलू हामी। बस्तर चो माटी ने जन्म कर लू हामी, बस्तर भूई के जुआर करूं हामी, यही भूई भूई ने खेलू कूदलू, पिलाले बाड़लू जुआन होलू हामी। बस्तर चो राजा समयाले बनाऊ से सपाए आमी नाना तिहार, तिहार एलो पूरे तिहार करूं से, राजा चो तिहार के सुरता करूं से। बस्तर चो राजा समयाले बनाऊ से सपाए आमी नाना तिहार, तिहार एलो पूरे तिहार करूं से, राजा चो तिहार के सुरता करूं से। बस्तर या तिहार काय होए से, बरस कार ने तिहार मनाऊ से, तिहार होए से बरन बरन नाना किसम, एके मनाऊ से हामी बस्तरिया लोग मन। बस्तरिया तिहार काय होए से, बरसकार ने तिहार बनाऊ से, तिहार होए से बरन बरन नाना किसम, एके बनाऊ से हामी बस्तरिया लोग मन। सावन महीना ने बादरी ढाके से, पानी घसरे से राई झाई, रोपलो बुनलो धान के दखा, करिया होन लहराऊन जाए से। सावन महीना ने बादरी ढाके से, पानी घसरे से राई झाई, रोपलो बुनलो धान के दखा, करिया होन लहराऊन जाए से। धान के दखुन हरिक लागे से, लहरा पानी नुको होए से, श्रावण महीना चो तियार इली, सुरता करूं हामी तुमी। धान के दखुन हरिक लागे से, लहरा पानी नुको होए से, सावन महीना चो तिहार इली, सुरता करूं आमी तुमी। वर्षा महीना ने तिहार मनाऊं से, बलसोत एके अमुस तिहार, इया दादा दीदी पीला झीला मन, मिसुन मनावा नुको तिहार। वर्षा महीना ने तिहार मनाऊं से, बलसोत एके अमुस तिहार, इया दादा दीदी पीला झीला मन, मिसुन मनावा नुको तिहार। अमुस तिहार अमरली जाले, हरी खोसोत जुआन डोकरी लेका पीला, घरे घरे रांधुक मुरियासोत, कुकड़ी चिमड़ी हाँसा बोकड़ा। अमुस तिहार अमरली जाले, हरी खोसोत जुआन डोकरी लेका पीला, घरे घरे रांधुक मुरियासोत, कुकड़ी चिमड़ी हाँसा बोकड़ा। सावन महीना ने गोंचा तिहार ऐसे, गोंचा भाटा ने मंडई लागे से, मंडई दखुक इया दादा दीदी गोंचा तिहार के नुको बनाहा तुमी। श्रावण महीना ने गोंचा तिहार ऐसे, गोंचा भाटा ने मंडई लागे से, मंडई दखुक इया दादा दीदी गोंचा तिहार के नुको बनाहा तुमी। गोंचा तिहार ने रथ के झिकसत, रथ ने बटला भगवान जगन्नाथ, रथ के किंद्रासत गोंचा भाटा ने, एवेचो उतरला भगवान सिराहासार ने। गोंचा तिहार ने रथ के झिकेसत, रथ के बटला भगवान जगन्नाथ, रथ के किंद्रासत गोंचा भाटा ने, एवेचो उतरला भगवान सिराहासार ने। सिराहासार ने भगवान उतरला, रंग रंगचो कपड़ा पिंधला, कितरो सुंदर मुकुट दखा दैसे, भगवान चो मंदिर के प्रसाद मिले से। सिराहासार ने भगवान उतरला, रंग रंग चो कपड़ा पिंधला, कितरो सुंदर मुकुट दखा दैसे, भगवान चो मंदिर ने प्रसाद मिले से। सिराहासार ने भगवान बटला से, नौ दिन ले पूजा होए से, खीर भात चो भोग लागे से, लोग मंचो भीड़ के दखुन चेत पर आए से। सिरहासार ने भगवान बटला से 9 दिन ले पूजा होए से खीर भात चो भोग लागे से लोग मन चो भीड़ के दखुन चेत पर आए से एबेचो भगवान रथे चेगला रथ के किंद्रासत लोगमन सिंह बाट ने रथ थेबली दखुक जाऊं हामी सब जन एबेचो भगवान रथे चेगला रथ के किंद्रासत लोगमन सिंह बाट ने रथ थेबली दखुक जाऊं हामी सब जन गोंचा भाटा ने तुपकी मीरे से ठाय ठाय सपाय बाटे गरजे से तुपकी मारून गोंचा मनाऊ गोंचा तिहार के नुको मनाऊ गोंचा भाटा ने तुपकी मीरे से ठाय ठाय सपाय बाटे गरजे से तुपकी मारून गोंचा मनाऊ गोंचा तिहार के नुको मनाऊ कुंवार महीना ने दसरा तिहार इली बरसा थेबली सित इली नवरात ने दुर्गा मायचो करुआत लोगमन उपास पियास कुंवार महीना ने दसरा तिहार इली बरसा थेबली सितकार इली नवरात ने दुर्गा मायचो करुआत लोगमन उपास पियास आगेचो जुग ने रथ ने बटत राजा रानी और पाइक तीसर कितरो सुंदर लागे दसरा तिहार दक्तो लोगमन लिमकी निमारत आगे चो जुग ने रथ ने बटत राजा रानी और पाइक तीसर कितरो सुंदर लागे दसरा तिहार दक्तो लोगमन लिमकी निमारत 9 दिन चो नवरात होय से माय दुर्गा चो उपास करेसत माय दंतेसरी दुर्गा काली चो नाव ने धरा सो तेल दिया और तीसर 9 दिन चो नवरात होय से माय दुर्गा चो उपास करेसत माय दंतेसरी दुर्गा काली चो नाव ने धरा सो तेल दिया और तीसर नवरात सरले दसरा तिहार ऐसे दसरा भाटा ने मंडई लागे से बरन बरन चो खाजा मीरे से आया दंतेसरी के जुहार कनो से नवरात सरले दसरा तिहार ऐसे दसरा भाटा ने मडई लागे से बरन बरन चो खाजा मीरे से आया दंतेसरी के जुहार करो से दसरा रथ के दखुक जाऊं पिंधाला सत रंग रंग चो कपड़ा आया दंतेसरी चो छतर चेगाला दसरा रथ के झुकुक मुरियाला दसरा रथ के दखुक जाऊं पिंधाला सत रंग रंग चो कपड़ा आया दंतेसरी चो छतर के चेगाला दसरा रथ के झिकुक मुरियाला भीतरे रहनी काय होय से एके जानू हामी तुमी रथ के झिकुक किंद्राउन आंसत आया दंतेसरी मंदिर पूरे थे बासत भीतरे रहनी काय होय से एके जानू हामी तुमी रथ के झिकुक किंद्राउन आंसत आया दंतेसरी मंदिर पूरे थे बासत ए बच्चे होय से बाहरे रहनी एके जानू हामी तुमी कुमडा कोट ने रथ सजाला बान फटका मोहरी बाजा संगे रथ के झिकते आनला ए बच्चे होय से बाहरे रहनी एके जानू हामी तुमी कुमड़ा कोट ने रथ सजाला बान फटका मोहरी बाजा संगे रथ के झिकते आनला सरन सरन माय दंतेसरी के जुहार करो से हामी तुमी एतो बरस चो दसरा तिहार के नुको मनाऊ हामी तुमी सरन सरन माय दंतेसरी के जुहार करो से हामी तुमी एतो बरस चो दसरा तिहार के नुको बनाऊ हामी तुमी सावन महीना ने भादों ऐसे इली नवाखानी तिहार लेका लेकी मन हरिक होय सत नवाखानी चो तिहार के मनासत सावन महीना गेले भादों ऐसे इली नवाखानी तिहार लेका लेकी मन हरिक होय सत नवाखानी चो तिहार के बनासत हरिक लागे से तिहार अमरले नवाखानी चो चौर रांधले नवा तिहार ने नुआ कपड़ा अनु ओल तो बाटने धान के ओराऊ हरिक लागे से तिहार अमरले नावा धान चो चाऊर रांधले नावा तिहार ने नुआ कपड़ा आनु ओल तो बाटने धान के ओराऊ रोजे बरस हामी नवा बनाऊ से नवा चाऊर चो भात खाऊ से कुकड़ी चिमड़ी हाँसा बोकड़ी संगे सगा के खुआउन विदा करूं से रोजे बरस हामी नवा बनाऊ से नवा चाउर चो भात खाऊं से कुकड़ी चिमड़ी हाँसा बोकड़ी संगे सगा के खोन विदा करूं से पुष महीना गेले माघ ऐसे इली मडई हाट चो बेरा इया दखुक आऊं मडई हाट के दखुक जाऊं मडई भाटा पुष महीना गेले माघ ऐसे इली मडई हाट चो बेरा इया दखुक जाऊं मडई हाट के दखुक जाऊं मडई भाटा। साइकिल ने दखा, फटफटी ने दखा, हिंटो लोग के दखा, मोटर ने दखा, जासूत लोग मन दिने राती बेरा, ठेगला मस्का हुन हुन जाऊं से

0: लई चना समसा जलेबी और गुड़िया खाजा चूड़ी फुंदड़ी और पाउडर संगे खोसा काटा बायले पीला काजे घेनु आमी तुमी एक ही बोलू से हमें मंडई भाटा लई चना समसा जलेबी और गुड़िया खाजा चूड़ी फुंदड़ी और पाउडर संगे खोसा काटा बायले पीला काजे घेनु आमी तुमी एक ही बोलू से हमें मंडई भाटा।
1: एबे आमी सुनते रहूं हल्बी कविता पाठ और एक कविता आम के सुनाते रहला भाई संतोष कुमार जोशी अले ये तुमके तो नंगत लागली होती अदाए आमी जाऊं लोक कथा बाटे और लोक कथा तो आमी जैसा नाम चो आया ले बाबा ले नहाले आई आए दादी आए आमचो आजू आए दीदी आए कोनी बोले आम के सुनाते रहुआ तो और आगे सुनाते रहला धीरे धीरे हाजते बोले जाए से लोक कथा असनी ची एगोट लोक कथा आए शंकर पार्वती चो और चो नाव आए लोक कथा चो करम चो फर ये लोक कथा के आम चो लगे अमरा सोत भाई राजेंद्र राव राउत आली ये लोक कथा के सुनो।
2: सज्जुक चो गोठा से सरकपुर ने शंकर अरु पार्वती आप लोग घर ने बसुन गोठाते रहला। शंकर बाबा बल्ले बोलते रहा पार्वती मंचपुर ने जितरो मनुक अरु जीव जंतु मन जन्म धरसत हुन मन आपलो करम चो हिसाब ने सुख दुख पावसत बल्लो ने जोन मनुक नीको कर्म करे से हुन मनुक के सुख ने जीवना खटे से अरु जोन मनुक पाप कर्म करे से हुन मनुक चो जीवना कसट ने खटे से। शंकर बाबा चो गोठ के सुनुन पार्वती मने मन विचार करला कि एक दिन मंजपुर ने जाऊन दख्तोराय लोग मन कसन जीवना के जीवसत। गोटोक दिन पार्वती अरु शंकर बाबा नंदिया बैला ऊपरे बसुन मंजपुर दखुक इला। पार्वती मंजपुर चो सुंदर नदी डोंगरी रूख राई के दखुन हरी खोली अरु शंकर बाबा के बले से गणेश चो बाबा मके हुन बाट निहा जोन लगे सफाए मनुक चिड़ई चिरगुन सुख ने रसोत। शंकर बाबा बोलो आप लो इच्छा जाओ रे नांदिया बैला हुन बाट जाओ जोन लगे सफाए लोग मन सुख ने रसोत। नांदिया हुन बाट ने रिंगुन दिलो थोड़े दूर रेंगुन पार्वती काय दखे से लोगमन सुंदर सुंदर घर ने रसोत सफाए खूट ने सुख शांति आसे सफाए मनखे के सुख ने दखुन पार्वती बले से गणेश चो बाबा दखा लोगमन कितरो हरी कु दिन ने रसोत। शंकर बाबा बोलो ये सफाए लोगमन सत्कर्म करतो लोगमन आसोत। पार्वती फेर बोलो एवे मैं दुखी मनखे मंचो पारा ने जाऊं आए तेवे नांदिया पहला शंकर बाबा चो इशारा के पौन दुखी मनखे मंचो पारा ने अमरला इथाच लोग मन के दखुन पार्वती दुखी होन गेली अरु शंकर बाबा के बल्ली गणेश चो बाबा ये मन इतरो कसट ने कसन ने जीवसत ये मनखे मन के काय गलती करला असन बोलून पार्वती गावुक मुरियाली। पार्वती के गाकते दखुन शंकर बाबा बल्लो आपन काय काजे गाकसत ये मन मन जसन कर्म करला ओसन फल हुनके मिरली। पार्वती बोललो गणेश चो बाबा कसने करुन ये सफाय दुखी मन के मंचो दुख के दूर करुन दिया सफाय चो जीवना ने सुख शांति बनाउन दिया। शंकर बाबा बल्लो पार्वती मंजपुर ने नियमा से जोन मनुक जसन कर्म करे दे हुनखे ओसन फरमीरे दे अरु इतरो बड़े संसार सुख दुख पाप पुंचो हिसाब करुन चले से। पार्वती बोली मैं कहीं के नहीं जाने आपन दुखी मनखे मंचो दुख के दूर करुन दिया। शंकर बाबा

0: पार्वती चो गोठ के सुनला अरु आशीर्वाद दिला, सफाए मन मनुख चो दुख कसट दूर हुन जाऊ। असने बोलून शंकर पार्वती सरकपुर आप लोग घरे गेला। ये बाट सफाए लंगड़ा अंधरा काना बहरा खोड़या माठिया सफाए मन नंगत होला, अरु हरीक ने रहुक मुरियाला। असन करुन गोटक बरख पुरली। एक दिन शंकर बाबा आप लोग घर चो दुआरी ने बसुन बाढ़ लो कांदी के झिकते रला। शंकर बाबा के काम करतो के दखुन पार्वती बलली, गणेश चो बाबा आपन काय काजे घास की झिकासी, एबे मंजपुर ने जाऊन लोग मन के जोहाउन आने से आपन असन काम की नी करा। असने बलून पार्वती आया मंजपुर गेली। मंजपुर चो गरीब पारा ने जाऊन मनखे मन के बल्ली बाबू मन सुना, बेटा मन सुना, सरकपुर ने आमचो घरे बाड़ी ने खूबे कांदी होली से, मचो संगे जावा कांदी निकरा तो काजे मैं तुमके खूबे धंधा इंदे। तेबे आशीर्वाद मिरलो लोग मन बल्ला, तुई कोन आस, कोन राजचो रानी आस, आमी काय काजे तुचो संग ने आइंदे, आमचो घरे सफाए बानी चो गोठ आसे, जाजा आमी तुचो घर चो काम के नी करेंदे, तुई असन कर मचो काम के करुन देस मैं तुके धन दाएं दे, खूबे धन दाएं दे। पार्वती आया के खूबे दुख लागली। हुन मने मन गागते आप लोग घरे सरकपुर गेली। पार्वती के ओगाए दखुन शंकर बाबा पूछ लो, कसन पार्वती काय होली? तेबे पार्वती बोली, नहीं गणेश चो बाबा, मचो जीत ने खूब बड़े गलती होली से, माँ के माफी दिया। असन बलून मंजपुर चो सपाए बात के गोट के शंकर बाबा लगे गागुन गागुन सांगल। शंकर बाबा पार्वती के सांगला, ईसु संसार के चला तो काजे, सुख दुख अमीर गरीब सब चो हो तो जरूरी आसे, सफाए मन के एक समान रलो ने संसार नीचरे दे। इत्रो ने मचो कहानी पुरली, घर ने दार भात चुरली, सपाए सियान सजन के जोहार, नानी पिला मन के खूबे खूबे मया।
1: ये भी आप ही सुन लू लोक कथा करम चोफर। और ये लोक कथा के आम चलगे हमारा तेरला भाई राजेंद्र राव राउत। तुमके सुनुन भाती खूबे नंगत लागली होती तो दादा दीदी मन अदाए फिर आमी जाऊं कविता पाठ बाटे मानतरी यदाए ये कविता पाठ के कर सो छत्तीसगढ़ी ने कविता पाठ आए। और ये कविता के आम चलगे अमरा सोत अरुण कैमरो।
2: मोर कविता है छत्तीसगढ़ी में, हमन लैका हावन एक गांव के, ये शीर्षक है। पहला पद है, हमन लैका हावन, हमन लैका हावन एक गांव के, हमर बचपना हावे, हमर बचपना हावे एक के चाल के, हमन लैका आवन एक गांव के, हमर बचपना हावे एक चाल के, खुलगे स्कूल जाथन सब, खुलगे स्कूल जाथन सब, गुरुजी के बात मानथन सब, गुरुजी के बात मानथन सब, लिखथन पढ़थन सब मिलजुल के, लिखथन पढ़थन सब मिलजुल के, हमन लैका हावन एक गांव के, हमन लैका हावन एक गांव के, हमर बचपना हावे एक चाल के। मीना राहुल नंदन चंदन, मीना राहुल नंदन चंदन, आओ जम्मो संगे खेलन, आओ जम्मो संगे खेलन, एक के संगमा करन पढ़ाई, एक के संगमा करन पढ़ाई, औ सावन संगमा झूलन, औ सावन संगमा झूलन, खेलन कूदन मैदान मैदान, खेलन कूदन मैदान मैदान, हमन लइका आवन, हमन लइका आवन कमाल के, हमन लइका आवन एक गांव के, हमर बचपन हावे एक चाल के। हमला देख खुश होते, हमला देख खुश होते दाई दादा हमर, हमला देख खुश होते दाई दादा हमर, दादा दादी खुश हो जाते देख फूल सा चेहरा हमर, दादा दादी खुश हो जाते देख फूल सा चेहरा हमर। गदगद बदन हमर हो जाते, गदगद बदन हमर हो जाते, तोतरी बोली सुन लाल के, तोतरी बोली सुन लाल के, हमन लइका हावन एक गांव के, हमन लइका हावन एक गांव के, हमर बचपना हावे एक चाल के, हमर बचपना हावे एक चाल के। ऊंच नीच के भेद नी जाने, ऊंच नीच के भेद नी जाने, और नहीं जाने भेद के माया, और नहीं जाने भेद की माया, अपने मन गंगा चंगा, अपने मन गंगा चंगा, माटी में हावे काया, माटी में हावे काया। गाय चराथन बंसी बजाथन, गाय चराथन बंसी बजाथन, संगे कन्हैया लाल के, संगे कन्हैया लाल के, हमन लइका हावन एक गांव के, हमन लइका हावन एक गांव के, हमर बचपना हावे एक चाल के, एक चाल के। मोर दूसरा कविता है पहुना बादर। ये कविता बरसात के मौसम के समय के बनाए गए हैं। जुड़ा गईस घाम हा मन हर साइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर साइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, करिया औ भुरुआ मा एती ओती बगराइस, करिया औ भुरुआ मा एती ओती बगराइस, पानी के बदरी लानीस, पानी के बदरी लानीस, अमृत जसन छलकाइस, अमृत जसन छलकाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस। होइस माटी के तनहर शीतल, होइस माटी के तनहर शीतल, बरसा होइस झमाझम भूतल, बरसा होइस झमाझम भूतल, सबो डहर छाइस हरियाली, सबो डहर छाइस हरियाली, झूमत हावे पेड़ और डाली, झूमत हावे पेड़ और डाली, मोर पपीहा दादरा गाथे, मोर पपीहा दादरा गाथे, गरज गरज के बादरी छाइस, गरज गरज के बादरी छाइस। जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हा हरसाइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, चमक चमक के बादर गरजे, झमझम झमझम पानी बरसे, चमक चमक के बादर गरजे, झमझम झमझम पानी बरसे, नदिया नरवा और तरिया मा पानी, नदिया नरवा और तरिया मा पानी, पहुना बादर के देखो मनमानी, पहुना बादर के देखो मनमानी, किसान डोंगियार अपन सज बनाइस, किसान डोंगियार अपन सज बनाइस, जुड़वा जुड़ा गईस घाम हा मन हा हरसाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हा हरसाइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, बरसा ले धरती हरियाइस, बरसा ले धरती हरियाइस, खेत मा बढ़िया फसल लहराइस, खेत मा बढ़िया फसल लहराइस, बरसा हम सबला भाथे, बरसा हम सबला भाथे, प्यास घलो सबके बुझाथे, ऐसन हमर मन ला ललचाइस, ऐसन हमर मन ला ललचाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस। मेच का गावत है टर टर गाना, मेच का गावत है टर टर गाना, पहुना बादर तें भाग मत जाना, पहुना बादर तें भाग मत जाना, डेना पसारिस नाचिस मोर, डेना पसारिस नाचिस मोर, कीड़ा झिंगुर गागा करिन शोर, कीड़ा झिंगुर गागा करिन शोर, ऐसन पहुना बादर हर आइस, ऐसन पहुना बादर हर आइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, जुड़ा गईस घाम हा मन हर हरसाइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस, आकाश मा पहुना बादर हर आइस। ये तीसरा कविता है नरवा। नरवा माने नाला। नान कुन नरवा के जल, नान कुन नरवा के जल, कथिक बने और कथिक निर्मल, कथिक बने और कथिक निर्मल। डोंगरी ले बर्फ हर निकलथे, डोंगरी ले बर्फ हर निकलथे, सफेद दूध जैसन बर्फ के जल, सफेद दूध जैसन बर्फ के जल। हावय खुदमा कतिक बल, हावय खुदमा कतिक बल, नानकुन नरवा के जल, नानकुन नरवा के जल। सुग्घर और अब्बड़ है धार, सुग्घर और अब्बड़ है धार, करथे कतका पहाड़ी ला पार, करथे कतका पहाड़ी ला पार। बहत रही थे ओहर, बहत रही थे ओहर लगातार, बहत रही थे ओहर लगातार, गिरथे उठथे ओहर बार बार, गिरथे उठथे ओहर बार बार। करथे एह जंगल मा मंगल, करथे एह जंगल मा मंगल, नानकुन नरवा के जल, नानकुन नरवा के जल, कतिक बने और कतिक निर्मल, कतिक बने और कतिक निर्मल। कतिक कोमल कतिक सुंदर, कतिक कोमल कतिक सुंदर, जेकर माता जैसन हावय दिल, जेकर माता जैसन हावय दिल। जतका सुंदर उतके प्यारी, जतका सुंदर उतके प्यारी, बहत रही थे सदा खल खल खल खल, बहत रही थे सदा खल खल खल खल। कतको नाव यमुना गंगा जल, एकर कतको नाव गंगा यमुना जल। नानकुन नरवा के जल, नानकुन नरवा के जल, कतिक बने और कतिक निर्मल, कतिक बने और कतिक निर्मल।
1: दादा दीदी मन अभी ये भी सुन लू छत्तीसगढ़ी कविता पाठ। और ये कविता पाठ के आम चला गया हमारा तेरला भाई अरुण केमरो। दादा दीदी मन असनी मोजो माटी लोक साहित्य पत्रिका ने ये तो समय ने आमी फेर लोक कथा कहानी ठसा नहाले और बले कई ज्ञान ध्यान चौकोट धरुण भाती अमरवा आले आजी काजे मौके दिया विदा। मोचो माटी लोक साहित्य पत्रिका सुन तो जमाए दादा दीदी सियान सजन मन के खूबे खूबे जुहार।

मुझो माटी लोक साहित्य पत्रिका का ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। इस कार्यक्रम के संपादक थे भारत कुमार गंगादित्य। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। दिन के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

जुहार जुहार। रेडियो कार्यक्रम घर द्वार सुन तो सब पाए माए माता मन के सियानीन दीदी भौजी मन के और संग जोहरिया बहिन मन तुम्हें सब के मन की चो खूबे खूबे जुहार। तो बहिन मन तुम्हें कसन आसास नंगत आसास का है? हाँ तो मैं तो जाने बहिन मन कि तुम्हें सब पाए रांदा बाड़ा बुता के सारुन भाती आप लोग बूता बहना के सारुन भाती रेडियो लगे बसुन रेडियो सुन सास ने। तो बहिन मन रोजे दिना चो जसन आजी बले मैं आप लो जन मुंडरानी ज्ञान ध्यान चो गोट के धरुन अमर ले से। बहिन मन केवे केवे काय हुआ नी आमी बढ़िया साग रांते रुआ ने साग भात रांते रुआ तुन रांतो बेरा केवे काय हुआ है घर ने काचा मिरी शुरू आए तो केवे धनिया पाना शुरू आए ने तो कसन रिस लागू आए छी नी आए बे रले गितरो नंगत में साग के रांते बे बलुआ ने फिर काय हुआ है कि झटाक ले जा बाबू जा उन हाट ले घिनु नान बोलू खुआ मानतर झटके हुआ है नी है काय तो असन रिस लागू आए मानतर तुम्हें विचार करा कि असनी रांतो बेरा मिरी सरली नहाले फिर धनिया पाना सरली तो तुम्हें नी चिंता फिकर के भुलकुन मुचुक मुचुक हाँसते नी आप लोग घर चो पाटकुत्ती चो बाड़ी ने जाऊन भाती चार पांच ठन काचा मिरी के और धनिया पाना के काय मंजा टूटाउन भाती आप लोग साग ने डाले काय सुंदर लागू आए ने और हूँ फिर जोन आम चो घर चो पाटकुत्ती चो बाड़ी ने जोन बल साग के रोपू रुआ आप लोग हाथ ले उनचो स्वाद तो खूबे रुआ ने। तो देखा बहिन मन कि आम चो घर चो जोन पाटकुत्ती साग भाजी के आम लगावानी तो उन आम के कितरो लाभ दे से ने कि भाई आम के हाट बाट पराउक नहीं लागे ना काचे घर जाऊन मांगुक नहीं लागे। हाँ तो एके काय बोलू आ जानस एके अंग्रेजी ने नी किचन गार्डन बोलुआ बल्लो ने घर चो पाटकुत्ती चो बाड़ी ने जेठा ने आमिनी बरन बरन चो साग जसन कुंदरू तोराई मिरी टमाटर करेला बरबट्टी और जसन भाजी मन होए से मेथी भाजी पालक भाजी धनिया पाना कांदा कोचाई कितरो बानी के रोपुन्नी घर चो आमी साग भाजी के खाउकला सकूँ और एक खूबी स्वाद बल्ला गुआ और हुन बलिनी बिना दवाई ओखत के मिसौन भाती दखा काय हो से बहिन मन कि आजकल नी बाजार ने हाट ने तुच्छा दवाई डाल लो साग मेरे से ने और हुन बल इतरो महांग की नी पूछा नहीं साग के छूक नहीं होए इतरो इतरो महांग होए से साग मन और ये साग के खाउन बल काय होए से आम चो देह पाए के नुकसान होए से ऊपर ले आम के बल बपू बल नहीं मेरे ऐसा पाए के खाद लेने तो फिर आमी आप लोग देह पाए नंगत रहो बलते आप लोग पैसा के बचा तो काजे काई तो उट करुक लागे दे तो उट काय करत रहा दखा आप लोग घर चो जोन पाटकुती चो बाड़ी रुहा नी होता साग भाजी लगात रहा तखा तुम्हें काय करुहा कि आप लोग बेड़ा तो साग भाजी लगा सास जी ने तो तुरते जाऊन बेड़ा ले आनुक तो नहीं बने तो घर चो पाटकुती काय रुआ ना नी सुनी जगह रुआ नी उनके नी काय करते रहे होता साग भाजी लगात रहा जोन बल तुमके मन करे से हुन बीती जिनिस के लगाउन तुम्हें नी हुनके खाउक सकास ये चुका जी नी अगर मसागत बल नहीं लागे अगर पैसा बल नहीं लागे और अगर ठान बले नहीं लागे देखा काय करा तुम्हें सबले पहिल घर चो तुम्हें जोन पाटकुती चो बाड़ी आए नी हुनके काय सुंदर छुक नाय नी बनाहा जोन थान तुमके ये साग भाजी के लगात रहा हुनके तैयार कर ले काय करा के बे तुम चो घरे फूटलो डब्बा प्लास्टिक चो बाल्टी रहुआ ने नाल फिर गमला रुआ तो हुनके काय करा होता तुम्हें गोबर खत और माटी के डारा और जसन कोन कोन आजकल घर ने छत बल रहे से तो छत ने बल तुम्हें गमला फुटलो बाल्टी एथाने बल्ले साग भाजी रोपुक सकास टब बल रुआ ने कपड़ा धोते भी देखे बेगे फुटुआ है तुम टब ने बल रोपुक हुआ है खूबे हुता ठान रहे से तो फिर काय करते रहे माटी और खत तो डार लू अबर लागे से बीजा अब बीजा का जो पैसा नहीं आए तो नहीं बोलू खोए काय करते रहे कि घर ने जो नी केवी केवी आमी केवी साग रांधुआ तो जरूर हुआ ने जसन लाऊ ककड़ी ये जो नो काकड़ी मन रहे से तो हुन चो बीजा के नी संग उरत रहा हुनके रोप रोपुक हुआ है हुन चो संगे संगे का एक टमाटर के नी कुछ लून माटी ने मिसाउन दिले नी हुन टमाटर बोल रोपुक हो से और फिर ये सुखलो मिरी चो बीजा धनिया चो बीजा असन बीजा मन के नी माटी ने बिखरून दिले नी हुन नी झटके रोपुक हो से अब होली आमी माटी गोबर सब होली बीजा बल रोपलू एदाय लागे से पानी अब पानी कौन बाट ले आनुआ सोचुन से तो हुंचो काजे बल विचार नहीं करा तुम्हें अगर देखा रांदा बेरा काय होए से चाउरदार धोलो पानी होए से नहाले फिर आमी साग धोलो पानी होए से हुन पानी के नी तुम्हें बचाउन संगा हाँ और पाचे हुन बूटा लाटा ने डारा देखा धोलो पानी बल्लो नी बर्तन धोलो पानी नहाले फिर कपड़ा धोलो पानी असन पानी के तुम्हें नी डारा
अबर लागे से खत खत काज भर लागर पैसा नहीं लागे बहिन मन। देखा साग भाजी चो छाली होए से और फिर हम जो चाय पीवा तुम जो बासलो चाय पत्ती गोबर लेनी नानी असन नहीं खोदरा खो ना हुन था ने सब के नी गोबर खत के जैविक खत बनाहा तो खत बल होली। तो बहिन मन असन उवाट करुन भाती नी आमी आप लो घर परिवार चो सेहत के और नगत करुक लाए सकू और रोजी हाट चो जो महंग साग मनाए नी हुन थान जो पैसा सरे से आमचो हुनके बले आमी बचत करुक सकू और बचत कर ले काय होइसे कि आमचो लोग पैसा रह ले हुन पैसा के आमी आप लो जो जरूरत चो सामान है हुनके घेनुक सकू आप लो पीला जिला चो पढ़ाई काज हुन पैसा के उपयोग करुक लाए सकू। तो बहिन मन आज ले ची तुम्हें मूर करा दिन भर जो बूता संगे संगे नी तुम्हें खिंडिक समय निकरौन भाती आप लोग घर जो जन पाठ कृति जो नानी असन बाड़ी आए नी हुन थाने साग भाजी के दखा रखा करा साग भाजी रोपा और हुनके काय मजा खा। तो ये तो गोट होली की तरह सुंदर तुमके सांग ले बहिन मन असन सुंदर सुंदर गोट के जब सुनवा तो सुंदर सुंदर गीत बल सुनुक भावाई ने तो हुनी काजे तुमचो काज में काय सुंदर गीत के धरुन इले से। तो ये गीत के गावला सोत राजेंद्र कश्यप और हुंचो संगवारी मन तो आलिया ये काय रसिया गीत के सुनू।

0: ಸೊ ಬೆಳಕಿನ ಬಿಡಿಯ ರಾಹ ತಿಂದನದ ಉಂಡನ ಸಾಮಾನ್ತಲೇ ದೊರಕ್ತ ಡಬಲ್ ರೋಟಿ ಆರಿ ಅವ್ರ ಛೇನಾ ಪನೀರ್ ಅಸಿತ್ಕೆ ಇಂಜೆ GST ಲಗೆ ಮಯ್ಯೋ ಇದನ್ನ ಸಂಗೇನ್ 33 ಜರೂರಿ ಡವೈನದ ಮೋಲಾವೆಂಡ್ ಕಮ್ ಕೀಸಿತ್ತೋಡ್ ಅದೇನ್ಕೆ ಇಲಾಜ್ ತಲೆ ಖರ್ಚವೆಂಡ್ ಕಮ್ ಲಗೆ ಮಾತಾ ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ತಗವೆಂಡ್ ಇಂಜೆ GST ಛೂಟ್ ದೊರಕಿತ ಅದೇನ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪೋಯ್ತನದ ಇಂಜೆ ಸಸ್ತಾ ಅಂತ ಸುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ ಗಾಡಿ ಅವ್ರ 350 ಸಿಸಿತ ಕೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ತ ಪೊರ್ರೋ 28% GST ಮತ್ತ ಅದ್ ಕಮ್ಮಾಸ್ ಇಂಜೆ 18% ಅತ್ತ ಇದನ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಇದ್ಕಿ ಇಂಜೆ ಗಾಡಿ ಪೊಟ್ರು ಗಾಡಿ ಅಸಿತ್ಕೆ ಸಸ್ತಾ ದೊರಕಿತ
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: तो बहिन मन तुम चो काजे आमी आमचो घर द्वार कार्यक्रम भित्री नुआ नुआ रोजे रोजे भेट वार्ता मन के धरुन अमरुन से ने तो असनी मैं तुमचो काजे आजी भेट वार्ता के धरुन अमरले से ये स्वरोजगार महिला स्व सहायता समूह चो बहिनात श्रीमती गीता ठाकुर और ये चो संगे भेट कर सोच श्री बलबीर सिंह कच्छ तो आले या ये भेट वार्ता के सुनो।
4: सब ले आगे तुझो नाव सांग काय नाम है जाले।
5: मुझे नाम गीता ठाकुर।
4: गीता ठाकुर।
5: हाँ।
4: अच्छा गीता ये सांग बोले ने ये भी जैसन की तुम्ही बोले स्व सहायता समूह ने आए की तो बोले खुद जो काम कर सा जाते
5: स्व सहायता समूह जो 10 जन मतलब जो गुरु मतलब 10 जन ने एक समूह बनवाए तो हम समूह है मैं समूह के अध्यक्ष है।
4: अच्छा बोले ने किस जन आशा से था 10 जन आशा
5: 10 जन एक ग्रुप में 10 जन।
4: अच्छा तो गीता बोले ने एबे बोले तुम चुकाए समूह हिसाब ने काय काम चले से रोजगार स्वरोजगार
5: तो मतलब कुछ काम नहीं है बीच में करते रहूं आधा आधा लोग सिलाई करूं मैं बस सिलाई करूं आए मेरी दुकान है थोड़े छोटे सर।
4: अच्छा
5: और जमुनी मतलब जो समूह पैसा के जरूरत पड़ रहा है 2 रुपए पसंद ले मतलब लेन देन में चला हूँ।
4: अच्छा बोले ने तु सिलाई बल करूँ
5: सिलाई बल करूँ मैं 2-3 जन वाम से ग्रुप से लोग सिलाई बल करूँ
4: प्रशिक्षण बल्ले कहाँ सिखलास कहाँ धरलास
5: मैं यानी कि मैं पहले सीखू रहे हैं तो उसने करूँ अपना।
4: अच्छा बल्ले कहाँ तू सिखलीस होती ना कोनी तान बल्ले बल्ले
5: मतलब अपने प्राइवेट में सीखले पॉलिटेक्निक कॉलेज।
4: अच्छा
5: सीखले 6 महीना। हाँ
4: अच्छा ये पॉलिटेक्निक कॉलेज धर्मपुरा ने
5: धर्मपुरा। हाँ
4: अच्छा बल्ले ता कहीं कोर्स रहे कोर्स ने तू कर लीस बोले मैंने।
5: हाँ उसने फॉर्म भरा दो 6 महीने कोर्स रहे।
4: अच्छा बोले नेता बोले पूरा चीज सीखा ला सिल तो बीती काय काय सीख
5: सिल तो बीती सीखा रानी सीखत लो मतलब जो जो मेन मेन रो है उन सीखत पूरा तो नहीं बिजाने मगरा तो नहीं सांगवा तब नल मतलब करु पड़वा ताकि उन जो बोले पूरा सीखा ला ले की जितलो सिलाई से मतलब मैं मतलब समझ रो है समझ तो नहीं साग ले उतलो सीखा ला मतलब।
4: अच्छा ये सीख लो कितलो बरकसन ली जाले सिलाई चो
5: मतलब होली 7-8 साल ले जाता ही होली।
4: हसन अच्छा तो ये भी बोले सिलाई चुका है जसन की मशीन वगैरह काय काय सज मना से जाले चो।
5: हाँ उन बीती होता लेकिन मत लेकिन मत खुद चो मशीन आज खुद चो हैंड लो बीती है उन खुद चो विदिल करूँगा मैं तो निकल जाएगा तो बके उन सिलवाएं वगैरह।
4: हाँ अच्छा बोले ने खाली महिला मंचो सज सिलवा।
5: हाँ खाली महिला मंचो कोनी अपने रिपेयरिंग काम बल जाएगा थोड़े बहुत हुआ है तो उनके बल करूँ जाऊँ।
4: अच्छा बाकी बोले ने महिला मंच साम जैसे की ब्लाउज आए पेटी कोट।
5: हाँ ब्लाउज होली।
4: अच्छा
5: सादा सूदी डिजाइन वगैरह तो नहीं जाने तो थोड़े बहुत उनके बल सिलवाए।
4: अच्छा बोले संग संगे कपड़ा चो बोले दुकान आसे तो
5: कपड़ा दुकान थोड़ा सा किराना दुकान आसे।
4: अच्छा किराना वाला से।
5: हाँ
4: बोले दोनों काम तो इसी दो।
5: हाँ दोनों काम मैं दुकान में मैं चलूंगा दिन भर।
4: अच्छा तो ये जैसन की सील तो काजे बोलू बे तू चल कहीं कपड़ा बोले जैसन की ब्लाउज पीस वगैरह नहीं तो दूसर बोले ये बोल संग ऐसी दुकान ने।
5: हाँ मतलब बिक तो सामान होगा अस्तर फाल बुलवात नहीं उन सब मतलब थोड़े बहुत संग हुए।
4: अच्छा बाकी असनी आनंद दिले बोल सील उन दिवस बोलू ने।
5: हाँ बाकी कोई आनंद दिवस तो सील उन दूंगा पहले का साया भी थी सील कर रहे उतर आनंद बातें तो आना जाना झंझट होते रहे तो बंद कर ले उनके।
4: अच्छा तो गीता ठाकुर बोले ने जो सन की मशीन वगैरह बोले छो बोले अलग अलग रहे से सिलाई कर तो काजी काय काय मशीन
5: रहे हाँ, हाँ, मशीन दल मतलब बड़े मशीन छोटे मशीन दोनों अलग अलग रहे है नी
4: हाँ हाँ
5: हाँ
4: तो तू चल काय काय मशीन आसे जाल कसन बीती आसे
5: मतलब टिकू मशीन बन रहा है लेकिन मतलब खाली सिर्फ सिलतो मशीन आसे
4: अच्छा
5: हाँ
4: सिलतो ही मशीन
5: आसे कर कोनी देव आज कर तो कहे तो उन बाजू में एक आवरा से कहने पर हुआ
4: अच्छा बोले ने जैसे की ब्लाउज वगैरह सिलते रहने बोले ने कितलो टाइम लगे से सिल तो काजे गोटोक के
5: सादा ब्लाउज बोले तो आज मान चलो अच्छा सिलू बस ले तो आधा घंटा में कम्प्लीट हो जाओ सिल तो भी थी बाद अच्छा। लगले खूब बटन लग लगा पड़ो है
4: अच्छा
5: और बस कर भी थी बोले खून थोड़े मोन अब दुकान पर आए तो दुकान से उठन को नहीं लो तो फिर सामान दे फिर ऐसा हुआ है तो उसमें एक घंटा लग जाओ है फिर
4: अच्छा बोले ने दिन भर ने अगर सिलते रहने चार पांच टन
5: लेके मतलब बनू किया
4: अच्छा बोले ये बोले कसन रेट फिक्स रहे से काय कसन कौन ब्लाउज कितलो रेट आए बोलते असन कहीं रहे से
5: हाँ मतलब कौन कौन ज्यादा रेट बोल धुरत मैं अपने थोड़े असर भी चेक सोच रही कभी मतलब दखुन बाते कसन काय काय लगा बोला थुन सब कर 200 ले मतलब नीचे रो है मतलब ऊपर ज्यादा नहीं रो है रेट
4: हां अच्छा बोले ये संग संगे बोले तो चु किराना दुकान बोले आए बोलू
5: हाँ किराना दुकान असल ज्यादा दिन ही हो साल डेढ़ साल हो खोल दो
4: बोले बोल खुद चो पैसा चो है कि कहीं मदद धर ली सरकार बांट ले बैंक बांट
5: ले खुद चो पैसा चो रहे
4: असन अच्छा
5: हाँ और असने बीच बीच में जन की हम सब ग्रुप ग्रुप बांट ले लो लोग निकला हम तो उन सब निकला ले का पैसा चो सामान वगैरह बनवा थोड़े बहुत
4: अच्छा तो ये भी कहीं ये सब चीज चो और दूसर कहीं ट्रेनिंग बोल धर ला सा सोसाइटी समूह बांट ले कौन
5: ट्रेनिंग बोल लेकिन एवे तो और कहीं ट्रेनिंग नहीं करा सब ग्रुप वगैरह भी थी नहीं करा ला तो हूँ सब जो बारे में किस यार से मतलब हम जुड़ू रहो होता तो हाँ दिवस ट्रेनिंग का हाँ दिवस होता
4: अच्छा
5: उदला हम समूह भी ट्रेनिंग धर लू होता कोट लगे साल में आंद्रा ले रो हम समूह लोग ट्रेनिंग दे रो सब जन ट्रेनिंग कर रहा हूँ
4: अच्छा तो ये भी जैसे की समूह ने 10 जन आसू बोल साथे सब अलग अलग कहीं न कहीं काम कर सकते हैं सब पहले
5: मतलब हाँ अलग अलग कोनी एक जन और दुकान खोल ली से नहीं खोल ली से दुकान बना ली सुन बोले एक जन समूह भी थी और एक जन और सुन बोल सिलाई करू है मैं बोल बोली सिलाई करू है और एक जन उन लोग अनठे ला सुन खोल लाते उन लगे रोड लगे
4: अच्छा
5: और फिर बाकी जो दो एक जन स्कूल में जाऊ स्कूल काम करू है
4: अच्छा
5: हाँ स्कूल में जब प्यून काम करवाई स्कूल में सब हम जुड़ी मानते हो तब काम में जब है
4: अच्छा
5: तो और एक जन आज तो हम बल अपने थोड़े बहुत घर और काम में जब है एक जन उसने बल उनके परिस्थिति ठीक नहीं आए तो उन बल जूता जाऊ है
4: अच्छा तो देख गीता जैसन की तुम चो जो समूह आए की अच्छा बना तो काजे समय समय कहीं बैठे का मीटिंग असेंबल कहीं होते रहे से
5: हाँ बैठे वर्ष करू छी आज तो काजे आजकल थोड़े सब बैठ बैठ हो जाए तो नहीं हुई नीति नहीं हो ऐसे
4: अच्छा
5: हाँ बाकी बैठे होकर चलू है मतलब हफ्ता में तो महीना में हर महीना तो 100 रुपए जमा करूँ जी हम महीना में खाता में जाऊँ जी हम 2000 रुपए 10 जन तो ना जमा करूँ हम
4: अच्छा
5: मुझे पैसा के जैसे जरूरत पड़ू है तो जैसे जरूरत आती है इमरजेंसी अपने को नहीं मांगे तो देव ना
4: था अच्छा
5: तो वो नहीं दीदी का हम 2% सीधा से मतलब 10 जन में जैसे जरूरत रहे थे उनके सबसे सहमति ले उनके देव दूँ
4: अच्छा तो सरकार बांट ले बोले तो समूह लोग के कई काम धंधा कर का जी पैसे मिल
5: सरकार बांट ले मतलब बोल रहा जन मशरूम भी दिखोला एक रॉडी बट करा बल्ला तो सब हाँ बोलवा बाद में कोई कोई पीछे वाले हटू जब मैं मतलब मैं मेहनत तो हर काम मैं करे हम टाइप हुआ है नहीं सब आम के टाइम नहीं मेरे कौन कौन आजकल आम के बट काम करूँ से आम के टाइम नहीं रहे टाइप बोलवा था
4: अच्छा
5: बाकी कर तो कैसा क्यों होता है महीना में हर महीना में हम तो बर्थडे एक दिन तो हो जाए पैसा जमा करूँ और जैसे जे तो रेस तो उनका बिटिंग करूँ हमें फिर हम तो सब मूल्य मतलब 2-3 मिलन 25,000 थर ला से तो खाता लिख रहे बात सबसे सहमत लिख रहे मतलब 25,000 के ब्याज में
4: अच्छा तो ब्याज वगैरह बोले कैसा हिसाब में धरू आज जाले
5: 2% में धरू हम
4: अच्छा 2%
5: हाँ
4: महीना ने
5: हाँ महीना में मतलब 100 रुपया में 2 रुपया
4: 2 रुपया महीना ने बोलू हाँ तो ये भी तुम चो खुद चो पूंजी ने सब आपलान काम मन कर सास ने
5: हाँ खुद चो है मतलब धर रहा हूँ आगे 1.5 लाख धर रहा हूँ सेकंड मार्ग जब भर लो फार्म की तो लाइक कोरोना चक्कर में काय तो होली तो टाइम होली तो नहीं हो बोल तो फिर जब जगह जरूरत रहे तो मन बल्ला की हम पैसा छटके ही नहीं करे ठीक है और बाटू बोल तो खत पैसा नहीं रही सब रही तो सब बांट लू फिर उनका छठ ना कर लू पांच पांच सौ बीच में तीन चार महीना पांच पांच सौ रूपये जमा कर लू ये फिर लोन धुरू हम कौन कौन बोल तो फिर सौ सौ करूँ फिर लोन का जिन फार्म में आन लिंग के जिन फार्म के आन लिंग जमा करते रहे सब चीज डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा कर दूंगा उनके जमा कर दे कलेक्टर ऑफिस में मैडम सीओ हम तो सीओ मैडम लगे
4: अच्छा
5: उनसे साइन हो लेकर सब चीज उनका उनका पास होगा फिर उन जाए बैंक में
4: अच्छा फिर बैंक बांट ले तो उनको मेरे देने
5: हाँ मेरे बोलवात का खाता हम जित रहे तो हम तो चार गुना दे बोलवात दे खाता बैंक बिता बोले साहब बोले
4: बोले खाता में पैसा रहता रहा हाँ
5: खाता में मेन पैसा रहता रहा होता
4: जैसे मान लो 50,000 है तो तुम जो चार गुना 2,00,000 में रख सके
5: 2,00,000 रुपया हाँ अच्छा 2,00,000
4: तो गीता ठाकुर तुम चो जन स्व सहायता बना लो दिन ले बोले तुम चो जीवन काय हरी कुदिम बोले कसन लागे से कसन
5: मतलब अच्छा है तो मतलब खुद के मतलब एक तो खुद मतलब सेल्फ डिफेंस कुछ भी थोड़े तुम जो आप लोग अपने आप मनीर टाइप जो जन जो कई कई खुबे लोग नहीं जानते रहो तेरे क्या होता कहीं मीटिंग हुआ है समूह बांट ले या फिर कोई नेता बांट ले बिहार दिवस कहीं तो सबके ग्रुप बना आसू तो एक ही आऊ तो बोलूआ सबके ने हमको देखो अच्छा बल लगली सुन ले कई सुंदर बोलूआ था और जैसे की महीना में अपने दिन में पीला पीला खाओ कितने खर्चा करूँ से चलो हम बचत के रूप में महीना में 100 रुपया जमा करूँ दे उनसे हम भी अच्छा लगे से बोलूआ सब जान नहीं तो इंटर लग तो कई बनी होते रहे ऐसा टाइप जो
4: अच्छा बोले ने दुई पैसा बोले मेरे से यार तुम चो महिला जो एकता है बोले मजबूत हो बोले उन्हें
5: मजबूत हो अरे मतलब इतने साल हम 5-6 साल ज्यादा ही हुए थे आज तक मतलब सब भले सब सब टूटली उठली थी लेकिन हम सब 10-10 लोग पूरा
4: अच्छा बोले गोटुक एक सुतुर गोटुक समूह बनाने बात कहीं बोल काम कर लें झपके
5: जो बोल हम के जो बोल धरुआ था हमके ग्रुप में से ब्याज धरुआ दुई पशु में उन बोल तो सब 10 जन का जे कोई 1 जन का जे नु है उन भी जब बोल लास्ट हम बात होते कुछ भी करूँ तो उन सब 10 जन में बांटा हुआ है
4: अच्छा
5: कौन एक लाख धरु नु है हाँ जितना बोल ब्याज दू अपने ग्रुप में सब धन मैच धन धरेगी और बोल लोग बोल धरो उन सब जगह उनको उन पैसा ब्याज पैसा खाता में जमा हुआ है
4: अच्छा तो गीता ठाकुर दख तु इतलो अच्छा बोले तू चो समूह चो गोट आरो बोले तू खुद बोले स्वयं बोले ने धंधा पानी करन बाती जोन कमानी धमानी कर से सपाए गोट के सांगनी साल खूब कब जुआर जुआर जुआर
3: हाँ तो बहिन मन ये कितरो नगद गोट क्या मैं जान लू ने और ये तुम्हें सुनते रहस भेट वार्ता जे था ने श्रीमती गीता ठाकुर आप लो स्व सहायता समूह चो बारे में सांगते रहोत और इस संगे भेंट करते रहोत बलबीर सिंह कच्छ असन बहिन मन जब आप लो कमानी धमानी करुआत आप लो पायने ठिया उठुआत तो उन मन के कितरो हरिक लागू है ने और आमी जब असन बहिन मन चो कहनी के जानून से तो आम के वाले खूब हरिक लागू है कि आजकल आम चो बहिन मन घरे नहीं बसोत आपन के जोन ए से कहीं बुता वाले ने कहीं कोन कोन बहिन मन अगरबत्ती बनासो तो कोनी अचार पापड़ बनासो जे बल बुता ऐसे सिलाई बुनाई ने पशुपालन हुन सपाय बुता के करुण भाती आप लोग कमानी कर सोत ने असन गोट के सुन ले हरिक लागू आए और असन गोट के सुनते सुनते गोटोक गीत सुन ले और हरिक लागू आए तो बहिन मन तुम चो काजे गोटोक और गीत के मैं आन ले से ये गीत कुरियात बल्लू राम और हुन चो संगवारी मन तो आलैया ये काय रसिया गीत के आमी सुनू

तो काय सुंदर गीत के सुन लू बहिन मन, और जे भी आम्ही गीत सुनवानी तो मन के खूबे हरिक लागू आहे ने हुनी काज तो तुमचे काजे में ये सुंदर सुंदर गीत के धरून अमरते रहन से मांतर बहिन मन गीत गोविंद होली ने और ये गोट बात बल होली संगे संगे मचो जातो समयाबल होए से। तो बहिन मन असनी आमचो कार्यक्रम के तुम्ही सुनते रहा, आम के असनी मया देते रहा और मके दिया तुम्ही विदा। तो जातो पूरे कार्यक्रम घर द्वार सुन तो मचो सब पाए बहिन मन के मैं मन की करें से जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। दिन का 1 बजने को है। हिंदी समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद के तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के 2रे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चोक गोट।
3: खेतीहर गांवकारी दादा दीदी मन असनी गोटोक और लाभ चुकमानी हो से मछरी पाल तोर ए कमानी बले बरक कारणे आम के लाभ दे हुए आरु नंगत पानी रले आम के ए कमानी ले रोज जे बरक कम मसागत ने जुगे लाभ मिरुक सके। मछरी पालतो काजे आमचो कोनी कोनी दादा भाई मन आपलाहान मुंडा तरई ने मछरी बीज बले डारला सोत होती आरु मछरी बीज डारतो काजे सावन नहाले भादो महीना नंगत रहे से जसन की आमचे रोपलोर बुनलोर फसल मन ने बीमारी से मारी धरुआ है तो असनी मछरी पालन ने बले बीमारी से मारी के ध्यान देव पड़ुआ है। तो आज ही मैं यही मछरी मन के धर तो बीती जोन बीमारी मन होए से यही मन के और हुंचो उपचार करतो उवाट मन के सांगें दे। असन तो कोनी बले तरी ने बीमार होलो मछरी मन बाइबिकाल होन रुआत नहाले खंड रेटेले लगड़ुक मुरिया हुआत आरु संगे संगे घन घन पानी उपरी एवात बीमार मछरी खाउक बले छाड़ून देवात आरु धीरे धीरे पोहरुआत असन दखा दिले किसान के खूबे ध्यान देव पड़ुआ है। पहिल बल्लो ने वातावरण ले जसन के पानी लहराल बनवाओ जे दूसरा होय से संक्रामक रोग तीसरा है कुपोषण ले और चौथा नंबर जोन रोग होय से ये होय से नगद दखा रखा निकर ले। तो पहिल जोन वातावरण ले होय से एक में सांगे से नगत वातावरण नी होलो ने मछरी मन काया की मुरुक मुरिया हुआ नहाले बाइबिकाल दखा दी हुआ और ये चो होतो कारण आए बोलो ने जोन मुंडा तरैया से हुन लगे कचरा होले नहाले कहीं दवाई ओखत के पानी ने हमें पकाउन देऊ से असन होले काया मछरी मन बीमार हुआ और ये चो उपचार काजे तरई चो पानी चो जाँच होता चो तापमान चो जाँच करतो रहे नहाले जुगे चिहला होले ताजा गोबर के 200 किलो 2.5 एकड़ चो हिसाब ने नहाले फिर कापर सल्फेट 0.5 PPM के बले उपयोग करतो रहे। दूसर होय से संक्रामक रोग ये रोग पानी लहराले मछरी मन के हुआ है। मछरी चो बीच के गोटोक ठान ले दूसर ठाने ने तो बेरा नहाले कोनी मछरी मन ने जसन के घाव हो रुआ है तो हसन होन रले बले ये रोग हुआ है। घाव ने फपूंद होक मुरिया हुआ है पाछे घाव बाढ़ुक मुरिया हुआ है और मछरी मन मुरुन जाऊआत एचो उपचार काजे मछरी मन के 3% नोन चुघोल ने नहाले 300 ग्राम नोन के 10 लीटर पानी ने नहाले फिर 100 ग्राम पोटास के 10 लीटर पानी ने घोलून भाती 5 ले 10 मिनट मछरी मन के बुड़ौन संगात रहे तेबे जो नए कि ये बीमारी मन के गुचाव खो हुआ है। असनी होय से गोटक जलोदर नाव चो बीमारी आए ये बीमारी आगर करुन कतला मछरी ने हुआ है और बीमारी मछरी जोन होय से हुंचो पोटा ने पानी जमुन रुआ है आँख बाहरे निकरुआ है और पोटा फूलन जाऊ है संगे संगे देह ने घाव बले होन जाऊ है। एचो उपचार काजे बीमार मछरी के तरई ले निकरौन देतो रहे पाछे बाचलो मछरी मन के 5 PPM पोटास चो घोल ने 2 मिनट तक संगातो रहे। सपाय रोग के गुचातो काजे 2 PPM चो हिसाब ले पोटेशियम पर मैग्नेट नहाले पोटास चो घोल के तरई ने उपयोग करतो रहे। तीसर होय से कुपोषण ले होतो बीती रोग नंगत दखा रखा नी कर ले और मछरी मन के खातो चारा नी मिर ले बले मछरी मन चो बाढ़ नी होक सके आरु असन बेरा बड़े मछरी नानी मछरी के बले खाऊआत आरु असन समय ने मछरी मन के कई ठन बीमारी धरुआ है। एचे काजे आम के मछरी मन के नंगत चारा देतो रहे आरु मछरी मन के रोग राय ले गुचातो काजे सबले नंगत होय से कि एमन काजे नंगत चारा ऑक्सीजन जुगे शीत आरु गरम ले बचातोर तरई चो साफ सफाई आरु गोबर संगे नंगत ओखत दिले रोग राय ले गुचाव खुआ है आरु किसान के जुगे लाभ मिरुआ है।
0: कृषि सामी की बेड़ा खाड़ा चौगोट का प्रसारण अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
4: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। आपकी भावनाओं से जुड़े पत्र और आपके पसंद के गीतों को लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम श्रोता सुमन लेकर। स्वीकार करिए आशा दुल्हानी का आत्मीय नमस्कार। और अब समय है आज के पहले सुरीले गीत का। उदित नारायण और लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं उत्तम सिंह। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पुणे से प्रियंका आर्या, पंकज वाड़ोदे और जरूर वरूर से बाबा साहेब वाड़ोदे और मीनाक्षी चरपे। ग्राम लुहेड़ी, जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी रिया, रेनू और रोनिका यादव। लोरमी छत्तीसगढ़ से ये हैं नारायण खांडे, रजनी तुषार और समीर खांडे। पाकुड़ झारखंड से ये पत्र आया है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद का। वोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। जटपुरा पनवाड़ी महोबा से देवीदीन अहिरवार, सुनीता, कपिल, दिनेश और पूजा। और मगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ से आप हैं कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक, रीना और पिंकी सेन। ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं रोहित यादव, पंकज यादव, अंगद, आयुष, आर्यन, बेटा यादव और आदर्श यादव। धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है कौशल किशोर मट्टू, संगीता हर्षित और वैभव मट्टू का। संत गाडगे नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से ये है अनिता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े और लोकेश गाठोड़े। राजनगर मधुबनी बिहार से ये है नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल रानी। ग्राम धनोरा जगदलपुर बस्तर से आप हैं वी, पूनम नायडू, प्रीतम, साजन, के मास्टर ऋषु, शिवांशु और अभिषेक नायडू। ग्राम नागरकोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं बबली साहू, जगराम साहू, जामुन देवी, प्रेम

श्रीधर नारे और मीनल नारेगा। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से ये हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विनी मंगलाबेन और सुषमा कपूर। मित्र नगर बीच शहर महाराष्ट्र से अगला पत्र है विकास बंसोड़े, रेखा अदिति और वैभव शिंदे का। बड़ा बाजार उदयपुर से ये पत्र है गोपाल तंबोली, कांता तंबोली, तिलक किरण और सक्षम तंबोली का। अगला पत्र आया है ममना सबीला, जिला हमीदपुर से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू, रंजना वंदना और देवांशी विश्वकर्मा का। और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये है मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, मानवी, सीमा, तनवी, ऋतिक, मोहिनी और लक्ष्य, सोनी। तेलंगाना निजामाबाद से अगला पत्र है शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख भाव, शेख इकबाल और नूरजहां बेगम का। ग्राम वडगांव डिगी बुलढाणा महाराष्ट्र से है वासुदेव बोदोड़े, माधुरी बोदोड़े और आकाश बोदोड़े। देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ बनारस से अगला पत्र है बाबू यादव, मनसा यादव, दुर्गेश, सीमा, अनु और अरुणेश यादव का। और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से यह है मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर यासीन। कासम कॉलोनी सनावत से आप हैं यूनुस खत्री, इदरीश खत्री, शफी खत्री, नूरमीना, इरफान मीना और काशिफ मीना। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये हैं उदय भानपाल, जयहिंद पाल, प्रतीक्षा विमलेश और दिव्यांश बघेल। नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से ये पत्र है लोकेन्द्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता और रेखा वर्मा का। कामठी नागपुर से हैं श्रीमती किरण शर्मा, कैलाश प्रसाद शर्मा, आशीष और अमृता शर्मा। ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा से कालीचरण कुशवाहा, श्याम कुमारी, सुखदेवी सन्नी और सोनिया। और अगला पत्र है बारोंड विश्रामपुरी से प्यारी दास मानिकपुरी, शिव कुमारी, खेलेश और नमिता मानिकपुरी का। शिवाजी नगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से हैं राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर खोबरखेड़े और इंद्राबाई खोबरखेड़े। और खांडवी बुलढाणा से आप हैं दिलीप राम धाड़े और स्वराज राम धाड़े। थिलोरी अमरावती से अगला पत्र है सुनेना पवन भोंडे और तनुज पवन भोंडे का। बीरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से आप हैं संतोष कुमार राव, भारती राव, वेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। पीपल, नीमचोक, अमोड़ा, केशकाल छत्तीसगढ़ से ये हैं सुनील यादव, शिवकुमार यादव और तनिष्का यादव। और गोगामा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से अगला पत्र आया है उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफार खत्री का। और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर दो से ये हैं कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू। अगला पत्र आया है रानीगांव नगरी जिला धमतरी से कलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू का। जवाहरनगर दुर्ग से ये हैं आरसी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े। और ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुड्डी और प्रमोद कुमार डुड्डी, साथ ही हैं सौरभ डुड्डी। कलानौर से ये पत्र आया नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का। और भाटापार छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, वानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता और वैदेही जोशी। गांव खेड़ावाड़ी हिंगोली महाराष्ट्र से ये हैं शाहजी बोटके, नंदा बोटके और हनुमान बोटके। यमुनापुरम बुलंदशहर से अगला पत्र आया है धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता सोलंकी, निष्ठा शौर्य और मून सोलंकी का। आर्यनगर खोखा भिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल। कस्बा गुन्नौर से ही हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरीन, फारिया और ताहिरा। और भूट चौराहा बुलंदशहर से आप हैं पंकज सिंह, चंचल, रशिका, आकृति और वंशराज सिंह। लक्ष्मीपुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आप हैं तीजन सिंह मरावी और देवलाल मरावी। और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अगला पत्र है योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, करीना और अंजलि सारवा का। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ये हैं उदय भान ठाकरे, ग्रंथ ठाकरे, गौरी, दीपक, नवीन, शिखा, नीलिमा और चंद्रभागा ठाकरे। ग्राम छिंदनी पुजारीपारा जिला कोंडागांव से ये हैं सेतुराम चक्रधारी, मंगतीन चक्रधारी, आशीष और अस्तिका चक्रधारी। अगला पत्र आया है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से नेत्रपाल सिंह, वंश पवार, अंश, वेदांश, वंशिका और जस्सी पवार का। गांव हीरावरी फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। तहसील अलीगंज जिला एटा से दीपक शाह के ज्योति और सक्षम। गांव खोखरा वाली अनूपगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान से ये हैं विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। और वार्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी अरोड़ा और आरती अरोड़ा। बुर्ज हनुमानगढ़ पंजाब से आप हैं रमन वर्मा, अमन, दिव्यांश और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से ये हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल और नारायण इंगले। कस्बा नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ये हैं नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार और हिमांशु सुथार। ग्राम बीरखेड़ा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु, हिमांशु, प्रांशी, निवेदिता, ज्योति, मानसी, सुदीपा और सुशीला पाल। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से ये हैं सैयद मसरूर, नाजिया हसन, आफिया हसन, इब्राहिम और सद्दाम। जमानिया जिला गाजीपुर से ये हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक और स्वाति जायसवाल। और यहीं से ही हैं एसपी जायसवाल, डिंपल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। बुलढाणा वडगिड़ी महाराष्ट्र से ये हैं अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक कुमार और दीपाली। कल्याण मुंबई से आप हैं किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक और प्रतीक्षा। और बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना और सुमेध। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। और बुलढाणा वरवट बकाल महाराष्ट्र से नारायण हागे, जय दिव्या और कमल हागे। सहारनपुर से आप हैं राधा नामदेव, अपर्णा, अभिषेक और हर्षित शर्मा। गौना जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक नामदेव, द्रौपदी रामदेवी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल, आकाश और रानीपरी नामदेव।
सूर्य

जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, अनीता, ज्योति, संजना और भारती नामदेव साथी हैं। पूर्वी रूही, शक्ति, भक्ति, अनु, अनन्या, आदर्श, दीपक और लव नामदेव। चंडीगढ़ से ये हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। और जाखुद राजस्थान से शंभुदयाल खटक और विमला देवी खटक। ग्राम मामणपाल दरभा से ये हैं गणपत बघेल, मनीष बघेल और अनंत बघेल। आप सभी की पसंद पर लीजिए, सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आइए सुने अनजान का लिखा लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म डॉन का गीत। इस गीत को पसंद किया है अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक और तन्वी गोहर ने। भिलाई से आप हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया सौरभ और शौर्य जैन, साथ ही हैं शुभम जैन। मोटका माफी जिला खंडवा से आप हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। ग्राम भंडार सिमनी जिला कोंडागांव से आप हैं सुभाष सिंह चक्रधारी, कविता मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी। और ग्राम पंजोनिया जिला जालौन यूपी से हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। बेड़ी से आप हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर। पथरिया से आप हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। ग्राम दरचुरा से आप हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। बदलापुर मुंबई से ये पत्र आया है विजय वडालकर, लता अजिंक्य वडालकर का। और अंबरनाथ मुंबई से ये हैं आकाश रेलकर और वैष्णवी रेलकर। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। भटिंडा रोड डबवाली से अगला पत्र है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। बिलासपुर से ये पत्र है छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी का। उत्तर बस्तर कांकेर भानु प्रतापपुर से आप हैं प्रकाश त्रिसुनिया, विकास त्रिसुनिया, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या। धरसीमा से ये पत्र आया है छेदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव का। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से ये छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी और प्रवीण साहू का। सब्जी मंडी बुलढाणा महाराष्ट्र से ये हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुजू बाबा और आयजा एनम। धर्मपुरा बस्तर से ये पत्र आया है डी वनिता राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी सोम शेखर रायडू, डी अक्षय कुमार नायडू, डी दुर्गेश कुमार नायडू और डी रोजा देवी नायडू का। अगला पत्र है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरूला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुस्तफा खान और राव भाई और शाहिद भाई का। गांधीबाग अकोला से ये हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ग्राम लोहारी से अगला पत्र है राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला और गायत्री धंजे का। और खुर्दी रोड मानपुर से ये हैं विजय वैद, रानी, महिमा और नीतू वैद। जमशेदपुर से आप हैं अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार। और तरपुंगी से आप हैं संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश गुप्ता और लक्ष्मी प्रतिमा गुप्ता। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से अगला पत्र है नारायण लाल साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंती साहू और नेहा देवी का। संबलपुर कांकेर से ये पत्र है फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, ईशिका और तेजल यादव का। महादेव घाट अमलेश्वर से ये हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। नवागढ़ कटई से अगला पत्र है नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। नयापारा भिरई से ये हैं श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज सूर्यवंशी, ईश्वरराज, श्री चंद्रकांत, कुमारी प्राची और टीयूषी सूर्यवंशी। अगला पत्र आया है कोरबा से नैनदास शीला देवान, ओम प्रकाश रुक्मणी, जयप्रकाश प्रीति दीवान, सिद्धांत सौर्य और कुमारी सानविका। प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से ये हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा का। वरुण जौलका से आप हैं महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे। मालेगांव से आप हैं दत्ता घायल, सुनीताबाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल। कुंभार गली कोलगांव से ये हैं पांडुचंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश और संतोष कुमार चंदन। मछली गोदाम केदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, ऋषभ सिंह, लिल्लू ऋतु सिंह और धनबाद झारखंड से हैं अमित कुमार, प्रियंका और बेबी समृद्धि। झाझा बिहार से संजय कुमार सिंह, पूजा, रवि, आरती सिंह। और पटना बिहार से भुवनेश्वर सिंह और लिल्लू ऋतु सिंह। अगला पत्र है जिला बालो छत्तीसगढ़ से देवनारायण साहू, योगिता चंचल रानी साहू, गीतिका उमाबाई, गंगाराम साहू और त्रियांश कुमार साहू का। ग्राम बुड़गहन से आप हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। नोंडी लोहारा संबलपुर से गौतम कुमार उर्वशा, डामिन उर्वशा, लक्की, तुलसी, ऐश्वर्या और याशिका उर्वशा। भाटापारा दतरेंगी से आप हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। बड़ा बाम्बोद गांव सुपाई साही से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन। धुर्राबांधा भाटापारा से अगला पत्र है प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू। दंतेवाड़ा बचेली से ये पत्र आया है बलराम सेन, इंदु, पुष्पराज, रितिका पोषण और भुवनेश्वर सेन का। महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप हैं सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदनी और ओंकार शर्मा। झुमरी तलैया से अगला पत्र है देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले और छक्कुली इंगोले का। भटेना से ये पत्र है करण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा और चटोदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। वाशिम से ये पत्र आया है राजेश खंबायातकर, प्रेमा खंबायातकर, रजनी भावसार, राजू भावसार और स्नेहल का। वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से अगला पत्र है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। ग्राम भिलोरी बावनालाग जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से आप हैं मास्टर देवव्रत साहू, राघवेंद्र साहू, बेबी विधि दीपिका साहू, कविता शशि साहू, बेबी सिद्धि साहू और मास्टर हेमंत कुमार साहू का। गांव रतनपुर से आप हैं भागीरथ नायक, जितेंद्र नायक, सुभाष, रविंद्र नायक, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, गुनगुन।
दिल्ली शहर मोरीगेट से ये हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। और धाणी नादुरा महाराष्ट्र से अगला पत्र है श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठेगा। ग्राम बेलरगांव से ये हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन और हिमांशु अंकित देवांगन। ये पत्र आया है जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम हरिशंकर, प्रशांत और रत्नेश प्रजापति का। और ग्राम कालापारा सरगुजा से हैं रामचंद्र गुप्ता और पांडेराम रजवाड़े। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। प्रस्तुत है ये फरमाइशी गीत फिल्म डॉन से।

आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। फिल्म अपराधी के इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक ने। सुनना चाहते हैं? बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। भाटापारा से आप हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भ्रगु, विनय ठाकुर और सोनाडी से ये हैं सुब्रत चौधरी, बेबी अनिशा। नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र और तेजल साहू और मोहनवारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी साहू। जामरून से आप हैं दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय आशीष, पृथ्वीराज और कुमारी साध्वी जोशी। जसपुर उत्तराखंड से ये पत्र आया है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से ये पत्र है रामकुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत, कार्तिक और युवराज राउत का। ग्राम परसा टोला जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खूमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया और साथ ही है रिजवान खान, आशिया सबिया, अनस और रेहान। खुपटी महाराष्ट्र से ये हैं बंडू लोहार पोपलगढ़, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़ और श्रीरामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, श्रावण अनिता बिड़वे। गौतमनगर जिला नांदेड़ से ये हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अगला पत्र है अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। पोटियाकला दुर्ग से ये हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। अनारकली बाजार जगराव से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और भाई सुच्छ पाठक। चार मीनार चौक गंडे पंडरिया से अगला पत्र है दरियानुमल अनित्रा मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से ये हैं हरीश कमल, सेतपाल भूमिका और सुशीला दादी। डोंडी लोहरा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामोरिया, डोली, बेबी पूजा तामोरिया और प्रभा देवी तामोरिया। किकीर मेटा बेलहारी पाटन से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा और गुरामी डोंडी लोहारा बालोद से पीयूष नेताम, ज्योतिबाई नेताम और कोमल नेताम। लालमाता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ से ये हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहरबाई और प्रभुलाल बागरी। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष आरू साहू और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार और दीक्षा खुश मूड़त। बलोदा अकलतरा से अगला पत्र आया है दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल का। और मेघापारा लोरमी से ये पत्र है मनोज कुमार साहू, कुसुमलता, कृष्ण धनंजय और गायत्री साहू का। और तेंदुखेड़ा जिला दमोह से आप हैं ओम प्रकाश नेमजी। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरग, जैतक बिरग और मीका बिरग। गांधीग्राम से आप प्रवीण सोनी हैं और अहमदाबाद से हैं कंचन सोनार और कुसुम और कंडला बंदरगच्छ से ये हैं जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और जेनेश। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर। गांधीनगर गुजरात से ये हैं सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा राठौड़ और प्रज्ञानंद देवांगन। लच्छनपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से ये हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परिसंजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। और छतरी तालाब अमरावती से आप हैं साधना रानी गुप्ता, कविता गुप्ता, नेहा और कोमल गुप्ता। देवरी भाटापारा से ये पत्र आया है गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री का। और ये अगला पत्र है उमरखेड़ से गंगाधर पोपलवाड़, सम्यक, प्रियंका, लक्ष्मीबाई पोपलवाड़ का। खरगोन मध्य प्रदेश से ये हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा और डॉक्टर अमित वर्मा। छोटी बलिया करजत से अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले और नरेशा बेगम फूलवाले। और कापासड़ा नई दिल्ली से नशरीन आजाद, आमना परी और मंजूर फिरोज रजा। फरसगांव से ये पत्र आया है हरीश साहू, पायल मेघा, राजीम और नवीन साहू का। पाठरकवाड़ा से ये है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची धनुश्री और अनुश्री बुरांडे। और बल्लार शाह से हैं सूरज लोड़े, प्राची लोड़े और एकलव्य लोड़े। खंडवा से ये हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार। और बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू पूजा, रोशनी और अजय गंगराड़े। और अहमदपुर के गांव से ये हैं दीपक फूलमाली और कैलाश फूलमाली। गोलबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय। और दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। बोरसरा नेहला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। फिल्म अपराधी का गीत सुनिए आप सभी की पसंद पर।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। अब पेश है सनम तेरी कसम फिल्म का गीत, स्वर किशोर कुमार के, तर्ज बनाई है गुलशन बावरा ने और संगीत से सजाया है RD बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइशी पत्र आए हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा। रायगढ़ से आप हैं रोहित जयलक्ष्मी, ऋषभ अंश लक्ष्मी। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया। भाटापारा से ये हैं दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत और पेंशन बड़ा। रायपुर से ये हैं रोमनाथ यादव, वंदना, सूर्यप्रकाश, शीला, कनश, गुनगुन और तन्मय यादव। सर्वानिया महाराज, जिला नीमच, मध्य प्रदेश से आप हैं गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा, मधुसूदन, यशस्वी और हंसवी पाटीदार। जतुका किशनपुर से ये पत्र आया है आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज का। सहारनपुर से ये पत्र है आशा नारंग और सुरेश नारंग का। मोहम्मद हलवाईयान, शेरकोट बिजनौर से ये पत्र है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजरानी और हिना कौसर का। जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये हैं सुरित रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, सुनीता रेशवंत साहू और मास्टर रंजीत साहू। मोती गार्डन भाटापारा से ये हैं मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार, चिंटू और युग कुमार झेरिया। हनुमानगढ़ राजस्थान से ये हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेस नायक और शोभा नायक। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ और शाइना शर्मा। और तीन महुआ खापरखेड़ा, जिला रायसेन से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार, आरती, ममता और गोमती साहू। महाराष्ट्र बीड शहर से ये हैं पराग पगारिया, प्रकाश पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और सरला प्रकाश। ताजपुर मोरबा से भाई कारी का है श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक और लल्लन मिश्रा। ये पत्र आया है कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली का। और सुभाष वार्ड भाटापारा से अजय यादव, श्रीमती पार्वती यादव, गिरीश कुमार और कुमारी प्रेरणा यादव। और गणेश नगर बिलासपुर से ये हैं अशोक कुमार यादव, श्रीमती अनीता यादव, प्रिंस कुमार और गब्बर यादव। फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन, आप सभी हैं ग्राम सौंगा मगरलौट से। ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजू भाई, परू मुबारक बारे। और भोकरी तालुका रावेर से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से ये पत्र आया है दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार का। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। मोताला महाराष्ट्र से अगला पत्र है विजय सुरलकर, रतनवाला सुरलकर, आरती गोरी, ओम और आदिनाथ वादे का। वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि, निधि और मायरा सुरोशे। और डोंबिवली मुंबई से भावना यादव, अधीश, स्मित गोरे और श्रियांश गोरे। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया। और ये पत्र आया है गांव कुमार हैड़ा, जिला सहारनपुर से सैयद मसरूर, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया का। लोहड़ी गुंडा बस्तर से ये है चंदननाग, हरीशनाग, मोतीराम मौर्य, दुखुराम मौर्य, उदयनाग। और दरभा बस्तर से रामघर कश्यप, रामघर बघेल, रामघर ठाकुर, सोनूराम ठाकुर, बाल सिंह नाग, मनीष कर्रम और नंद किशोर ठाकुर। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा। और मलुट के पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी। और दौलत बाग मुरादाबाद से अगला पत्र है जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नादिम अली और जुनैद अब्बासी का। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी तपस्या, पारस और करिश्मा कामले। वाणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चव्हाण, तेजस्वी चव्हाण, अंकिता, अनिकेत और माई चव्हाण। और एमआईडीसी चंदननगर सतारा से सतीश वाघमारे, आतिश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रमेण वाघमारे। बनियापारा छत्तीसगढ़ से ये हैं रामचंद माखीजा, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार, बेबी स्वाति माखीजा और श्रीमती सविता माखीजा। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू और कान्हा, आदित्य देवांगन। और बम्हर चाटाडीह से ये हैं गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की और बेबी मीनाक्षी देवांगन। राजनगर मधुबनी से राजकुमार गुप्ता, विनीता, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता। और छपरा दालदली बाजार से संजय कुमार, संजीत, सर्वजीत। और सीतामढ़ी महावीर स्थान से प्रभात गुप्ता, अरविंद, मुंटू और निक्की गुप्ता। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, सतीश सर्राफ और जगदीश तांबर। धनौरी तेलीवाला से अगला पत्र है निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का। और तेलीपारा बिलासपुर से यही एक पत्र है रज्जन साहू, ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनिता श्रीवास का। दतरेंगी से अगला पत्र है विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा, रीना यदु और लक्ष्मीना यदु का। और बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। और भदीटोला डोंडी बालोद से ये है नमित कुमार गौतम, पीहू, प्रियंका, नीतू और मुरली गौतम। सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

श्रोता सुमन कार्यक्रम का अंतिम गीत प्रस्तुत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, सुरों में ढाला है आरडी मर्मन ने और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। इस गीत की फरमाइश आई है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबीय। चांदनी चौक गंडे पंडरिया से आप हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र सेन और यही से ही है खुशी रौनक सेन। तहसील नादुरा से ये हैं सोपान तायड़े, विजय तायड़े, अमोल आणी और सरिता तायड़े और साथी हैं वसंतराव भोजने, सुनंदा, राजू और सोनू भोजने। बकावंड से आप हैं गिनूराम बघेल, गोमती बघेल, तनुजा, सुभाष, मनीराम और गजमती बघेल। महामायापारा ग्राम दरचुरा से फिरंता साहू, दुलोरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। दुर्गा चौक जुनापानी सनावत मध्यप्रदेश से यहां पे घालूसी बड़ोले, सीताराम, हीरा लाल, तेंसी डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन। जलगांव से ये हैं डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश भूतेकर, कार्तिक और अश्विनी भूतेकर। गांव चोहल्दा बागपत से संजय ढींगे, नमन मुस्कान, कुणाल, मास्टर मुनीर खान, अब्दुल सत्तार अब्बासी। और जिला कवर्धा से ये हैं राजेंद्र सिंह नेताम, देवी सिंह, दक्षप्रिया महामाया और गीत सरगम नेताम। अर्जुंदा बालोद से दिनेश यादव और साधना यादव और मंचुआ बालोद से रिंकू रावटे और अयांश रावटे। गीदम रोड जगदलपुर से ये पत्र आया है टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, तुलसी जयराव, भाग्य लक्ष्मी राव, नानू, श्रवण राव, कीर्ति राव, आनंद और मनीषा राव का। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, प्रिंस आकाश गवाणकर और टुक टुक गवाणकर। और आकाश हाइट्स बहादुरा नागपुर से ये हैं शैलेश गवाणकर, वैशाली, श्वेता सुमित गवाणकर और कुमारी ध्वनि गवाणकर। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य और किश श्रीवास्तव। और अमरपुर पेंड्रा से ही दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और शेडी वडने रकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर और भगवान चंद्राकर। और चितलवाड़ी अकोला से ये पत्र आया अमोल इंगले, अर्चना, सर्वेश, अधीरा इंगले का। सीमंधर पार्क वीरमगाम से आप हैं अजित प्रेमिला, भावेश, सनी हेतल, कृष्णा और जमीन भावसार। और कोलीनादौड़ से ये पत्र है नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ का। हथनीपारा भाटापारा से चोराम वर्मा, मुकेश कुमार दुलारी और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा। पहाड़ा अहिवारा जिला दुर्ग से ये पत्र है पोषण बंछोड़, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोड़ का। मुक्का भाटापारा से अगला पत्र है दयालु राम वर्मा, तेजराम वर्मा, सहदेव रामजी और चिरंजीवी वर्मा। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फा डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर टावर। छत्रपति संभाजीनगर से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर और अंशुमन और साथी हैं ओबी रोहासी से ये पत्र आया है डगेश्वरम साहू, नूतन कुमार, गौरव कुमार, दतरेंगी से अगला पत्र है मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार और सागर कुमार का। उमरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से यहां पे मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान और अबान अब्बासी। महासमुंद से अगला पत्र है अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, ऋचा गायत्री और भीषम दास मानिकपुरी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से ये हैं चंदुलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल। और बेमित्रा से ये पत्र है सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता और भाई कमलकांत सारथी का। चूड़ी लाइन भटापारा से आप हैं अब्दुल मजीद कुरेशी, रियाना बेगम और मोहम्मद साजिद। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ये हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। हटरी चौक भिलाईगढ़ से हैं कीकराम देवांगन, रेनू देवांगन, प्रियंका देवांगन और रजनी देवांगन। तिवर्ता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जय मरकाम और जागेंद्र गजेंद्र मरकाम। ये पत्र है कोरबा छत्तीसगढ़ से जोहित यादव, विपिन, आयुष और श्रीमती फूलजी यादव का। भागभैरा बदरसी से ये पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशन, खुशबू सेन। और मोरबा भिलाईगढ़ से देवलाल कर्ष, कामनी और यशकर्ष। और यवतमाल विदर्भ से संतोष कर्षे और विनोद खर्से। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सबले पाटिल, राजदीप राशे, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और मदनपुर कवर्धा से ये हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। खंडवा से यथार्थ कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा, राजेश कुमार, अंजलि, संदीप कुमार माधुरी, पिंटू कुमार, जयश्री खंडाले। और छत्रपति शाहनगर हिंगोली से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले और मयूरी सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले। पाथड़ी महाराष्ट्र सीए अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा। हटोत बाजार लाहौस से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। हरदेव लाल वारा वार्डसिमगा से रमेश कुमार, श्रीमती माया और रिंकू सन्नी कोमल यादव। जमशेदपुर से ये हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी और सोनू भाटिया। चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज। और ये अंतिम पत्र है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी और सुनीता शर्मा का। तो लीजिए सुनिए हरे रामा हरे कृष्ण फिल्म का नगमा आप सभी की पसंद पर।

श्रोताओं, आज का ये अंतिम फरमाइशी गीत और इसके मधुर एहसासों के साथ मैं आशा दुल्हानी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: Domestic equity indices were trading around 1.2% higher during afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the U.S.-Iran conflict. The Sensex surged 944 points to 76,360, while the Nifty climbed 270 points to 23,989 when reports last came in. The Norway Chess 2026 kicks off in Oslo today with round one matches. The tournament will officially begin at 8:30 p.m. IST. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा, कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली के एक

0: भारत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रूपये

0: 12 पैसे और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले दो सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीतिक को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमरीका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हल्बी बोली में हमारा दैनिक कार्यक्रम कला और कलाकार। दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र,

जुहार जुहार। कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी के, मैं मन की करिन से खूब्बे खूब्बे जुहार। दादा दीदी, कला और कलाकार कार्यक्रम भित्रे आमी कलाचो हुनरचो गोटके गोठ्यांसे ने, के भई लुहाचो गोटके गोठ्यांसे, तो के भई माटी कलाचो गोटके गोठ्यांसे, तो के भई आमी चित्रकला, के भई लोक कला चो गोट के जानुन से। दादा दीदी, दिन रात गोटो करुन आमचो खेतिहार भाई बहन मन कितरो मसागत कर सोत ने, और मसागत करुन खेती कमानी कर सोत। के भई लेहरा पानी चो चिंता फिकर रहे से, तो के भई घर गृहस्थी चो जिम्मेदारी रहे से, और मनुख जीवना ने इतरो संघर्ष आसे कि देह थाकुन जाए से, और देह पाए थाके से हुंचो संगे संगे थाके से आमचो मन ने आमचो मन बल थाकुन जाए से, दुनिया भर चो चिंता धोखा मन भीतरे घर करे से, और ये परेशानी के आमी सब पाए जानो ने, और ये मन ले गुचातो काजे परेशानी के गुटक उवाटा से, और ये उवाटाए कला। हाँ दादा दीदी, सत्य सुनलास, कला नी असन उपाय जेचो लेनी बड़े बड़े बीमारी मननी ठीक होए से। खुबे जसन डॉक्टर मन आसोत, खुबे खोजाकारी मन बलनी हुन मन ये मानसोत कि जसन कोनी कोनी भया हो रसोत, के चे काय बोलत हुन के दिमाग खराब हो लिस बोलू आतो, का कोके कोके पागल हो लिस बोलू आतो, असन लोग के बलनी कलाचू माध्यम ले हुन मन नगत हो सोत। जसन नी तपलो घाम ने रुकचो छाए मिरले कितरो असिर लागुआ, उसनी ची आमचो मन ने परेशानी रले आमी कला के दखुआनी, तो आम के उसनी अस्थिर लागुआ। जसन पीला मन के जब मन चो खाजा मिरुआ तो पीला मन कितरो हरिक हुआ, उसनी ची कलाकार जब आपलो कला के करुआ नी आपलो कला बुता के, तो हुन हरिक हुआ हुन चो संगे संगे हुन चो कलाकारी के दखुन भाती दूसर लोग मन हरिक हुआ। दादी दी, तुम्ही सुरता करा, जेब नी गाँव ने गोटो कुमार माटी चो हांडरी कुंडरी बनाए से, दिया बनाए से, गमला कोंडी बनाए से, तो हुन माटी के काय सुंदर एकदम बाचुन भाती आनु आए ने, और चाक ऊपरे मंडा उन किंजराउन किंजराउन हुन के गोटोक आकार दिवाए, फिर आकार दिलो पाछे काय करुआ हुन चो ऊपरे सुंदर सुंदर बाना बनावाए, हुन चो ऊपरे सुंदर सुंदर बरन बरन चो रंग भरे से, और काय सुंदर हुन के बनाए से, और जब हुन कलाकार हुन कला के करते रहे से नी जन हुन कुम्हार आए, तो हुन जित्रो बल दुख आसे हुन चोनी हुन के भूलकुन जाए से ने, हुन आपलो बुता ने मत भूल हुन भाति हुन बुता के करे से, तो हुन के हुन चो मन ने शांति मिले से, बल्लो ने हुन के हुन कला में हरिक लागे से। तो असनी आमचो बहिन मन काय कोन कोन सूट सील सोत, कोन कोन ब्लाउज सील सोत ने, तो काय सुंदर सूट के कोनी बहिन सील ली से ने, तो हुन काची काची सील ली से, अब हुन जोन पिंदे थे हुन सूट के, तो हुन के काय हरिक लागे थे, काय सुंदर लागे से बलते, बल्लो ने कला ले हुन के बोले हुनको मानसिक शांति मिल ली। कितरो जन बाँस चो हाँ टाकरा टुकनी बना सोत, मूर्ति कला होए से, कई प्रकार चो कला आसे, सब पाए कला ने नी आम जब दखुन से आम जब करुन से, तो आमचो मन के शांति मिले से। दादी दी, मैं मन चो गोट के गोठियान से, मन चो शांति चो गोट के गोठियान से, तो फिर गीत कला के नाचा कला के कसन भूल कुआ ने, तो जसन पीला झटके सो उबलते, पीला के झटके झुमाए उबलते, आया काय करुआ गीत सुनावा, काय काजे के पीला अस्थिर ले सोए दे, तो उसनी हुन बल जाने कि पीला बल जाने कि उन कला ले उनके कितरो हरिक लागे से, और हुन झुमाए से। असनी आमचो गाँव देहात चो जो सियान सजनात पहिल बेरा चो हुन मन बले जानते रहला कि आम के हरिक काजे कलाचो उपयोग करतो रहे, आप लोग मन के अस्थिर करतो काजे मन चो शांति काजे कलाचो उपयोग करतो खूबे जरूरी है। देखा तिहार बाहर हो नहीं तो फिर बिया टिक्का हो, खेती बाड़ी बुता हो, कहीं चे बेरा बुता हो, हुन बेरा गीत गोविंद होए से, नाचा डगा होए से, कितरो हरिक लागे से, ए तुमके सुरता आसे ने, तसन रोपा बेरा खेती बाड़ी ने आमचो बहिन मन गीत गाउन गाउन रोपुआत, तो ये चलो काय होए से ये कला की हुन मन गावात जुन गीत के, तो हुन मन चो मन के हरिक बल लागे से, और जुन बुता आए नी हुन बल झटाक ले सरे से, तो कितरो अच्छा गोठा है ने। तो ये तो संगे संगे जसन नाचा होए से, जगार होए से, गाँव बाटे नाट मन होए से, तो ये मन के दखले ये कला चो रूप के दखले आम के खूबे हरिक लागू है।
तो दादी दी कला असन जड़ी बूटी आए जोन आमचो लगे नी आमचो परंपरा ने आमचो संस्कृति ने आसे। तो तुम्ही बल जब बल तुमके मुरुस ना लागे देनी तो एदाए तुम्ही कला चो बाट के धरा। गीत गोविंद सुना, कला के सीखा, हुनर चो नुआ नुआ प्रयोग के करा और अस्थिर ने रहा और हरिक रहा। जब तुमके मैं कला चो गोट के सांगिन से मन के शांति मिरो बलते गोट सांगिन से तो असन बेरा गोटो गीत होले अच्छा लागती का है? हाँ मैं जाने का होनी काश तो गीत के धरु न मरले से तो एक काय सुंदर नी शिवराम नाग और हुंचो संगवारी मंचो गालो गीत आए तो आलिया ये काय सुंदर गीत के सुनूं।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना दुम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता। GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
6: तो दादा दीदी, आज चो कलाकार ने मैं असन गोटोक कलाकार भाई चो गोट के धरुन इले से जेके नी पूरा देश विदेश सब पाए झन जानोत और एक खूबे प्रसिद्ध कलाकार आत जिचो नाव आए उस्ताद जाकिर हुसैन। हाँ दादा दीदी, तुम ये नाव के पहल बले सुनला साहस ने। भारत देश चो तबला वादक बल्लो ने तबला बजातो कलाकार आत उस्ताद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन चो अनकी नेनी असन जादू रहे दादा दीदी कि जब उन तबला बजावत नी तो तबला लागे कि गीत गाए से और पखना बले नाचे। बल्लो ने इतरो बड़े हुन कलाकार रला। तो आलिया, ये कलाकार चो जो न कला जो नाचो सफर आए एके विस्तार ले जानो। तो दादा दीदी, 9 मार्च 1951 ने मुंबई शहर ने गुटुक नानी असन घरे जाकिर हुसैन चो जन्म होली और ये चो बाबा बिता बले खूबे महान तबला वादक रला। बल्लो ने ये चो बाबा तबला बजातो कलाकार रला। फिर जाकिर हुसैन नी जब स्कूल जावत नी पिला बेरा तो हुंचो जन हाथ है नी के भी ओगा नहीं रहते रहे पिला मन कितरो चुल चुल रुआत ने। तो सबु बेरानी आप लोग अंकी के बाजा बजा लो महा, बाजा बजा लो महा, बाजा बजा लो महा करते च रहो। के भाई टेबल के बाजा बजाओ तो के भाई डब्बा के बाजा बजाओ। तो स्कूल चो गुरु जी बोले नी परेशान हुन बोलोत जाकिर ए काय कर सेस तुए। तो फिर जाकिर बोलोत कि गुरु जी मैं तो तबला बजाएं से। तो ये पीला बेरा चो काय सुंदर गोट है ने कि हुन पीला के कलाकार जी कितरो मया रली ने हुन सपाय बेरा हुन तबला के बजात रला। फिर आप लोग बाबा भी तक दखू रहोत ने कि इन बाबा तबला बजाए से तो मकबल खिंडी के करुक लागे दे कसन बजावात बजाऊ दखें दे असन लागू है पीला मन के। तो जाकिर हुसैन जो पहल गुरु हुन जो बाबा रला उस्ताद अल्लाह राखा। फिर काय होली कि जाकिर हुसैन जो न संग जो पीला मनात हुन मनी बाहर खेलोत मानतरे जाकिर हुसैन खाली तबला बजातो ने बया हुन रला। बल्लो ने खूबे हरिक लागे तबला बजातो ने दूसर पीला मन खेलना के खेलोत मानतरे जाकिर हुसैन तबला के बजातो हुन तबला खेलोत। इतरो मया रली कि नी कला ले ये जो न तबला बजातो कला आए उन नानी असन पीला बेरा जब 11 साल च रहोत नी तो जाकिर हुसैन के खूबे बड़े नी मंच मिरली जे थाने आप लोग कला चो प्रदर्शन कर तो मौका मिरली बल्लो ने। तो नानी असन लेका पीला इतरो बड़े मंच ने आप लोग कला चो प्रदर्शन करला और ये जन कला के दख्तो काज बल बड़े बड़े लोग मनियो रहोत। चिंगड़ी केस और आँख ने काय सुंदर चमक रहे जाकिर हुसैन नानी महा रहोत ने। तो जब जाकिर हुसैन नी आप लोग तबला बजाओ मूर करला तो लोग मन नी हरियान हुन भाती दखला। अरे कितरो सुंदर बजाए से लेका और खूब हरी खोला और लोग मन बल्ला कि ये जन जाकिर हुसैन आ ये लेका गोटुक दिनी इतिहास रचे दे और रसनी होली वाले। जाकिर हुसैन नी देश विदेश ने गेला आप लोग जो न कला चो प्रदर्शन काजे बल्लो ने खूब प्रसिद्ध रहोत और जो न भारतीय संगीत हुए से शास्त्रीय संगीत हुनके नी आधुनिक संगीत बल्लो ने जो नुआ जुग चो जो न संगीत आए हुनचो थाने मिलोन भाती नुआ प्रकार चो कला बनाला जेके नी पूरा दुनिया आजी भले सुरता करे से और पूरा दुनिया ये जो कला चो बाजा आए नी ये सुनन भाती झूमली से। और शक्ति और जसन नी प्लेनेट ड्रम नाव चो बैंड बनाला और खूबे नाव बले कमाला। अब इतरो बड़े कलाकार आ थुनचो जन कलाकार जी मया आए समर्पण आए उनके लोग दखला ने तो असन कलाकार मन के फिर मान सम्मान बल मिरुआए तो असनी जाकिर हुसैन के बले खूबे पुरस्कार मन मिरली देश ने मिरली बाहर देश ने बल मिरली खूबे मिरली। जसन भारत सरकार बाटले 1988 के पद्मश्री पुरस्कार मिरली फिर 2002 ने पद्म भूषण पुरस्कार मिरली और 2023 ने पद्म विभूषण जसन पुरस्कार मिरली और उनके संगे संगे ग्रेमी अवार्ड्स वाले प्राप्त करला। तो जन जाकिर हुसैन रहोतनी ये खूबे इतरो बड़े कलाकार रला कि इतो लगे इतरो पुरस्कार मनासे के गिनती बलनी है। मानतर इस सबु सम्मान के मान के पाउन बलेनी जाकिर हुसैन हमेशा आप लोग माटी ले जुड़न रला। जाकिर हुसैन मानोत की जो संगीत आए नी इच कोनी भाषा नहीं आए संगीत तो सीधा मन के भेदुआ फिर काय होली कि 15 दिसंबर 2024 ये दिने ये महान संगीतकार संसार ले पिता धरला। उस्ताद जाकिर हुसैन आप लो तबला बजातो कला के नी अमर बनाला। हुन पीला बेरा जब हुन कला के हुन हाथ के थामला हुन बेरा धरुन देह थाकते तक हुन कला के नी छानला के भई

0: ये काय रसिया गीत के आमी सुन लू ने दादा दीदी, असन गीत सुनने कितरो सुंदर लागे से। तो गीत गोविंद होली ने ज्ञान ध्यान चो गोटबल होली और मचो जातो समयाबल होली। तुम चो संगे गोठियात रले समया केवे हो से जानुक लाय नहीं हुए, मांतर विदा तो धरुक लागे देनी। तो तुम्ही असनी आमचो कार्यक्रम के सुनते रहा और आम के असनी मया देते रहा और अबर दिया मके विदा। तो जाते पूरे कार्यक्रम कला और कलाकार सुन तो सब पाए दादा दीदी के, मैं मन की करिन से जुहार।
1: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा

हल्बी बोली में अभी आपने सुना कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव और मोबाइल ऐप पर हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम बैंड पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी हैं। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों को लेकर शाम 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजे है, अब हमारा सांध्यकालीन प्रसारण आरंभ होता है। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
2: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
3: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतीकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर, हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी, लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता है।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत, लोक कार्य। उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: रामास्वामी पल्लीस्वामी, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: guidelines.
2: श्री
1: पीयूष पांडे मरणोपरांत, कला विज्ञापन। उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हुई।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
1: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत, कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: श्री विश्वबंधु वॉज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड रिमेन्स सो ओवर 6 डेकेड्स।
1: श्री भरत सिंह भारती, कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
0: Jaisalmer ke Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka

0: परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
2: Shri Kumar Bose. कला तबला।
0: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
2: Shri Janardan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
0: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
1: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
2: Swami Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
1: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: Kesariya rang ka aapne saafa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue ye sant Padma Shri se sammanit hota hua.
2: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय।
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बूम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसर के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
1: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी।
2: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा।
0: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं। 3,000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
1: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
0: People's
2: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
2: डॉक्टर
0: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
1: In 1990, soon

0: after their marriage. Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Srimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
1: श्री तेची गुबिन समाज सेवा.
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए.
0: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना म्यांमार एंड भूटान. He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security.
1: Dr. H. V. Hande, Chikitsa.
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं. लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है. राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए.
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy Award.
1: Shri Gafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं. इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं.
0: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस. हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग PhD लेवल स्टडीज.
1: हाजी कासम कला ढोलक.
2: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं. आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं. 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं.
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द USA, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा, UAE, ओमान एंड सेवरल अदर्स. He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
1: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं. आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं.
0: ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था. आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: श्री आर कृष्णन कितना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर. ही इज आल्सो
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी.
2: एथ्नो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप. बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा।
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
0: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: और अब बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की। T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
0: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
1: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा।
2: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक्ड डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। As additional DG law and order, he strengthened public safety
1: strategies. Deva Lord, Dada Lord, Krishi.
2: Deva Lord, किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
0: श्रीरंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
2: 69 varshiya Dr. Mandal, Interventional Cardiologist hain. Aapne shiksha aur swasthya ke kshetra mein desh ki khoob seva ki hai.
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar, Professor Budh Rashmi Mani. राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
0: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
0: श्री मांडलेवाला He has a long-term vision that by 2047, no citizen should lose life because of the non-availability of organs. For that, he has traveled extensively across India.
1: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya Evam Shiksha.
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
1: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
2: Kantha, ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगश्री अवार्ड
1: हरि माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक नाटककार और अभिनेता थे 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुए कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय
0: श्री
1: सत्यनारायण नंदलाल नुवाल व्यापार एवं उद्योग
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से
0: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
1: Shri
0: been supplied
1: K. Pajanivel, Khel, Silambam.
2: Silambam. 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजनीवेल
0: वेल श्री पजनीवेल हैज वाज कन्फर्ड द एकेडमी पुरस्कार अवार्ड ऑफ संगीत नाटक एकेडमी प्रेजेंटेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2023 एंड ही आल्सो फाउंड द ममलन सिलंबम एंड फोक आर्ट्स डेवलपमेंट क्लब इन पांडिचेरी He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप, Dharmik Lal Chunilal Pandya. और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं. आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980 as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
2: राष्ट्रपति जी स्वयं एक सीढ़ी उतरकर नीचे आती हुई और पंत जी जो कि 90 साल के हैं उनका सम्मान करती हुई और ये करतल ध्वनि इस बात का प्रतीक कि राष्ट्र ऐसे सेवकों का ऋणी है
0: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार
2: उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप
0: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
1: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
2: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
0: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
2: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
1: Srimati Deepika Reddy, Kala Nritya.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
0: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
0: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
1: have borne fruit. श्री हरिचरण शाइकिया, कला सत्रिया नित्य।
2: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हूँ।
0: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑल्सो ही परफॉर्म्ड द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
2: 86 साल के शास्त्री जी,
1: साहित्य एवं
2: संस्कृत विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
2: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
2: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ek anubhavi coach hain aur aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka praman ki unka kitna bada contribution raha hai.
0: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
1: Shri Yumnam Jatra Singh Marnoprant, Kala Nat Sankirtan, unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh.
2: Aap मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यूनाम जात्रा सिंह मरणोपरांत।
0: His contributions to not

0: Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
2: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का.
0: Dr. Singh has guided 34 PhD and 5 MSc students, making substantial contributions to human resource development and mentoring numerous young professionals.
1: Shrimati Shiv Shankari, साहित्य एवं शिक्षा.
2: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की. आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में और खासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है. 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने.
0: Shrimati Shivshankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
2: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल.
0: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस. He has also played a central role in launching Gyan Darshan Group of Channels, the first 24-hour educational television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
2: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं. संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है.
0: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट. ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
1: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा.
2: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है. 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई.
0: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत.
2: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है.
0: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
2: Dr. Thakral, Ayurvedic Padhati ke Shalya Chikitsak hain aur भारत में क्षार सूत्र चिकित्सा के माध्यम से कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
2: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
0: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
1: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर
2: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
0: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा, हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी, थ्रू विच ही प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज। ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन, गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे। In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
1: Professor
0: very adaptable.
1: Jujhar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
2: Professor Jujhar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hai. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar फोटोवोल्टिक से क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
0: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टेक्स, ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। ही हैज पब्लिश्ड अबाउट 200 पेपर्स इन लीडिंग जर्नल्स।
1: डॉक्टर नारायण व्यास, पुरातत्व विज्ञान।
2: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
0: डॉक्टर व्यास वाज एसोसिएटेड विद द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी, डोमेन एक्सपर्ट मेंबर इन नेशनल स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन कमेटी। ही वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर अवार्ड from the government of Madhya Pradesh in
1: 2019. Professor Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
2: Gambir Singh ji, Darjeeling pahadiyon ke ek pratishthit वनस्पति शास्त्रीय शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
0: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक टेंपर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ही लेड अ 6-year कंजर्वेशन मूवमेंट दैट वाज अ ह्यूज ह्यूज सक्सेस।
1: श्री हैली वार, समाज सेवा।
2: और अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं।
0: श्री वार हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स। सिंस द एज ऑफ 10 ही हैज मेटिकुलसली गाइडेड द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका ट्री टू क्रिएट ड्यूरेबल लिविंग स्ट्रक्चर्स। His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
2: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद।

0: and we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई, उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए, ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी, ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी, पीछे श्री वेंकैया नायडू जी, तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए.
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: Please, may I have attention, please? I request all the award winners to move towards your right side.
1: Second part of the ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह और हेमराज मीणा. ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार. मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस. नमस्कार.
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं.
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
7: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है. ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा. ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है. वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा.
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
8: सुनो ना.
9: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ.
9: तो रोका किसने है? हाँ?
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं.
9: मुझसे.
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर.
9: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है.
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
9: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ.
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
9: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ. नंबर नोट करो 8700014242.
8: ओ 8700014242. लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर.
5: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
6: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6 बजने को है हिंदी समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
10: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
11: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
10: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:05 हुए हैं।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही समय में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: जंगल के एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा जी आकाशवाणी रायपुर है। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति ह आज 66 जिन विशिष्ट लोगन मन ला बछर 2026 के पद्म पुरस्कार लेकर सम्मानित छत्तीसगढ़ के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ला संयुक्त रूप ले चिकित्सा के क्षेत्र में मिलिस पुरस्कार। पेट्रोल डीजल के भाव में एक घाव फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रुपया और डीजल 2.71 रुपया के हो है बढ़ोतरी। और प्रदेश में आज ले नौतपा के हो गए शुरुआत। मौसम विभाग प्रदेश के कोनो कोनो जगह में लू चले के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 जिन विशिष्ट लोगन मल्ला बछर 2026 के पद्म पुरस्कार दिन इमा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ला संयुक्त रूप ले चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़िया कामकाज पर पद्मश्री पुरस्कार ले सम्मानित करेगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आए रहिन। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह काली नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष ऊपर राखे गए जनजाति सांस्कृतिक समागम ला संबोधित करीन। ओमन कहिन कि ये समागम अवैया बछर में जनजातीय महाकुंभ के रूप में विश्व में चिन्ह बनही। ओमन कहिन कि भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज ला अपन संस्कृति धर्म और जल जंगल जमीन के रक्षा के संदेश दिन। ओमन कहिन कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के विकास पर सरलक काम करत है। जनजातीय कल्याण के बजट ला 28,000 करोड़ ले बढ़ा के 1.5 लाख करोड़ रुपया करे गए है। ओमन कहिन कि नक्सल हिंसा में बड़ संख्या में जनजातीय लोगन मन के जान गिस, फिर अब सरकार नक्सल ऊपर प्रभावी नियंत्रण पा है। गृहमंत्री हकीन कि समान नागरिक संहिता माने UCC ले जनजातीय समाज के परंपरा और अधिकार ऊपर कोनो असर नहीं पड़े। कार्यक्रम ला संबोधित करत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकीन कि जनजातीय समाज दुनिया ला प्रकृति के संग बने विकास के रद्दा दिखा सकते। ओमन जनजातीय भाषा संस्कृति और परंपरा ला संजोय ऊपर जोर देवत कहिन कि राज्य सरकार गोंडी हल्बी और सादरी जैसन भाषा ला पारंपरिक शिक्षा ला बढ़ावा देवत है। मुख्यमंत्री हकीन की आदि परब बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसन आयोजन जनजातीय पहचान और प्रतिभा ला राष्ट्रीय मंच देवत है। पेट्रोल के भाव में आज 2.61 रुपया और डीजल में 2.71 रुपया के बढ़ोतरी हो है। पेट्रोल और डीजल के भाव में पाछू 2 हफ्ता में 4 बार बढ़ोतरी हो है। अब राजधानी रायपुर में पेट्रोल 107.96 रुपया प्रति लीटर और डीजल 100.17 रुपया प्रति लीटर मिलत है। केंद्रीय उर्वरक विभाग के अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा कहिन है कि पश्चिम एशिया संकट के बाद घलो देश में खातु मन के भंडार पूरा मात्रा में हवे। एसओ के आकलन के मुताबिक 390 लाख मीट्रिक टन भंडारण हवे। ए बेरा 200 लाख मीट्रिक टन के भंडारण हवे जौन सामान्य स्तर ले ज्यादा है। मुख्य सचिव विकासशील अधिकारी मल्ला प्रदेश में सड़क दुर्घटना ला रोके बर जम्मू कार्रवाई करे के निर्देश दे है। मंत्रालय में सड़क सुरक्षा ला लेके राखे गे बैठका में मुख्य सचिव ह कहिन कि सड़क दुर्घटना पर चिन्हारी करे गे ब्लैक स्पॉट के सरलग मॉनिटरिंग करे जाए और तुरते जरूरी सुधार करे जाए। उमर राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मन के बीच आपस में तालमेल बिठा के काम करे के बात कहिन। केंद्र सरकार ह ईद उल अजहा माने बकरीद के सरकारी छुट्टी में बदलाव करे हे। जम्मू केंद्रीय कार्यालय विभाग और सरकारी संस्थान मन में 27 मई के जगह अब 28 मई के छुट्टी रही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ह 28 मई के होवैया संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के तारीख आगू बढ़ा दे हे। एजेंसी यकीन है कि बकरीद के तारीख में बदलाव के सेती ए फैसला ले गए हे। नवा तारीख के घोषणा जल्दी करे जाही। जानकारी के मुताबिक छात्र मन एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट में देखे जा सकते। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।

0: अब आगु बढ़वो पांचे समाचार कोती। स्वास्थ्य विभाग ह प्रदेश में इबोला संक्रमण ला रोके बर जरूरी निर्देश जारी करे हे। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा डहार ले जारी निर्देश में एयरपोर्ट ले अवैया यात्री मन के स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामला के पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था ला बने ढंग ले राखे बर कहे हे। संगे संग मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर ला स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर में एक झीन नोडल अधिकारी नियुक्त करे के घलो निर्देश दे हे। जानबा के मुताबिक कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़त मामला के बाद दुनिया में सतर्कता बढ़ा दे गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हा पहली चले एला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुके है। एला देखत भारत में घलो एहतियात बरते जाते। बलरामपुर जिला में सनावल रोड स्थित गांव पिपरपान के तीर एक ठिन सड़क दुर्घटना में चार झीन मनखे के मौत हो गये। ये चारों मनखे मन काली संझा एक ठिन फटफटी में बैठ के बाजार ले लौटत रहीन। इही दौरान ओकर गाड़ी ह सड़क के तीर खड़े ट्रैक्टर ट्राली ले टकरा गये। ये दुर्घटना ले दू झीन मनखे के मौकच में प्राण छूट गये और दू झीन आने मनखे मन के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गये। झीरम घाटी में कांग्रेस नेता मन ऊपर हुए हमला के आज 13 साल हो गए है। ये मौका में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में रखे गए कार्यक्रम में झीरम घाटी में शहीद हुए नेता मल्ला श्रद्धांजलि दिन। जानबा के मुताबिक 25 मई 2013 के बस्तर संभाग के झीरम घाटी में माओवादी मंडहार ले करे गए हमला में कांग्रेस के बड़का नेता और सुरक्षा बल के जवान मन के संगे संग करीबन 30 लोगों के मौत हो गई रही। राज्य शासन डहार ले बाल सक्षम नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन पर 1 ले 30 जून तक पूरा प्रदेश में विशेष सघन अभियान चलाया जाही। ए दौरान सड़क में रहैया भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा सकेले में लगे लड़का मन की पहचान करके ओमन ल समाज के मुख्य धारा ले जोड़े के प्रयास करे जाही। ए अभियान के तहत कलेक्टर की अगुवाई में जम्मू जिला मन में विशेष टीम बनाया जाही। प्रदेश में आज ले नौतपा शुरू हो गई है और संगे संग ए बेरा प्रदेश के कतकोन जगह में जोरदारहा गर्मी पड़े के सेती लोगन मन परेशान हो है। यही बीच मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कतकोन जगह में लू चले के चेतावनी दे है। उन्हें एक दो जगह में हवा गरेर के संग हल्का वर्षा होए के संभावना बताई गई है। राज्य शासन ह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जम्मो तकनीकी कर्मचारी मल्ला बिगड़े बोरिंग और पाइपलाइन मल्ला सुधारे के संगे संग पेयजल समस्या के तुरते निपटारा करे के निर्देश दे है। निर्देश के बाद गांव गवई मन में साफ पिए के पानी पहुंचाए बर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के टीम ह काम शुरू कर दे है। विभाग डहार ले जल जीवन मिशन के तहत चलाए जात योजना मन के बने ढंग ले संचालन के संगे संग गांव के लोगन मल्ला पानी बचाए कोती जागरूक करे जात है। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में 1 जून के मतदान हुई। एक बार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहार ले नामांकन पत्र के जांच और नाम वापसी के काम पूरा होने के बाद अभ्यर्थी मन के आखिरी सूची जारी कर दी गई है। अब थोरकुन समाचार सार में मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य मंत्री परिषद की बैठक काली 26 मई के संध्या 6 बजे अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी और बलौदाबाजार भाटापारा जिला के बार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में दतैल हाथी के हमला ले एक झीन गांव के लोगों की मौत होगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। राष्ट्रपति आज 66 जिन विशिष्ट लोगन मल्ला बछर 2026 के पद्म पुरस्कार ले करीन सम्मानित छत्तीसगढ़ के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले ला संयुक्त रूप ले चिकित्सा के क्षेत्र में मिली पुरस्कार। पेट्रोल डीजल के भाव में एक गांव फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल 2.61 रूपया और डीजल में 2.71 रूपया को हो है बढ़ोतरी। और प्रदेश में आज ले नौतपा के होगी शुरुआत। मौसम विभाग प्रदेश के कोनो कोनो जगह में लू चले के दे है चेतावनी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी जगदलपुर है। 6:20 होने को है। संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता। अपि च भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्याम् उष्णतरंगस्य स्थित्यै पीतवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति।

दिलीप कुमार पांडे और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में विज्ञापनों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
6: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
8: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
8: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
10: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
8: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपत्ति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता से जनजाति समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 632 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में, 1 जून को होगा मतदान। और पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी की गई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इनमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
12: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले, चिकित्सा।
11: समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह समागम आने वाले वर्षों में जनजाति महाकुंभ के रूप में वैश्विक पहचान बनाएगा। श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजाति समाज को अपनी संस्कृति, धर्म और जल जंगल जमीन की रक्षा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजाति समाज के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जनजाति कल्याण का बजट 28,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सल हिंसा में बड़ी संख्या में जनजाति लोगों की जान गई, लेकिन सरकार ने नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया है। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से जनजाति समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने लोगों से भ्रांतियों से बचने और एकजुट होकर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजाति समाज दुनिया को प्रकृति के साथ संतुलित विकास का मार्ग दिखा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवन स्वरूप है। उन्होंने जनजाति भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। श्री साय ने कहा कि आदि परब बस्तर, पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन जनजाति पहचान और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब राजधानी रायपुर में पेट्रोल 107.96 रुपए प्रति लीटर और डीजल 101.17 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। केंद्र सरकार ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर घोषित अवकाश में बदलाव किया है। सभी केंद्रीय कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में 27 मई की बजाय अब 28 मई को अवकाश रहेगा। यह निर्णय चांद दिखने की संभावित तारीख और त्यौहार मनाने के शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। नगरीय निकायों में कुल 240 तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच के 640 पदों और सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जबकि जनपद सदस्य के सभी 10 पदों के लिए कुल 41 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नगरीय निकायों में सभी रिक्त पदों पर न तो कोई नामांकन निरस्त हुआ है और न ही कोई निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में इबोला संक्रमण की रोकथाम को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी निर्देश में एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच, संदिग्ध मामलों की पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। गौरतलब है कि कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद दुनिया भर में सतर्कता बढ़ाई गई है। केंद्रीय उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में उर्वरकों का भंडार पर्याप्त और संतोषजनक स्थिति में है। इस वर्ष का आकलन 390 लाख मीट्रिक टन है। वर्तमान भंडार 200 लाख मीट्रिक टन है, जो सामान्य स्तर से अधिक है। उन्होंने कहा कि संकट के बाद घरेलू उत्पादन और उर्वरक आयात में काफी वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
13: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR ट्विटर हैंडल CGAIR News और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR News। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
11: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन द्वारा बाल सक्षम नीति 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 1 से 30 जून पूरे प्रदेश में विशेष सघन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और अपशिष्ट संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू, पुनर्वास और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के तहत कलेक्टरों के नेतृत्व में सभी जिलों में विशेष रेस्क्यू टीम गठित की जाएगी। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वार्ड और संकुल स्तर पर जिम्मेदारी देकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभियान का लाभ अंतिम जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। बलरामपुर जिले में सनावल रोड स्थित ग्राम पीपरपान के पास एक सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। ये चारों युवक कल शाम एक बाइक पर सवार होकर बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई। इससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवकों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रथम बस्तर आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय चयन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत तीरंदाजी, फुटबॉल और एथलेटिक्स खेल विधाओं के लिए 28 और 29 मई को क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा जगदलपुर में चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिका खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले को आज 13 वर्ष हो गए हैं। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को बस्तर संभाग की झीरम घाटी में माओवादियों द्वारा किए गए हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और सुरक्षा बल के जवानों सहित करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। और अब पेश है मौसम का हाल। आज से नवतपा शुरू हो गया है। वहीं इन दिनों प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भीषण गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में ग्रीष्म लहर चलने और एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है।
14: पिछले 2-3 दिन से प्रदेश में अधिकतम तापमान लगभग 1 से लेकर 3 डिग्री ज्यादा है और मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर ग्रीष्म लहर चल रहे हैं। ऐसा वाला स्थिति जो है आगामी 4 दिन तक भी होने की संभावना है। ग्रीष्म लहर मुख्य रूप से बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग के जिलों में होने की संभावना है, जिसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका अलावा भी दक्षिण छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में भी 1-2 स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। 4 दिन के पश्चात प्रदेश में मेघ गर्जन का एक्टिविटी जो है तेज हवा के साथ और वर्षा के साथ होने की चांसेस है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट एक्सपेक्टेड है।
11: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक कल 26 मई को शाम 6 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। बेमेतरा जिले के साजा में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने एक पटवारी को 15,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और बलौदाबाजार भाटापारा जिले के बार नवापारा अभ्यारण क्षेत्र में दंतैल हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। वन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को तात्कालिक सहायता राशि 25,000 रूपये प्रदान की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के गोडबोले दंपत्ति सहित 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता से जनजाति समाज की परंपराओं और अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 632 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में 1 जून को होगा मतदान। और पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
15: थोड़ी देर में
16: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे है, प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम मग तू राम राम
1: राम राम ना समुक्त राम राम
0: अमरलीस ने तो ऐसे संगीतक बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सफाई भाई बहन और संगवारी मन के मैं कोंदा
1: और मैं मंगतू
0: आमी दोनों करो से
1: राम राम, राम। ये चो संग संग पीला मन बोल नहीं बोलकू ना
0: हाँ हाँ सपाय रेडियो रेटेटे बसलो ने नन नन पीला मन के आमी दोनों चो बाट लिखो भी खुबे
1: मैं और लाड
0: हाँ तो दक मंगतू असना की हम चो बस्तर ने द गोटोक लोक नाट्य पर्व हुआ है लोकनाट्य कार्यक्रम हुआ है जे के हम नाट बल बलू से ने तो ये कार्यक्रम भीतर काय हो से कि हम जो जितलो बले लोक गाथा मनाए उनके ये थाने कथा अनुसार भाती गाउन भाती और नाचुन भाती स्वांग करुन भाती दिखाओ हो से ने और ये कहां ले कहां है हम जो जीवन ले नहाले पौराणिक जो न पौराणिक कथा मनाए उन कथा मन ले धरुन भाती हम जो जनजीवन के जोड़ुन भाती उन सपाए के शिक्षा देतो और ज्ञान देतो और काम करे से
1: उन तो जीवन ने आमचो जीवन ने उतराला सुन
0: उतराला हाओ और असन आए की दक ये थान ले हम के दखुन भाती हम चो जो मनोरंजन आए मनोरंजन संगे संगे हम के हम चो आध्यात्मिक ज्ञान के बले नहीं भूलक तो राय कि हम के जो ने 84 लाख की उन्हीं ने ये थाने जन्म इलू से आमी और हुन चो बाद हम के नगत कर्म कर तो आए और नगत कर्म कर उन भाती हुन ये जीवन आके आपले काजे नहीं बल्कि दूसर जीव काजे बले समाज काजे हितकारी हो परोपकारी हो जैसन की रूख खराई होला जसन की नदी होला रान बन होला ये परोपकार कर सोत ने उसने हम के बोल मनुख जीवन के परोपकार ने लगातार
1: है और आए छे और ये हम छो नाट लोकनाट बोले ने और हम छो कहीं बोले हो ना ये मरनी हो ना ले कहीं हो तब बोले नाट अनुच्छा
0: अनुच्छा शादी ब्याह
1: शादी ब्याह घर बोले हो और उन जो जन बोल रीति रसम है उन संगे करू छे
0: तो ये एक गोट के जो ना हम ही मनोरंजन संगे संगे ज्ञान के बल सीखून हुन के आप लोग जीवन ने उतरा तो दक ये गोट के तम रालू अल्लाह हम चला के नगद गोट मना सही के बोले हम रहूं
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
1: कौन था दादा
0: हाँ?
1: ये गोट तो होली नहीं
0: हाँ।
1: तो हम चले गए तो रोजी दिन से सन भी गोटक भेंट वार्ता से नहीं
0: ने
1: हाँ।
0: और इथाने मी कला कलाकार भाई मन के भेंट घाट कराऊ हाँ। तो आज ही काय कलाकार भाई यार
1: ये बांसुरी वादक है
0: हाँ।
1: और ये आत सीताराम हंद्रे के
0: हाँ।
1: और ये चो संग भेंट करता रहो आसत बलबीर सिंह कच्छ
0: हाँ तो आलते पे मन चो भेंट वार्ता के हम दोनों बोले सुनो
5: गाँव का अरे भाई बहन मन आमी बेरा पस्ता कितले कलाकार मन संगे गोड बात करुन बाती अपन मन के सुनाओ से तो असने आजे बोले आमता ने इला से गोटुक बांसी बजाओ कलाकार सबले आगे तुचो नाव आरु गांव चुनाव सांगना
6: मचो नाव सीताराम एंड्री का मैं ग्राम चेरपाल चो है
5: चेरपाल
6: हो चेरपाल
5: अच्छा चेरपाल बिल्ले ने बीजापुर जिला पड़े से
6: हो बीजापुर जिला पड़े से
5: अच्छा तू सीताराम दक तू बांसी बजाऊगा
6: हो
5: अरे संग संग और बोल काय काय बाजा बजाऊगा
6: मैं खाली बांसी बजाऊंगा
5: बांसी बजाऊगा अच्छा दक तू चो बांसी तो बिल्ले ने दख लेने को टोक अजीब किस्म चो है कि नहीं कम से कम तीन खातो असन होए दिखाए नू है कि
6: होए जाने
5: होए दे और मोटा बल खूब आसे
6: असने असने है
5: असने है
6: असने ज बनाते रहे
5: अच्छा असने ज बनाते रहे अच्छा ये बांस एक तो खुदे बनावस
6: हाँ मैं खुद हाथ अपलो हाथ ले बना ली से
5: अच्छा हाँ हाँ अल तुझे मन ने कहीं बोले गोड़ बात तो करूँ मन ने कहीं बोल पाड़ अच्छा अल सुनाऊं तक फुकुन बातें
6: अच्छा हाँ मैं सां फुकुन देखा

0: हाँ तो सीताराम भले ने ये झले आ मंजूर झाली के आना विधि असन डोली का ने।
1: हाँ
0: अच्छा ये जसन की तुई फुक्सी से ये काय बाँस छो बनली से ना।
1: ये बांस को बोलवा ते डोंगरी चे बांस है ये।
0: अच्छा डोंगरी चे
1: हाँ
0: बाँस है।
1: डोंगरी चे बांस है
0: हाँ
1: मात्रे माट बांस ले खंडी बड़े छेदार हुआ है।
0: अच्छा बड़े छेदार है से।
1: हाँ
0: हाँ
1: अरु
0: हाँ
1: एक्चुअल बड़े छेदा बीते भी नहीं बनो है।
0: असन
1: हाँ
0: अच्छा ये जसन की तुई अंडकी ने जोन छेदा मना से किठा ना
1: हाँ
0: से।
1: ये छठाना से।
0: अच्छा छह टाना से।
1: हाँ
0: अच्छा उन छह तान ने फिर अलग अलग पार्ट निकलाते रहे से।
1: हाँ
0: हाँ
1: तो अलग अलग होने में सुर निकलो है।
0: हाँ अच्छा हाँ। तो सीताराम ये सांग ना बोले ने ये जो फुक्तो बीती कला है कहाँ ले
1: हाँ
0: सीख लीस ना कौन सी कला तो के।
1: ये मोचू बाबा बजाते रहे। मोचू बाबा ये कि असने बनाउन
0: हाँ
1: उन माचारा का शौक जाते रहे।
0: अच्छा
1: तो बेड़ा में माचारा का जाते रोलू हमें बाबा संगे।
0: हाँ
1: तो जंगल में बेड़ा रहे
0: हाँ
1: तो होता बेड़ा था ने हम जो बाबा हम के संगे धरून जाते रहे।
0: हाँ
1: ये बरा भरी धान में
0: हाँ
1: खाऊआत बोलून
0: हाँ
1: तो हुदलो दाए हम जो बाबा आप लोग हाथ ले बनाउन बजाते रहे। तो उनसे संगे रोते रोते रोते हुन फुकुन फुकुन संगा उन गेलो में डंडी डंगी मैं
0: तुवर
1: बोल
0: फुकिस।
1: फुकुन दखें। तो
0: अच्छा
1: उसने होते होते मैं बोल सीख ले।
0: अच्छा हाँ। बोले ने ये तुम जो बोले परंपरा आसन बहुली बोलोगे
1: ओ
0: ने तू
1: या
0: बाबा ले दाए तू सीख लीस
1: मैं
0: बोलोगे
1: सीख ले
0: तो
1: सीख
0: हुंचल बोला आगे कोनी तुम परिवार ने आसन फुकते रहला था
1: हुनचोले आगे कोनी नहीं फूकते रोला।
0: नहीं
1: मैं नहीं
0: फूक।
1: जाने आगे चलो तो नहीं जाने लेकिन हम जो बाबा
0: हाँ
1: फूकते रहे होता मैं जाने।
0: अच्छा हाँ हो सके फिर तू चो बाबा और फूकते रहे होती
1: हाँ
0: आई कि
1: होतलो
0: नहीं
1: हाँ
0: हुन
1: फूकते
0: उताल
1: रहे।
0: सीख तो के फिर तू ही सीख ली होती
1: हाँ
0: असन बोलो हो सके आई कि नहीं।
1: हाँ
0: हाँ तो ये सागना जसन की ये जो बाउंसी आए फूक तो बीती
1: हाँ
0: कला है बोलोगे जसन की तू फूकसिस टोंडे ने
1: हाँ
0: तो काय चीज के मतलब ध्यान देख लाए पड़े से ना फूक तो काजे कोनी बोले पाड़ निकरा तो काजे।
1: मैं गीत के ध्यान देते रहे
0: हाँ
1: आरु आंड की चो सुर निकरातो रहे उनमें।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा गीत के ध्यान देख पड़े
1: हाँ
0: से।
1: ज्ञान गीत के ध्यान देव पड़े।
0: अच्छा तो फिर और अणकी थे।
1: हाँ की के
0: अच्छा तो गीत के सुरता कर लेने बोले ने कौन छेदाल कसन उन राग निकरुक सके पता चले तुके।
1: हाँ
0: अच्छा
1: हुनी
0: हाँ
1: में राग निकले थे गीत जो
0: हाँ हाँ
1: उन्हें चढ़ा उतार कसन रहे थे ना उसी हुनी में इन्हें
0: हाँ
1: ये
0: अच्छा
1: पता लागू है।
0: पता लगे से।
1: हाँ
0: अच्छा झुके करुन बोले तू चो जसन की टोंड चो खेल ज्यादा हो से कि हाथ चो अंग ये
1: नहीं नहीं आंखी चो खेल ज्यादा हो गए।
0: अड़की खेल ज्यादा हो
1: हाँ
0: से। अच्छा पहाड़ निकरा तो
1: पार
0: काजे।
1: निकला तो गए।
0: हाँ। तो ये जसन की पहाड़ ये भी तो तुम झलिया बीती फोकलिस
1: हाँ
0: तो असन बोले तुम चो बाटे ये काय काय ठान मन ने कसन कसन तियार बहार ने ये बजातो रहे जालना ये बाँसी के।
1: ये बांसी के ये तियार बाहर में बोलो में तो नहीं बजाओ मांदर जसन की घरे केवल थाकू नीलोम काय होलो में मनोरंजन का जी बजाऊंगा।
0: अच्छा घरे।
1: हाँ
0: अच्छा
1: घरे
0: हाँ
1: कहाँ बूता चीता में गेलो में फिर उन बाट ले उन घरे थाकी तो लागू है
0: हाँ
1: हुदलोदायक डांडिक सांझ बेरी बजा लो अच्छा लागू
0: अच्छा
1: है।
0: लागे। हाँ। तो अल सीताराम ये तो गोड बात करवाना फिर गोटोक तुझ मन ने कोनी बोले अच्छा बीती नंगत बीती पाड़ फुकुंदक।
1: हाँ

0: हाँ तो सीताराम दक्क बोले ने ये बोले अच्छा मतलब सुरीला धुन रोली तुझो बाँसी ने ये जोन जीव ने जोन सोसी जोन करसिस ना उन काय चो बने से।
1: ये मंजूर फोई चो है।
0: अच्छा मंजूर पोई चो।
1: हाँ
0: अच्छा
1: मंजूर फोई चो बोल लगाओ सकूं दे नालों में बांस चो बोले छोटे सन पतला बीती
0: हाँ
1: होने की ये छत्ता चो कीड़का में छेद उन बोल उनके बोल
0: अच्छा
1: लगाओ सकूं दे।
0: हाँ हाँ बोले ने ये दोनों अच्छा रहे से
1: हाँ ये सोसी है।
0: सोसी है बोले।
1: हाँ
0: हाँ उन्हीं सोसी जल मौजूर पर खिन अच्छा रहे से सन लागे से ने।
1: हाँ ये खेणी का अच्छा रोग हुआ है
0: हाँ हाँ बोले ने अच्छा सुरीला आवाज निकरे से बोले।
1: निखरे से।
0: हाँ हाँ तो रामचंद्र ये सांग ना जैसे कि तू ये भी तो ये गोटो कला है बोलू भे
1: हाँ
0: बोले कहाँ कहाँ कौन कौन बाटे असन बजाऊ गेलिस ना कौन बाट गेलिस
1: नहीं कहाँ नहीं गेले तब
0: नहीं
1: बाकी
0: गेलिस।
1: कहाँ नहीं गेले।
0: अच्छा बोले ने बोले घर चे बोले गांव नहीं कहीं कहीं होए से जाल बजाए से बोलू।
1: हाँ गाँव गाँव नहीं
0: हाँ हाँ
1: आरु घरे।
0: घरे।
1: हाँ
0: अच्छा ये तो अच्छा है ना बोले काम धाम बाटले एलो ने थकासी रलो ने
1: हाँ
0: किने बोसुन सुस्तान बाती फुकले ने तुझ मन बोले अच्छा लागे
1: मन
0: सब
1: बोला अच्छा लागे सी और मन चो शांति बोलो हुआ
0: मन
1: है
0: चो बोले शांति लागे।
1: शांति हुआ।
0: हाँ। तो और काकी बोलते ये कला के सिखा ली ना।
1: नी सिखा ले मान तो बेटा मन के सांगे खंडी सिखा बोलो
0: हाँ। अच्छा
1: सिकुन दका बोले से
0: हाँ
1: केबे केबे फुकुन दका बोले से।
0: हाँ हाँ तो हम तो आए ची दक ये तो पीढ़ी के बोले सिखात रहे काहे कि नगत रहे से आए कि
1: हाँ
0: नहीं जैसन कि तुई तुझे बाबाल सीख लीस
1: हाँ
0: फिर उसने तुझो बेटा बेटी मन सीख लेने के उन पीढ़ी दर पीढ़ी बोल चलते रहे
1: चलो भाई।
0: आए कि नहीं।
1: हाँ
0: आरु असन कला रली बल्ले ने कहा है कि मन शांति रहे से
1: हाँ
0: आरु फूकले ने कहा कई चिंता धोखा बोले लापी रहे से
1: हाँ
0: बीमारी सीमारी बोले बल्ले ने शरीर ने नी है
1: नहीं
0: से
1: है नहीं
0: है कि
1: है।
0: नहीं
1: हाँ नहीं
0: कसन
1: है
0: बल्ले मन होता भूल कैसे।
1: मन ऐता भूल कैसे यार मन चो शांति बोलो दे यार शरीर चो मन बोले मन
0: हाँ
1: शांति रोलम सब हल्का लागे
0: सब
1: ऐसा।
0: हल्का लागे से
1: हाँ
0: है कि नहीं सब दुख दंड सब ए बाट उन बाट जाए से
1: जाए से।
0: घर चो चिंता दूर होए से।
1: हाँ कई मन में टेंशन हो कई हो होलो में सबके भूल कौन देखो हुआ
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: डंडिक चौका जब
0: डेंडे काज बोले ये बोले ने कहीं बोले हुनर कला रले ने ये आमचो बोले ने जीवना काज खूबे नंगत आए
1: खूबे
0: बोले।
1: नंगा था।
0: हाँ तो आलना गोट बात करूँगा फिर गोटो अच्छा तुझो मन ने पाड़ फिर सुनाऊ देस।
1: हाँ

0: हाँ, तो रामचंद्र दा कितलो अच्छा रली ना, ये बांसे के तुई ची छेदा कर लिस।
1: हाँ, एक मई बना ले से, मुझे हाथ ले बना ले से, मई छेदा कर ले से।
0: अच्छा हाँ, जसन फूक तो बेरा, जसन की तुई सोसी की चाबी सीस, तू उदला पहले जसन की टोंड नहीं आया बोलू भी,
1: हो
0: कहीं असन भार पड़े से ना फूक तो
1: भारे
0: बेर।
1: ये खंडी वजन लागू है जन,
0: अच्छा
1: तो हम जो का जो सोसिक खंडी का अच्छा धरुन रत रहा है मुंह में,
0: अच्छा हाँ
1: तो ढंडी धर लो में तबे उन थे बैनाल में बैठन बैठा लो है जन।
0: हाँ हाँ नहीं तू चुटोंड के कहीं तकलीफ लागे से
1: नी लागे नी लागे
0: नहीं लागे
1: नी
0: ना।
1: लागे।
0: हाँ, बोले ये चो भजन की निकल ऐसे
1: हाँ,
0: बोल
1: ये
0: बोले,
1: चो खंडी वजन रो है
0: बोले फूक तो बेरा तुझे टोंड के काई तकलीस नहीं लागे
1: नी
0: बोला।
1: लागे नी लागे।
0: हाँ, तो दक ये तो अच्छा गोट के सांगलिस ना, तुझे जोन कला है ये तो काय की फूक तो बीती बोलू बे कला होली भी पे बांसी होली भी। और तू कहीं गाँव ने तो आशीष कई प्रकार चो गीत गोविंद बोल गाओ तो रहे से कई गीत।

0: दिली।
1: तो देखना तुझो जसन बाँव से ने तुझो सुर निकरली, तो उसने तुझो टोड़ने बोले सुर, अच्छा
0: हाँ
1: आसे गाँव तो बीती
0: हाँ
1: बोले भी ये जसन की फागुन बेरा चो रली, बोली होले तियार बेरा चो रली।
0: हाँ
1: तो और असन गाँव ने जसन की कई रीति नीति परंपरा शादी बिया काय काय होए से, तो उन समय आज बोल कहीं गीत सुरता आसे।
0: हुन समय चो गीत सुरता नहीं आई खाली भूलो क्लेशियन
1: अच्छा
0: आओ खाली भूल
1: अच्छा
0: को खोली।
1: हाँ। तो दक तुम चो बाटे हल बिची होए से कि और कहीं दूसरा बोली बोले होए से ना?
0: नहीं हल भी आए महारी आए
1: अच्छा
0: और तेलुगु बोले आसे
1: अच्छा
0: मात्र तेलुगु गीत नहीं है भाई
1: अच्छा ये जैसे महारी बीती बोली से कसन बीती है।
0: ये मतलब हल भी संगे असने मिल मिलुन जुलुन है।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो असने कहीं गीत सुरता आसे।
0: ये हल भी छो
1: हाँ
0: हाँ
1: अल अलगाव ने सुनाऊंगा।
0: पानी।

0: रानी राजा।
1: तो कितलो अच्छा सुंदर गीत के तुई सुना दिस ना, आरु बांसी बले फुकुन बाती आम सांगली सा, काय काय ना बोलिस ना,
0: सीताराम है
1: सीताराम। तो सीताराम दक तुझे संगे गोड बात कर तो के तुझे बांसी चो जो फुकलिस इतलो सुर अच्छा मन के भावली, और तुझे गीत बोले जसन बांसी जो सुर आए उसने तुझे गीत चो बोले सुर आसे दखा आमचो जन रेडियो सुन तो भाई भी मन सुन सोत उन मन बल मन कर दे। और आप लोग जन पारंपरिक जन कला किया है बचा तो का जन मंचो मन ने बल कहीं न कहीं असन विचार ए दे,
0: ये दे।
1: तो आलना खूब खूब जुआर ना
0: जुआर
1: जुआर।
2: हाँ तो मन तू
3: हाँ
2: दक ये भी हम ही कार्य से ये भेंट वार तक सुनते रहूं
3: ने
2: जीवना ने हम चो कला चो खूब महत्व से और कहीं ना कहीं कला जान लो ने उनके आप लोग संगे संगे दूसर के बोले सिखा तो ने। और दक ये कायरसिया भेटवार तक तो अमरालू मन तो संगे संगे हम चो मुंडरा ने झाला मन बोले आसे अलग बल अमराऊ था।
4: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तक का टैक्स तुन और वेंट सरल बना की तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडो लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुनिटा लेकिन 1% टैक्स मनता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूड चक्का न गाड़ी 1% GST मोला देने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मनता।
3: कोंदा दादा अले आम चो जातो समय बोलतो होली ने
2: हाँ
3: अले मुर्रगढ़ रख सकलें सल तुई भी दादर
2: आलते बे जातो पूरी बस्तर के सोर कार्यक्रम सुन तो सफाई भाई भाई और संग जाओने संगवारी मन के मैं कोंदा
3: हाँ मैं मंग तू
2: हमी दून करूं से
3: राम राम, राम।

अभी बस्तर के स्वर कार्यक्रम का प्रसारण किया गया आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम आमचो गांव।

0: व्हेन टैक्स दर 12% से घटे मास 5% की सितोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नाम ताव ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई किया अनबूता ते वेन मोला 12% से कम मास 5% की सितोड़।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे ए मन्ने काही बदलाव नि होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी और तीन चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे असन ले ये मन सपाई कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
4: हाँ तो मंग तू हम ही बोलते रहू कि हम जो गांव करी दा दीदी मन के भाई बहन मन के नाटक बोले हम रहू बोलू भाती ने और हम जो मन रन गोटोक नाटक आसे और दक नाटक जो नाम आए छुक छुका तो ये छुक छुका नाटक के लिखला सोत
5: श्रीमती यामिनी पांडे
4: और ये के प्रस्तुति कछवाए
5: बलबीर सिंह कच।
4: हाँ और ये था जो भाग धरला सो ते कलाकार भाई मंच नाव के
5: ससांग कुमार ठाकुर और उनचो संगवारी मन।
4: अच्छा आले ते बसन करूं ये के ये नाटक के गांव करी मन के हमरा और हमन मन बल सुनो सुनो
6: सोमारी ए सोमारी कहाँ गेलिस रे कसन करे काय कोनी नहीं हाथ काय नुक कहाँ गेला सपाय पाए धोए देता पाए की तो धोले आले ताई भीतर ओलून दखे देता
7: उगारा बेटा उगारा उगारा उगारा उगारा उगारा बेटा एब्बे तुझे बाबा ये दे इलाज आले तुके कहाँ बल दखाओ के नहीं दे उगारा ये दे तू अमरला ये अमरला सो
6: मैं तो अमरले मांतर ए काय होली गुरु शांति के आजी स्कूल बले नहीं गेली ने
8: आले ओढ़ाऊं दे इस नीरी आया काय के
6: आले कुछ कुछ दख आले हाथ के दखाओ ओहो ये तो एक दाएं तपून गेली से
7: कपार के बले छीन दखा हो एक के हार लक लक कुन गेली से उन्हीं ने तो मैं बेड़ा बाटे ये उक नहीं सकली
8: परले होली हो हम चित्र सुंदर बेटी कसन होली से सीत बोले लागे से बोले कसन करवाए दाए
6: थेप थेप थेप मैं जाए से बुटकी दीदी लगे अले इदल दाए ले जाओ रतीस की नहीं वो गाय होन भाति बसुन देली सीस
8: हे आया तेरी पानी दे इस नीरी
7: पानी ये दे बेटा ये बे दे इसे पानी ये दे हाँ ये पियो उखड़ा लो पानी आए ठीक सीतार करून पीऊ आए अल पीऊ दखलास मैं हाक देव गेले पीला लगे कौन रहता तुम ये भी इलास अले जहा और हाक दिनाना तो बुटकी दीदी के
6: मैं जाए से मैं झप के दे अल जाए से मैं दीदी ए बुटकी दीदी अरे कहाँ आसीस
9: काय होली बाबू खुबे हर बार होली सीस
6: ए दीदी आम चुनुनी शांति के खुबे जरचे गाली से
9: हाँ।
6: बिहाने मैं गेले बेड़ा घाई
9: हाँ।
6: रात इतले खिंडिक खिंडिक देह तपुर है और बिहाने तो लेकी एक के हार बाय बिकाल होली मने आली दीदी तू तो पारा चुमितानी नास दंडिक महा जो लेकी के दखुन दख पाछे फिर कहाँ आए अस्पताल बलने वा
9: आले बिथे भाई बाबू मैं एब्बे दे तो काजी दवाई के धरे से एक एब्बे खुआ देवा ए बाबू नोनी के काय खिंडे का दक शीत बल लागे से।
6: ओ दीदी शीत बल लागे से मने। आले दीदी तू बस साइकिल ने झप के जाऊं दीदी।
9: आले जो जो जो जो झट के जो मैं बस से आए।
6: ओ
9: शांति कसन लागेस नोनी?
8: खूब बेसी लागे से आता।
9: आले एबे काजे नहीं ए दवाई के खाऊ रहा है और तुम्ही नहीं दोनों बाले मनुष बिल्कुल चिंता नहीं करा। नोनी के जर संगे संगे शीत बल लागे से ये नहीं मलेरिया जर बल हो सके। एके नेउक लागे दे कहाँ बल ले जानास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने खून थाने खून जांच करावा तेबे आम के पता चले दे कि ये जर मलेरिया जर आए कि नहीं। समझ ला?
7: समझ लो दीदी समझ लो कसने कर।
9: आले सुकरु बाबू
6: कसन दीदी
9: केंडी घर ले बहारिया तो नहीं कर तुई
6: कसन
9: ए नोनी के नेवा तो नेवा ए चो चिंता नहीं करा। मानता रे बाट तो दख तू चो दुआर बाटे कसन होली से
6: उनके फिर काय के दखें देता दीदी रोजे तो दखें से ची
9: काय के दखें दे तू चो दुआर के तो दख और काय के दख से ता
6: हो दुआर के दखें से काय अले रोजे दखें से दुआर के और फिर काय के दखें देता।
9: ओ हो रे भकुआ माने दख तू चो दुआरे ये लगे खोदरा महा हुन लगे डोबरा महा हुन बाटे दख तू चो कोठा ले निकर तो चिखल पानी हुत्ता रूंडा होली से पानी निकर तो लग काजे कोन नी लगे बाट नी दखा दे और ए लग बल तो दख आखना इतरो के बड़ा लसास और ए बाट बाटे असली भन भना आसे एक ए छुक छुका कौन करे दे।
6: ये दीदी तू जाले असन बेरा ने बले तू असन छुक छुका संगत गोट के गोठे आसे तू
9: दख सुकरू तू चो बेटी काय काज बीमार होली से जान सिस तू
6: काय काज होली से दीदी
9: हूँ नहीं तू चो रूंडालो पानी और छुक छुका नहालो ठान लागुन बीमार पड़ ली से
6: हसन
9: हाँ हाँ दख ये साफ सफाई नहीं रलो कारण ने इथा गुंडी उपजे से हुनी गुंडी आम चो देहे के चाब लो ने जानू मलेरिया जर होए से मने समझ ली सुकरू।
6: अब्बा ये छुक छुका ठान संगातोर इत्रो मान और ये छुक छुका ठान नीरलो ने आम के इतर नुकसान आए और ये जर गुंडी चाबलो ने होए से
9: ए सोमारी नोनी।
10: ओए दीदी
9: तू ही नहीं नोनी के झप के तैयार कर।
10: ओहो
9: नोनी के नेवा और सुकरु तू ही सुन
6: अले
9: गोटक गोट सांगे से
6: अले अले
9: हैं हो हुन गोटाई सुकरु ये भनभना ठाने नहीं मच्छी बले सोत हुनी मच्छी मन नहीं हम चो भात साग ने बस सोत हुन चोले ए बीमारी हम चो देह ने जाटे से ये चोले नहीं ओ की झाड़ा डायरिया असन कई बीमारी मन बल हो सोत मने।
6: ए बाबा रे मैं ये गोड़ के नहीं जानते रे दीदी
9: ये दाए तो जान
6: अबे जान ले और हेओले नहीं बहुड़ू में गुलाए दुआर और बाड़ी की नहीं छुक छुका बना तो काम के करें दे।
9: हाँ आले होली री तैयार होलीस कसन
10: हाँ हाँ वे तो तैयार होलू दीदी आले जो जो जो
9: आले जा ता
10: आले जो
6: आले जो
9: जो जो झटके जो
10: झटके जो
9: हो झटके जो नोनी ए नोनी ए शांति आल डंडी टैप टैप टैप टैप टैप
11: जुहार आता
9: जुहार
11: काय होली आता
9: कहीं नहीं हो जान नोनी
11: हाँ।
9: स्कूल ले ऐसी
11: हाँ।
9: बीमार रही नोनी ये कसन लागे से
11: अच्छा लागे से आता
9: अच्छा हो लिस ने
11: नंगत हो ले काय तेबे तो स्कूल जाओ रहे घर जाए से दा
9: दखे से जानो नोनी ए नोनी
11: हाँ?
9: तू चो घर लगे तू चो बाबा चुक चुका कर लो कसन
11: हाँ आता पानी ये बे कोनी ची लगनी थे बे घर ले द्वार तक सब पाए बाटे छुक छुका बना लो से बाबा खत खोदरा तो खूब बेलाफी आसे
9: हाँ
11: हाँ और कोठा बोले नहीं खिंडी लाफी ची बना लो से ए बे दख तो के बोले सुंदर दखा दे ऐसे आता
9: हनोनी ए जसन हम चो देहे पाए के छुक छुक संगाओ से कसन
11: हाँ, हाँ।
9: दातुन पतर नहा तोर खोर तोर उसने घर द्वार के बोले नंगस संगा तोराय का आले जा बे नोनी
11: हाँ।
9: घर बैठ जा हाँ। और घरे बल सांग आए मैं सांझ बेरा तुम चो घर बाटे दे
11: हाँ।
9: गोटोक सोर चो गोट के सांग तो काजे
11: आले सांगुन दे इंदे आता सांगुन दे इंदे
9: आल जाते बे नोनी
11: हाँ।
9: जा आए
11: हाँ, ये आस्ते बे
9: हो धीरे धीरे जा
11: हाँ।

0: बाबू सुकरु, ए सुकरु,
1: कहाँ गेला से घोटक दखा नहीं देत?
2: सुकरु, ए सुकरु,
3: हाँ हाँ, आसू आसू, घरे आसू, अली आई आई आई, ए सोमारी,
0: हाँ आए हो,
3: हाँ दे बूट की दीदी अमरली, देख लीस,
0: आ दीदी,
3: आओ दीदी, आओ आओ,
0: आओ ऐसे का, तुम ची घर तो ऐसे,
3: ए कोतवाल दादा,
2: हाँ,
3: ए बाटे कहाँ बोलसीस ना तू?
2: यही बाटे आ मीता ने दीदी संग बोलू से ना
3: आले आओ आओ आलो बसा बसा
2: हाँ हाँ
0: आले या बसा ये कतल दादा ये दे बाट बसा ये दे लग बसा ये लग बसा
2: आले ये दे ये दे हाँ बसे ने
3: आले दीदी आले सांग कसने तो होली
0: होन तो सांग दे ची मांतर बूट की दीदी तू ही भल्ले काम कर लीज दीदी आम चो नोनी तू चो लागुन झप की उजर ली दीदी ये बे फिर काय सुंदर साइकिल चेगुन स्कूल बोले जाय सी
4: हो हो सोमारी हुनके तो भेटू रहे काय आर सांगुन रहे एन दे बोलुन तुम चो घरे
0: सांगली जानू दीदी आले बसा मैं खिंडिक चाहा मडाए दे आले बसा कतवाल दादा चाहा बल पीऊन जहा से
4: चाहा चाही रहो काय सोमारी एबे मैं गोटोक सोर चो गोट सांग तो काजी ले से
0: हाँ
4: हुनके सुनाता
3: आले दीदी सांग काय गोठाय जाले
4: हाँ जाले तेबे सुना हुन गोटाय सुकरु फेर छुक छुका ठान चो गोट दक मैं तुके बलतो के तुई तुचो घर के दुआर के बाड़ी खिड़ी के बले काय रसिया जतना लिस घर छुक छुका बना लिस छुक छुका हो तो के घर बले सुंदर होली दुआर बले सुंदर होली कसन सुंदर दखा दे से दखा दे से कि नहीं
3: नहीं हुन तो दखा दे से चिकाय
4: हाँ मानतर दखा बड़े बिहाने आमी आम चो टोंड का जे दातुन करूं से देहे का जे नहाऊं से देहे चो साफ सफाई का जे झाड़ा पिसाब बले जाऊं से आए कसन
0: हुन तो सत्य गोठाई गोठाए दीदी
4: मानतर दखा आमी झाड़ा कोंडी के धरुन फाती रान रेटे नहाले बेड़ा रेटे नहाले कहाँ तरई रेटे बले जाऊं से
0: हो
4: ये गोट बले खिंडी अरनाप गोठा
3: मानतर दीदी उन तो हमें पुरकति बेरा ले जाऊं से
2: नहीं ना आगज गोट तो अलगे रहे असे ना ना सुकरु देश बदल ली राज बदल ली चतुर हो तो राय जसन जसन जुग बदले से उसने चल तो राय बोलो ने असन आई की पुरकति बेरा आम तो सियान मन लेंगड़ाई नहीं रला अनपढ़ रला होती ये बे समय संगे संगे आमे धोती पिंदू झंगा मारू और पोड़कलू की सीख लू की नहीं
3: सत्य
2: हुसने आम के ये अड़रा चलन बाहर या बाटे झाड़ा जातो के बले बदलुक लागे दे
3: नहीं नहीं नहीं सत्य है
0: उन तो आए ची दादा के बे नहीं ये झाड़ा कोंडी के धर उन भाती खुब्बे दाएं ले टाकुक लागू से
2: हो
0: किदल दाएं लोग गुज्जे बोलूं दखते रहो सी हाँ मन मन
3: जाले मैं बोले नहीं दादा ए गोट के खिंडी खिंडी समझे से बिहाने हो कि संज बेरा नाले राती बेरा उथा पड़े झाड़ा भावलों ने केबे केबे खुबे चिपा होन जाए से और ये बे आगे चो महा रान बल बले नहीं आए धीरे धीरे टंग टंगा होते जाए से सफाई बाटे
2: होय ना सुकरु तेबे तो बोलतर होय से घरे झाड़ा खोली रलो सफाई अड़नाप चिपा ले मुक्ति बेटी बहिन मन घर ले सांझ बेरा राती बेरा अंधार ने कहाँ जाते रहते यही काजे सफाई घरे झाड़ा खोली हो तो खूब भी जरूरी आए ना
3: जले तुम्हें गोड़ तो सोरा ने सत्य बल लाज दादा
2: हो
3: अले दीदी मैं असन विचार के भी नहीं करू रहे दीदी
0: गोटो गोट तुचो हुन दिन चो मुके सुरता ये ऐसी दीदी
4: काय गोट री सोमारी
0: काय सांगा सी दीदी हुन तुई बलते रही नहीं दीदी
4: हाँ।
0: गुलाई घिन घिना ठान मन ने मच्छी मन बोसुन पाछे घरे यून खातो जमक मन ने बले बोसुआत ये चो बले आम के नुकसान हो ऐसे बोलून मैं विचार करती रही दीदी
4: हुन तो सत्य गोटाय यही काजे एवे आम के सफाई लोग के झाड़ा खोली बना तो गोट के सांग तो राय
0: हाँ।
4: हो झाड़ा खोली होए दे घर द्वार संगे संगे पारा आरु गांव सफाई छुक छुका रहे दे कितरो नंगत गोट होए दे
2: और नहीं सफाई बाटे छुक छुका रलो ने को कई बीमारी से मारी बोले जाऊं टुक नहीं सके दे
3: बिल्कुल सोला ना सत्य गोट बोल लाज दादा तुम्ही
2: हो
3: मैं काल के ची नहीं जाऊं तुरते आप लोग घरे झाड़ा खोली बनातो काजे मिस्त्री मन के तैयार दे उबे नंगत कर लास दीदी आम के सुतुर चुगोट के सांग लास
0: ये कतवाल दादा तुम्ही भले का ये ही वाट काजे का गुलाय गांव के बुले सास
2: हाँ उन्होंने गांव चो भलाई चो गोट काजे सफाई के सांगुक बुले से तुम जो पारा चो मितानीन बुटकी दीदी आए गुनुक ये चो संगे ईले से आले ते भी आमे जाऊं दे सूत्र चो गोट तो सर ली एदाय आम के जाऊ पड़े दे जाऊं दीदी जाऊं एदाय रामु घर पर बल जाऊं
0: ये यदे चाह रान ली दादा यदे बसा बसा खिनिक खिनिक चाह खाऊं जहां से
4: आले जानू दुई पद नगद गोट के गोठियालू सुआद गोट के गोठियालू बाड़ती चो सोर के गोठियालू होली जानू यही आम चो काजे चाहा
1: एदे बनली चाहा आया
0: आ एदे एदे एदे चाहा खाऊं जहा नहीं नहीं नहीं बोलो थाने नी जहा
4: आले बोल सा जाले
0: आले आले आले
4: आले आले
0: पियूं दियास खिंडी कसन
4: आले नोनी बनाली सी जल मीठा चाह खिंडी खाऊं दखूं दे
3: आले कोतवाल दादा चाह चो संगे संग नहीं मुझे कुछ ठसा के बोलो सुना
2: आले ते भी सुना आले
0: सुना
3: आम के तुम्ही सांगला सुतुर्च गोट होली आम के तुम्ही सांगला सुतुर्च गोट होली एदाय आमी बनाऊं दे घर ने झाड़ा खोली।

0: हमंग तू दक्का ये भी कायरस या ये छुक छुक का नाटक के अमरालू ने और नाटक के सुनून भाती हम जो गांव करी भाई बहन मन बल समझला होती कि हम के घर परिवार जो पीला झीला के बीमार से मार ले और सियान सजन जुआन लोग के बले बचा तो काजे हम के आप लोग घर रहे और घर संगे संगे दुआरे बले छुक छुका संगा तो गाए क्यों गंदगी ले जो नाए मोची गंदगी ले गुंडी मन जो नाए होसोत और हुन पर हम जो खादी पीदी सामान मन ने बसुन भाती हुन जो ना आप लोग बीमारी के फैलासोत और एक हम ही खाउन भाती के भाई मलेरिया नहाले के भाई हैजा नहाले के भाई उल्टी झाड़ा असन शिकार हूं से तो ऐसे काज बाज तो काज हम के छुक छुका घर के संगात रहने तो दक कदाए छुक छुका संगात वाए घर के और मन बले छुक छुका रहो और शांति रहो और तेबे मन ने उदिम लागे दे और उदिम होलन काय आए फिर
1: गीत गोविंद
0: उदिम होलन गीत सुनु भाऊ है आलते पे जाऊ घोटो गीत बाटे
1: ये गीत के सुनु पे पांच गीत कुरिया मन नाव सांग
0: आले आले

0: दादा
1: हाँ मग तो
0: काय सुंदर गीत सुंदर ने
1: हो काय नाचुक भाव ते राहिने
0: हे गीत कुरिया नाव चिताली
1: हो काय चिताली आल सांगून देस
0: ए मन गौर हो शिव राम नाग और उनचो संगवारी में
1: हाँ
0: तो उस
1: मोडरा नहीं उरा से ता नहीं
0: और बोले आ से गीत
1: हाँ
0: अरे गीत के सुनू पे गीत कुरिया नाव मन पसंद हो
1: आ लेते मैं हम रहा
2: हूँ।

0: काय सुंदर गीत रेली ना
1: दादा द कच्छा लागली ने
0: हो
1: आल गीत कुरे मन चो नाव के सामने
0: ये मन गाउ रहत बलबीर सिंह का चावर चो संगवारी मन
1: ने तो इतलो सुंदर गीत गोविंद मन बले अमरालू और कार्यक्रम बले हमी हम चो गांव करी भाई बहन मन चो मन जी अमरालू ने और द कार्यक्रम अमराते अमराते अदाए बेरा होली हम चो भाई बहन मन चो खातोर और हम चो बेरा होली घरे जातोर तो अदाए मोडरा गडरा के सकलू तेबे और मांगू बिदा तो जातो पूरे आमचो गांव कार्यक्रम सुनतोर सपाई सियान सजन भाई बहन और संगजौरिया संगवारी मन के रेडियो भीतर ले हरक फेर मैं कोंदा
0: और मैं मंगतू
1: हमी दोनों करूं से जो
0: जोहार।

0: आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम आम चो गांव। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। रात के 8 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में अब लीजिए सुनिए दुकारू सोड़ी और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में अभी आप सुन रहे थे दुकारू सोड़ी और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:30 होते हैं। लीजिए सुनिए हल्बी बोली में बच्चों के लिए दैनिक कार्यक्रम पीला मन का जे गोट। प्रस्तुति है भरत कुमार गंगादित्य की।

0: तो पाठ के दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीला मन
1: पीलामन का जे गोठ ये कार्यक्रम सुन तो जमाय पीलामन के मचु भाटले खुबे खुबे मया आउर लाड पीलामन रोजे दिना आमी तुमके काई नहाले काई गियांचो गोठ नंगत नंगत सिख्या बीती कहनी नहाले महापुरुष मंचो जीवनाचो गोठ मन के सुनाऊ से सांगू से असनी आज में तुमचो लगे अमराय से आमचो देश चो गोटोक साहित्यकार बड़े लेखक मुंशी प्रेमचंद चो जीवनाचो कहनी के पीलामन प्रेमचंद के उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट बले बलतुर हुए से ये मंचो जन्म 31 जुलाई सन 1880 ने वाराणसी लगे चो लम्ही गांव ने हो रहे प्रेमचंद चो असल नाव रहे धनपत राय श्रीवास्तव ये मंचो बाबा चो नाव रहे अजायब राय ये मंचो बाबा डाक खाना ने नानी असन नौकरी करते रला प्रेमचंद जेबे सोजे 8 उम्र चो रला तेबे हुंचो माय चो मरनी होन गेली तेबे हुंचो बाबा दूसर बिया कर लो मांतर प्रेमचंद के माय चो मया मी रुक नी सकली पीलामन जसन की मैं सांगले की प्रेमचंद चुनाव धनपत राय रहे पाछे हुन प्रेमचंद चुनाव ने लिखुक मुरियाला और एबे हुन मन के यही नाव ने जानतुर होय से प्रेमचंद जिदलदाय लिखते रला उदलदाय आमचो भारत देश गुलामी ने रहे प्रेमचंद

आनंद आपलो समय हिसाब ने कहनी और उपन्यास लिखला। पीलामन मुंशी प्रेमचंद गोटोक लेखक रला। लेखक साहित्यकार होन हुए से जे आपलो मने विचार करे से और कहनी बनाए से। कहनी बना तो कितरो मस्किल काम आए। आमी राजा रानी चो कहनी, कोल्या और बाग चो कहनी और असनी का एक कहनी मन के आई दादी आजू दीदी चो टोंडले सुनते रहूं। मंत्र पीलामन हुन पुरखती बेराले मुखचरण ले सुन तो कहनी बनात। तुम्ही विचार करून दखा कि आप लोए मने विचार कर तोर कि कहनी ने कौन कौन पात्र मन रह दे, कसन कसन कर दे, काय काय घटना मन हो दे, पाचे सरासरी ने कहनी ने काय हो दे, ये सब पाए के विचार करून भाती लिख तोर हो से कहनी। और असनी खूबे लाम बीती कैक घटना मन संगे सांग तो बीती कथा के उपन्यास बलतोर हो से। उपन्यास बल्लो ने गोट की कहनी के सांगलो बीती बड़े पुस्तक जेथा जीवना चो घटना मन रहे से। जाले पीलामन असनी प्रेमचंद खुबे महा उपन्यास और कहनी के लिखला सोत। उदलदाए जमींदारी प्रथा रहे। जमींदार ले कएक झान लोग मन लागा धरते रला। असन लोग मन के दखुन भाती प्रेमचंद हुन बंचो कहनी के आप लो लिखलो कहनी और उपन्यास मन ने आल्ला से। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू भाषा ने लिखते रला। पीलामन प्रेमचंद चो कहनी मन जे छपला से पुस्तक मन हुन मनात दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सप्त सरोज, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर भाग एक और दुई, कफन, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी और प्रेम प्रतिमा, असनी प्रेमचंद चो लिखलो उपन्यास मनात रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, हम खुरमा व हम सवाब, सेवा सदन, बाजारे हुस्न आरु प्रेमाश्रम। पीलामन प्रेमचंद चो लिखलो कहनी मन ने हुदलदाए चो समाज चो जे चीपा अड़नाप मन रला हुन सब पाए के दखुक मिरे से। जसन गोटो कहनी आए पंच परमेश्वर, ये कहनी ने दुई झान संगवारी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी चो किस्सा के सांगलो आसे। जेथा पांच झान पंच मन बसुन गांव चो नियाव के करसोत। गांव ने पंचायत ने बसुन भाती जे नियाव होई से हुन पंच परमेश्वर बल्लो ने भगवान चो नियाव महा आए। खूबे सुंदर ढंग ले ये कहनी के हुन बनाला से। असनीचे गोटो कहनी आए ठाकुर का कुआ, ये कहनी ने समाज भीतर चो छुआछूत भेदभाव के सांगलो आसे कि बड़े जात चो ठाकुर चो चुआ, बिहिर चो पानी के नानी जात चो लोग कसन पीउ सक दे। असनीचे गोटो कहनी आए ईदगाह, जेथा नानी महापीला हामिद आपलो आई संग रहे से। हामिद के मंडई ने बुल तो काजे हुंचो आई तीन पैसा दे से। हाट ने जाऊन भाती हुन हाट ले हुन पैसा चो हामिद चिमटा अनुआए। काय काजे की रोटी बना तो बेरा तावाले हुंचो आई चो हाथ जरून जाते रहे। असनी कएक ठान असन कहनी मनासोत जे आमचो मन के छीउन जासोत। और उपन्यास मनचो गोट के बले काय के सांगू खोय देता। गोटोक उपन्यास आए गोदान। गोदान बल्ले गौदान, आमचो पुरखती ले रुसुम चलते ऐसे गौदान चो। असली ये उपन्यास ने किसान होरी और हुंचो घर बीती धनिया चो जीवना चो कहनी के सांगलो आसे। पीलामन तुम्ही मुंशी प्रेमचंद चो लिखलो बीती रचना मन के, कहनी मन के, उपन्यास मन के पढ़ा से तेबे हुन मन चो लिखलो वाट के मरम के जानू सका से। और गोटोक गोट के मैं तुमके सांगे से कि आमचो बस्तर ने गोटोक साहित्यकार लाला जगदलपुरी होला से। लाला जगदलपुरी प्रेमचंद चो कहनी मन के हल्बी ने अनुवाद करू रला जे प्रेमचंद चो बारह कहानी नाव ने छपू रहे। पीलामन प्रेमचंद चो लिखलो उपन्यास गोदान चो उपरे गोटोक फिल्म बनली से गोदान। ये फिल्म ने होनी कहनी के दखातोर होली। पीलामन प्रेमचंद के आमी कहनी हिसाब ने जानू से।
जालिया जी आमी कहनी चो गोट के गोठियाओं से ऐ हिसाब ने आम चु बस्तर ने पीला मन के भुरला तुकाजे गोटो गीत गावात जो झोली आले अदाएं होनी गीत के सुनो।

पीलामन आज ही मैं तुमके साहित्यकार प्रेमचंद छो जीवना छो कहने के सांग ले तो भी बोले सुनुन भाती मने विचार कर रहा कि जसन साहित्यकार मन कविता कहानी निबंध उपन्यास असन सब पाय विद्या मन के लिख सोत आभी बोले लिखुक सकूं काय खंडिक तुम्हें विचार करूं दखा आले अदाए आज ही जो कार्यक्रम ले मौके दिया विदा जातो पूरे ये कार्यक्रम सुन तो जम्मा पीला मन के मचो बाटले खुबे खुबे मया आउर लाड़।

0: आप सुन रहे थे हल्बी बोली में बच्चों के लिए दैनिक कार्यक्रम पीला मन काजे कोट। प्रस्तुति थी भरत कुमार गंगादित्य की। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में होंगे समाचार क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण
3: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
5: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
6: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
5: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
7: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
8: Several key agreements were signed.
9: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
8: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
10: Against the assessment of
6: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
10: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

रेडियो सुनतो सपाय भाई बहन मन के खूबे खूबे सेवा जुहार। देखा आमी भले ने आमचो ये कार्यक्रम जीवनाचो सोर भले ने जीव तो काजे कहीं ना कहीं असन बाट डगरा तो जोन वाट आए भले ने ये कार्यक्रम ने आमी जनाओ से सुनाओ से कसन बल्ले काय की जीव तो काज तो कहीं ना कहीं आम के बाट डगरा उखलाय पड़े दे तो आमी कसन डगरा मा कसन ने आम के जीव तो काजे भले ने दुई कौड़ी पैसा मीरो भले ने आर्थिक उन्नति आम कसन करूक लाए सकवा ये जो जोन बाट आए और जोन ये बाट के डगरान बाती भले ने दुई पैसा कमाए सोत असन भाई बहन मन संगे गोड बात करूँ से आरो आपन मन के सुनाओ से जनाओ से कसन बल्ले काय की काई बल्ले काम के कर तो काजे जीवना के जीव तो काजे मेहनत आरो मसागत लागे से आरो मेहनत आरो मसागत ने कोनी बल्ले काम के कर तो काजे भले ने कितले भले ने मंजी मंजी ने चिपा

0: टूटान बाती हुंचू बीचा के निकरान बाती, फिर अच्छा रस्या उनके बल्ले ने छिलका निकरान बाती, फिर धो धा कर उन बाती बल्ले ने उनमन के पॉकेट बनाए सोत, बल्ले ने ग्राम हिसाब ने किलो हिसाब ने और उनके बिकतो सन तैयार कर सोत। एक आमे बोलूँ से प्रसंस्करण यही जो काम है, ये कर्मनी गाँव चो महिला स्व सहायता समूह चो दीदी मन कर सोत। तो एमन संगे मैं गोड बात कर ले से पहले ने एमन कसन मुहर करला, कसन काम कर सोत, काय काय काजू प्रसंस्करण कर तो काजे मशीन मन एमन के मेरले से आरु एमन चो पहले ने जीवना जीवत काजे कसन ने बल्ले ने दुई पैसा आर्थिक उन्नति होए से ये सब गोट के जानू सुनू। सब ले आते चुनाव सांगे।
1: हाँ, मुझे नाम रुक्मणी साहू है, मैं काजी यूनिट का सचिव हूँ।
0: अच्छा, सचिव।
1: हाँ
0: अच्छा।
1: हम जो समूह के नाम जय माँ जगदम्बा हुता चो भी सचिव है मैं।
0: अच्छा।
1: हाँ
0: बोले ने दोनों तान सचिव।
1: हाँ, समूह चो और यूनिट चो वाला।
0: अच्छा, यूनिट। तो ये जो काजू यूनिट बल्लिस ये कितलो वर्क सन लिए छु?
1: ये तो सन 18 से करूं से।
0: अच्छा, सन 18।
1: हाँ।
0: तो ये जैसन क्या मैं देखूं से ये ता काजू प्रोसेसिंग सेंटर ताने बल्ले ने पूरा जो मशीन औजार मन जो मेरली बल्ले ये कहाँ ले मेरली कसन मेरली
2: आगे दहन पाए बीती कटर में।
1: हाँ, पाए बीती कटर में कर रहा हूँ। आवे फिर सरकारी मतलब वो कृषि विभाग घैली मिलली से।
0: अच्छा, कृषि
1: विभाग। हाँ हाँ।
0: तो बल्ले नहीं चुका तुम कहीं पैसा वाल पटक पड़ ली?
1: हाँ बाबा, ये तो सामान वामान कहीं होले फिर खर्चा हम ची आए जानू मानतर जो भी सामान मिलली से हूँ हम चलू आए।
0: अच्छा,
1: ये सरकारी आए।
0: सरकारी आए।
1: हाँ।
0: अच्छा, फ्री नहीं मिलली?
1: हाँ, फ्री मिलली।
0: अच्छा।
1: ये भवन तो फॉरेस्ट जो है और सामान जो है कृषि विभाग। हाँ।
0: अच्छा, तो जैसन के काजू चू जो बना तो है बीजा के प्रोसेसिंग कर तो काज आगे तुम के ट्रेनिंग वाली मिल ली?
1: हाँ, कुमरावन के सर लोग दिला।
0: अच्छा, कहाँ तुम होता है जिसे को गेला से?
1: नहीं, ये ता इलाका है हुनमन।
0: अच्छा, तो यूनिट ने के जन महिला मना से सर?
1: ये पे यूनिट में हम लोग 10 जन काम करो से।
0: 10 जन।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो ये जैसन की काजू वगैरह बोले ने तुम खुद घेन सास?
1: हाँ, अबे दे हम चो पलाट वाला यहाँ से।
0: अच्छा, पलाट वाला।
1: हाँ, 3 समूह चो है पलाट होता, फिर हम एक समूह चो ये ता प्रोसेसिंग करूँ और 2 समूह चो लोग भी कुंदे सो।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो बोले ने तुम चो जो प्लाट चो है तुम ये ता प्रोसेसिंग कर?
1: हाँ हाँ, प्रोसेसिंग करूँ से।
0: अच्छा, तो ये जैसन की प्लाट बोल लीस, तो ये प्लाट कितने करने यहाँ से?
1: 44 हेक्टर में। हाँ।
0: अच्छा, बल्ले चो जो जो पौधा वगैरह जो लगा तो बीती पूरा?
1: नहीं, वो तो पहले से सरकारी लग लो बीती है।
0: अच्छा,
1: सिर्फ देख रेख उसको फल बीज को मतलब।
0: हाँ
1: हाँ।
0: अच्छा, तो ये फल जो सन की टूटान बात फिर प्रोसेसिंग कर सा से चो?
1: हाँ, उनके फिर गर्मी दिन में टूटा हुआ सूखा हुआ जो बीज के उनके 3 बाटा बना हुआ हम जो बाटा चौके ये तानु हम ही का काम करूँ से थाने।
0: अच्छा, तो फिर उन चो पॉकेट वगैरह बल बनाए साज भी?
1: हाँ।
0: तो बल्ले ने पॉकेट बनाने वाते फिर उनके बल्ले ने बिक तो भी थी कसन आए भी?
1: हाँ, अभी कोनी कोनी फिर अधिकारी लोग बोले था ये ऐसो रायपुर बल जाऊं से, दिल्ली बल जाऊं से।
0: अच्छा।
1: जगदलपुर घर जाऊं से ने।
0: अच्छा, पर तुम खुद भी कुक ले?
1: हाँ, खुद भी कुक से।
0: तो बल्ले ने कसन हिसाब ने दे थोड़े से किलो कसन ने दे सास?
1: हाँ, किलो अब 1000 रुपया वाला से, 800 वाला से, 600, 700 मतलब बीचा दखुन दखुन आ जानू।
0: अच्छा अच्छा, बल्ले बीचा दखुन।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसने अलग अलग करुन बाती बीचा?
1: हाँ हाँ हाँ, अलग अलग का नानी बीतिक नानी थाने, बड़े बीतिक बड़े थाने।
0: अच्छा, तो ये पूरा पैकिंग कर तो काज बल पूरा मशीन आसे जो?
1: हाँ, आसे मशीन वाला से।
0: अच्छा,
1: और हुन छटिंग कर तो काजे मशीन छटिंग मशीन पैकिंग मशीन सब पाए मशीन आसे।
0: अच्छा, सब मशीन आसे।
1: हाँ।
0: अच्छा, तो ये सब चट्टू में ट्रेनिंग धर ला सारे?
1: हाँ हाँ, सब चट्टू ट्रेनिंग धर लो उसका।
0: तो ये साल भर चलते चले से काम?
1: हाँ, अब हम ही खेती किसानी लोग अनगुनु साल भर नहीं करूं। अब रोपा दिन में रोपा लगाऊं से घरे, कटाई दिन में कटाई करूं से, निंदाई दिन में निंदाई करूं से।
0: अच्छा,
1: अब खाली समय में ताय उन करूं से।
0: अच्छा। हाँ, नहीं ये जैसे प्रोसेसिंग जो काम बल रोज दिन चलते रहे से?
1: आप कर ले, करना चाहे तो रोज ही चलू, नहीं कर ले बंद वाला हुआ। हाँ,
0: बोले तुम घर चो काम करून पुरसत उन बतेते?
1: ये ता करूं से। हाँ।
0: अच्छा, तो बोले चो काजे बोले कहीं खर्चा हिसाब ने काय लागे तुम के अलग ले लगाओ पड़े?
1: खर्चा अभी फिर बीज हुई की घेन ले फिर लागे से छे जानू।
0: अच्छा, बीज घेन ले लागे से। हां हां, बोले जसन की तुम चो बाड़ी ना से।

0: लो टूटान बाती फिर और बोल बाहर घेन सास्त नहीं
1: आघेन उसे का पैसा रले।
0: अच्छा तो दक ये जसन की तुम बिक्री भांडी कर सास फिर उनचु जो पैसा को उड़िया है जसन की दस झान सब होने आसे आसू बोल सास तो बोले एक कसन तुम्हें सब मिलन बाटा करू आज के कर।
1: हाँ फिर जसन जसन काम करू से उसन उसन बाटू से।
0: अच्छा अच्छा बोले काम करूं जसन बिक्री
1: हाँ, हाँ, जसन हाजरी अनुसार बोलू से भी हमी एक दिन कोनी दुई दिन कोनी आठ दिन असन हिसाब से बाटू से जानू।
0: अच्छा बोले तब बोले हाजरी असन वैसे
1: हाउ हाउ ना ले कहाँ साहब नीलो लोग के कहाँ ले दीवन।
0: अच्छा
1: मेरी
0: बोले जोन जोन काम करू के ऐसा तो
1: हाउ हाउ हुन हुन खाऊ से जानू।
0: बोले महीना नहीं आये की बाट तो बीती साल
1: हफ्ता में बला महीना में बला जब पैसा हो ले उधर दा।
0: अच्छा बोले जसन पैसा ही ले
1: उसन बाट तो बीती आये हो।
0: अच्छा बोले तुम जो जो खाता आसे इतना बोल कहीं पैसा संगा ऐसा होती
1: नहीं संगा लो जन खाता नहीं
0: खाता नहीं है। अच्छा तो सरकार बाट ले और कहीं तुमकी मदद मिल ली पैसा कोड़ी चीज का जाए अलग ले
1: देव रो जानू घेन तो काजे।
0: अच्छा अच्छा घेन तो काजे देव रोला तुम पैसा पटक पड़ ली की
1: पटा लू का किस्त में
0: कितलो देव रोला यार
1: लगभग चार साढ़े चार लाख देव रो।
0: अच्छा तो ये समूह ने जोड़ तक तुम कसन लागे से।
1: अच्छा लागे से जानू।
0: अच्छा तो बोले ने पैसा कोड़ी चुका है सुविधा हो से घर का जी
1: घर का जी बोला बाहरिया गड़ी भूती को ले जाते रहू चप्पल ये तो छाए में करू से अच्छा लागे जाने
0: अच्छा हाँ, हाँ। घर परिवार का बोलो नगद लागे से।
1: हाँ।
0: तो अलना दीदी इतना अच्छा गोट के सामने साले हारक पैर ना सकते इसका नाम
1: मुझे ना रुकमणी भाई सा हुआ है हाँ। हम जो समूह के नाम जय माँ जगदम्बा है हाँ। हम जो गांव के नाम कर मरिया
0: है
1: बस्तर जिला है
0: जिला है तो हाँ। रुकमणी दीदी खूब खूब जुआर
1: खूब खूब
0: आल दीदी तुचो नाव सांका
2: सबके जय बिहान मुझे ना बोदे भाई है हम तो समूह से ना जय माँ जगदम्बा है हुता समय पुराना सचिव है।
0: अच्छा पुराना सचिव है तो कित बरख असन सचिव रही साले
2: मैं चार साल
0: चार साल
2: हाँ।
0: अच्छा तुम चो ये जो समूह जो बना रहा है बोले कितलो बरख होली
2: हम तो 2018 से है समूह बना लो।
0: अच्छा तो समूह बना तो काज काय करू के लाय पड़ली
2: समूह बना का जे हम के तो बाहर आंध्रा लीला और हम के सिकान दिला जुड़ान दिला और हुन मंजेला।
0: अच्छा बोले काय काय
2: सिखाला चलो काय तो कागज मन दकाला जान लिखा पड़ी सबके सिकान दिला।
0: अच्छा
2: हफ्ता हफ्ता हमने 20-20 रुपया हम जमा करू हफ्ता बैठक हुन मन सब सिकान दिला तो हुता एला उधारी धरवाम 20-20 रुपया जमा करून तो हुता फिर पटवाम हुन सबके सिकान दिला।
0: अच्छा तो सबले पहल तुम चो समूह चो जन सपाई दीदी मन काय काम की मोर करला साले
2: है हम कहीं काम नहीं करते रहूं असनी बाहरी कुली भूती जाते रहूं तो ये तादक लो ये यूनिट किस साल से बन लो राय कि हम केवल पता नहीं आए तो ये रली हम समहुन जुड़ लू तो फारेस्टल मशीन हो रहे कटर मशीन तो ये काजू बीती आए बोलो गांव से लोग बोलत जानो कुनो काम समहुन चर्चा कर लू अरे काजू बीती के करो फोका खाली आसे बोल लू।
0: अच्छा बोले पूरा ये काजू चो बोले प्रोसेसिंग बना तो पूरा मशीन तो मन मन की मर ली।
2: हाँ
0: अच्छा ये जसन की मशीन अगर मिली तो बोले ने तुम इसी आग मुर
2: हाँ आमी सी मुर कर लू की हुन कुमराउंड ले इलार आम के टेरलिंग दिला गुनो काम फिर सीख लू।
0: अच्छा और कोनी बाहरी बोल देखो कहीं जाओ रहा से
2: आमी हाँ हम जावा सनी मेला मेली लगले जावा जानू दुरुप भिलाई सब बार जावा।
0: अच्छा बोले अब तक कौन कौन ठान मनने गला सास
2: हाँ? एबरायपुर दुरु भिलाई बाटे कुमराउन जगदलपुर सब घई जवाम जानो।
0: अच्छा तो होता का है असने सिकुक जाओ आज की तुम
2: नहीं हम असने काजू नहीं हम सिकुक लाई नहीं जाऊं दायम के तो एक हारे हुन मने उने ता एक हफ्ता ट्रेनिंग दिला तो हम सिख लू।
0: अच्छा सिख तो काम होली बोलो ने हां एदा तुम जो काजू बनाए सा सुन के बिकुक लाई ने सा
2: हां दा जो आमी काजू बनाओ सुन के बिकुक नहीं हम।
0: अच्छा तो ता कहीं असन स्टॉल असन मेरे से
2: हां स्टॉल असन मेरवा।
0: अच्छा तो बोले नुता तुम संगान बात भी साथ
2: हां
0: हां काय काजू ची है क्या और दूसर बोले चीज
2: है नहीं दूसर चीज हम नहीं करू काजू ची करू हम जाना।
0: अच्छा काजू ची कर साथ हां हां तो बोले ने ये काम ने जसन की तुम महिला समूह सब होला कसन लागे से दा
2: हम के दा अच्छा लागे कि हम आगे धूप ने घाम ने बल्ल महा गुला कुली भूती बाहर जाते रहूं तो आम के ता रोजी मिरे से तो बाहर काय का जाओ छाने अच्छा बसन काम करवा।
0: अच्छा हाँ हाँ बलने तुम के खूब सुविधा होली।
2: हाँ आम के खूब सुविधा होली।
0: हाँ हाँ
2: और आम के हर एक बल लागली गांव ने आसे तो आम बाहरी काय का जाओ आम बोलू।
0: हाँ हाँ बलने घर चो काम संग संग फिर ये बल काम।
2: हाँ घर चो काम संग संग तो ये बल काम हो से।
0: अच्छा हाँ हाँ ऐसा की तुम ये काजू चो प्रोसेसिंग काम कर सास तो और बल कहीं दूसर बल काम बोले कर सा जैसे कई लोग जैविक खत काय काय बोल बना हुआ तो सन
2: नहीं हम तो गाय गोठान अलग आसे
0: अलग आसे।
2: हाँ अलग आसे तो एक एक समूह करते जा सत गाय गोठान लोग हन बनावा।
0: हाँ हाँ।
2: तो आम ही बनावा ये रेडी टू लोग रेडी टू बना सत अलग अलग समूह एक एक समूह धरते जेलू।
0: अच्छा बोले तुम जो समूह चो लोग ये काजू।
2: हाँ काजू ची आए।
0: अच्छा बोले ने ये काजू चो जो पूरा तुम्हें सिखला से बोलू भी काय की जैसन लिखा पड़ी आए काय जैसन रजिस्टर वगैरह भर तो
2: हाँ हाँ सब के सीख लो। हाँ हाँ हिसाब किताब सब के जानो।
0: अच्छा भले ने कौन दिन असन हिसाब किताब का तुम बैठक कर सा साल
2: अमी शनिवार दिन बैठक करवा।
0: अच्छा शनिवार दिन
2: हाँ।
0: रोजे
2: हाँ।
0: तो उता काय काय हिसाब करवास काय काय मन गोट बटे बटे वास
2: तो अमी हुनी बिकलो काय काय जहाँ बिकुक ने उंदे तो कितलन बिकलू कित किलो ने उरलू हन सब के हम लिखा पढ़ी करवा।
0: असन अच्छा पूरा हिसाब किताब।
2: हाँ पूरा हिसाब किताब करवा।
0: तो जैसन की पैसा जैसे कि तुम बिक्री भांजी कर लास बल ने उनके आधो बैंक अकाउंट जमा कर साथ की।
2: हाँ आधा खाता बल जमा करू हम जानू।
0: हाँ।
2: सबके नी बाटू कोनी। हाँ। दिन मशीन मसना नसले खर्चा कौन हाथ ले पड़न बनाऊ है।
0: हाँ,
2: तो हुन खर्चा का जाम खिंडी का आधा। हाँ। बैंक अन जमा करू आ। हाँ। और बाटू हम।
0: अच्छा तो दक इतलो अच्छा तुम्हें घर चो काम बुता बेड़ा खड़ा संगीता बल काम कर साथ तो बोलू ये गोटे कुपरा बोले आमदनी असन हो।
2: हाँ।
0: तो ये चु कहीं चीना वाना बल धरलास कहीं
2: चीना वाना निधर जान बाटू आम पैसा तो अपन मन नहीं आप लहान चो।
0: हाँ।
2: ने उनका एक आय घेन सत पीला झीला।
0: हाँ। नहीं तू चो बोल कहीं चीना असन धर ली सी कहीं
2: मैं बोल धर ले जानू
0: असन।
2: हाँ।
0: अच्छा ये सोना भी धर ली सी जाल काजू भी है कि तू घर चो पैसा
2: नहीं काजू भी चो आ जानू टीवी टी बात धर लू काजू भी चो।
0: अच्छा हाँ हाँ बोले ने इतलो अच्छा बोले ने ये जो समूह आए जुड़ तो के बोले ने तुम चो पूरा हरिक उद्यम चुप सब सामान वगैरह बोले होली कहीं तकलीफ नहीं आई।
2: हाँ, का पीला झीला पढ़ा लिखा काज बोलते लागे से ने। हाँ, सब तो, खर्चा।
0: हाँ हाँ नाल फिर घर चो धान पान की बिकू पड़
2: नाल घर चो धान पान बिकते रहू जाना दानी बिकू।
0: हाँ हाँ अच्छा इतलो अच्छा का है सुंदर गोट के सांगली साल हर फिर नाव सांगली
2: सबके जय बिहान मसे नाव बदे भाई आए। हम से समूह से ना जय माँ जगदम्बा गांव से ना करमरिया।
0: अच्छा हल खूब
2: धन्यवाद।
3: हाँ तो देखा ये बल्ले ने बस्तर विकास खंड ग्राम करमरीचो महिला दीदी मंचो ये गोटोक समूह आए और ये समूह ने एमन काजू चो प्रसंस्करण कर सोत दखा बल्ले कितलो नगद गोटाए कि घर चो बुता करुन बाती घरे रोन बाती गांव ने रोन बाती बल्ले ने एमन एचो काजे गोटोक समय निकराय सोत दिन ने और हुन समय ने सपाए महिला दीदी मन रोंडुन बाती ये काजू चो जोन प्रसंस्करण बनातो पीती जोन विधि आए ये ताने एमन काम कर सोत। तो दखा असन गोट के सुन ले ने कितलो नगत लागे से और दूसर लोग के बले असन मारग मेरे से कि हुन मन बले कहीं न कहीं असन बले दुई पैसा कमा तो उवाट करो। तो रेडियो सुन तो सपाए भाई बहन मन के खूबे खूबे सेवा जुहार।

0: जियोना जो सोर। अभी इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जय मां जगदम्बा महिला स्वसहायता समूह गांव करमरी की रुक्मणी साहू से बलबीर सिंह कच्छ की बातचीत। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। रात के 9:30 हो चुके हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है हल्बी बोली में कार्यक्रम भेंट घाट। इसमें सुनिए साक्षरता की आवश्यकता, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार है बलबीर सिंह कच्छ।
3: रेडियो सुनतो सपाय भाई बहन मन के सेवा जोहार। आज जो ये कार्यक्रम ने आमी अपन मन संगे गोड बात करवा जानवा अपन मन सपाय जानास इकी ये गोटोक असन समयाय भल्ले ने काई बले काम के करतो काजे माने के खेनिक बले पढ़ा लिखा होतर जरूरी है। तो आज आमी गोड बात करवा वर्तमान में साक्षरता की आवश्यकता बलने ए समयाने साक्षरता चो आवश्यकता। आमी सीधा सीधा बोलुक सकूं कि आमचो जीवनाने पढ़ा लिखा रोतो काजे काय काजे जरूरी है। आपन मन जान सास कई काम बुता निबल जायसास होती और करसास होती तेबे ये जानुक होय से कि पढ़ा लिखा जोन रोलो मान्याय हुन तो काई बल काम के झपके करे से मंतर जोन निरक्षर आए मने अनपढ़ आए कहीं पढ़ा लिखा नहीं जाने हुनके कहाँ बोले गेलो ने कितलो चीपा होए से कितलो अटकनी होए से कितलो समस्या होए से ये होनी माने जानुक लाए सके। तो रेडियो सुन तो भाई बहन मन आगे झुके बल ने गांव गांव ने बले शहर मन ने बले पढ़तो काजे स्कूल मन खूबे कम रली जेचो कारण ने कहा कि लोग मन बलने पढ़ूक लाय नहीं सकला। आरु जोन आमचो पारंपरिक रीति नीति आय जसन की सामाजिक काम मनाय धार्मिक काम मनाय सांस्कृतिक काम मनाय और बले जितलो आमचो पुरका पार्टी चो जोन बुद्धिवान लोग मनरला पीढ़ी ने गांव ने पारा ने देश ने जोन बाटे आगर पढ़ा लिखा रला हुन मन तो आपलो जोन सामाजिक रीति रिवाज के लिखला और कई कसन महान बुद्धिजीवी लोग बोल रला हुन मन असन समाज चुकाज काम करला जे काय कि आजी आमी हुन मन चु लिखलो कथा कहानी के इतिहास के पढ़ लेने जानुक होय से कि हुन मन कसन बलने आमचो देश के आमचो समाज के आमचो गांव पारा के उदिम बना तो काजे गोटक दूसर के भाईचारा गोटक सूतुर ने रतो काजे कसन सिखिया देते रला। जोन जोन बाटे पढ़ा लिखा लोग रला हुन बाटचो लोग तो असन बुद्धिजीवी लोग मंचो जोन कथा कहानी आए उन मंचो इतिहास के लिखला मंतर जोन गांव बाटे जे बाटे काहे कि स्कूल नहीं रहे लोग मन पढ़ा लिखा नहीं रला आरु असन बाटे बले कई कसन महान बुद्धिजीवी मन लोग रला जे मंचो कारण ने कहा कि उन समाज चलते रली मंतर पढ़ा लिखा नहीं हो तो कारण ने हुन मंचो मरना हो लेने हुन मंचो जोन विचार आए हुन मंचो जोन काम आए समाज का जे देश का जे पारा का जे काय करला हुन मोरतक होता है बोतुन गेली कसन बल्ले ने हुन बाटे पढ़ा लिखा कोनी माने नहीं रला हुन के कोनी लिखुन बाती नहीं संगाला तेबे आमे हुनचो जोन कर्म आए हुनचो जोन काम आए हुनचो जोन बुद्धि की आए हुनके आमे जानुक लाय नहीं सकूं। तो असन असन जोन कथा कहानी मन बले आसे अर्जसन की आमचो कई सामाजिक है धार्मिक है सांस्कृतिक परंपरा और बले जोन बल परंपरा आसे हुनके तो आमी बनाते हूँ से मानते हूँ से ये गोटक पीढ़ी ले दूसर पीढ़ी जाते जाए से तेबे हुमन एबे मतलब बाचली से मंत्र जोन आमचो महान बुद्धिजीवी लोग रला हनुमन चो जोन काम रली हनुमन चो जोन विचार लोली बले ने समाज के हरि कुदिम ने संगा तो काजे समाज के आगे बड़ा तो काजे हनुमन चो मोर तो के हुताए भूतुन गेली। हुन समय ने हुने बाटे कोनी पढ़ा लिखा माने रतो तू हुनचो कथा कहानी के लिख तो आर्य ब्यामे पढ़तु है हुनचो ज्ञान के जानतु आरु हुन ज्ञान के आमी एबे आमचो जीवना ने आनुक सकतु मंत्र पढ़ा लिखा नहीं हो तो कारण ने हुनचो मरतो के हुनचो जोन ज्ञान आए हुनचो जोन बुद्धि आए हुनचो ताने जोन ताकत रेली हुन सपाए भूतुन गेली। यही काजे आम के पढ़ा लिखा रले ने ये सब के बचाव खुला सकूं आपन मन जानास बले ने आमचो जीवना काजे कई धंधा पानी बल करूं से रोजगार करूं से ये चो काज बले पढ़ा लिखा हतोर जरूरी है। कसन बले दखा आगे जुगे कहीं बिक्री भांजरी करतो राय तो जुगे करून आमी सोली पहली के काम ने आते रलू आरु सोली पहली ने नापुन बाती आमी कोनी भीति नहीं आए ना आले कहाँ है लकीर खींचते रहो ना आले एक पहली दुई पहली काजे गोटी के मंडाते रलू ना आले कहीं कटके के टूटान बाती एक ठान दू ठान असन संगाते रलू तू ये गोटोक भले ने निरक्षता बेराचो गोटोक काम रली अनपढ़ बेराचो गोटोक काम रली मंत्र एवे तो काय की किलो आर बाटेली से आर एक ही जान तो का जाम के पढ़ा लिखा को भी जरूरी है। कसन बल्ले दखा असन है कि काई बल्ले बिक्री भांजर कर तो काजे दखा बल्ले ने कई कसन सामान बल्ले आजकल मन निकल ली से पाकिट मन रली से तुम सामान ने लिख लो रहे से केबे बन ली हुन केब तक काम चो काम ये उकलाए सके दे उन चो कीमत कितलो आए ये सब के आजकल बल्ले ने कहा कि प्रसंस्करण करुन बाती काई बल्ले सामान के बिकतो रहे से आरे चो काजे पढ़ाई लिखा होता बल्ले जरूरी है। आर कोनी बाटे कहीं सामान के गाँव ने जुगे करुन अनपढ़ लोग ठगा जाए सो कहीं बले आप लो अनाज के बिक्री भांजरी करते रहे हाट गाय नेतर आए तो कोचिया मन बल्ले ने आप लो टुकना टाकरा झोला बोरा के झिकुन बाती हुन मन किलो ने मंडाए सोत जोके सोत और सांग सोत कि तू चो इतलो किलो होली इतलो रुपया किलो है मंत्र अनपढ़ होतो के कारण ने जोन किलो बाट के जोन मंडाए सोत उन बाट कितलो चु आए एक किलो आए कि दुई किलो आए पांच किलो आए आमी जानू खुलाई नहीं सकूं जोन अनपढ़ लोग आत निरक्षर लोग आ तो मन तो इतली जानो बोले गोटाक मंडा दिला वजन के तौल ला मंत्रता कितलो किलो आसे एक नहीं जान ला एक नहीं जान तो कारण ने कहा कि आमी ठगाए हों से तो धंधा पानी कर तो लोग काज बोले और कहीं बिक्री भांजरी कर तो लोग काज बोले पढ़ा लिखा हो तो जरूरी है चाहे गाँव चो हो नाले पर शहर चो हो भले ने दोनों चो जो धंधा पानी कर तो लोग के बोले शिक्षा खूब जरूरी है। आजकल तो आपन मन जानास कि बिना शिक्षा चो आमी आगे बाड़ू बले नहीं सकूं और जुगे करुन आमी बले ने आमचो देश बले कृषि प्रधान देश है और गांव में ने जुगे खेती बाड़ी करते रहे से आजकल तो आपन मन जानास कि आधुनिक तरीका ने खेती करते रहोली से बले ने बीज एवल नवा उन्नत किस्म चुईली से खद भात ये बोले उन्नत किस्म चुईली से कहीं कल मशीन आए बल्ले ने खेती बाड़ी कर तो काजे ये मन बल का है कि उन्नत किस्म होली से तो मचो बोल तो गोट ऐसा ना है कि दखा आजी खेती बाड़ी ने बोले आमी बल्ले ने उन्नत किस्म चो बीज मन आनु से आरु दखा ऐसा ना है कि कोनी बोले बीज के आमी घेनु से तो उन बीज ने बोल का है कि लिखा रहे से उन चो रेट बोल रहे से और कौन दिन बन ली और कौन तारीख तक उन रोक लाए सके आरु हुन चल उन पाठ उन काम दे उकलाए नहीं सके ये गोट के बल काय की पढ़ा लिखा रोले ने पढ़ुन बाती हमें जान उकलाए सकूं ना ले जेके हुनचो जोन बनलो बीती जोन तारीख आए उन सरली बले ने काय की हुनचो उपजन बल जुगे हो उकलाए नहीं सके असंग संग काय की कहीं दवाई दारू आम के घेन तो राय लगात राय बले उन हुन बोले आजकल दका इतलो ग्राम मिली ग्राम आए किलो आए, बोले ये सफाए लिखा रहे से कि एक एकड़ ने आम के इतलो किलोग्राम इतलो लीटर पानी के आमी गोरनबाती लगात रहा है। तो ये सब चीज का है कि जब तक आमी पढ़ा लिखा नहीं रहूं तब तक तो आमी जानुक लाए नहीं सकूं। और आजकल देखा बोले न काई बोले योजना चो लाभ धरतो काजे, सरकार चो योजना चो लाभ धरतो काजे का है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बोले ने ऑनलाइन ने आम के फार्म भरुक लाए पड़े से कौन से बोले योजना चो लाभ धरतो काजे, सरकार चो योजना मन चो लाभ धरतो काजे। तो जोन माने पढ़ा लिखा से तो हुन तो जानुक लाए सके दे कि आम के ऑनलाइन काय बीती आए, ऑनलाइन आम के कसन फार्म भरतो रहे। आगे जुगे तो कहा कि आमे कहाँ फार्म मांगलू ना हाल कोने गाँव छो पटवारी ना हाले गाँव छो गुरुजी ना हाले गाँव छो ग्राम सेवक ना हाले कोने गाँव छो असन पढ़ा लिखा आसे जल हूं चल लगने उन बाती भरा बोलते रहूँ और उन भर उन दिलन कहा कि आम फार्म के नुन जमा करते रहूँ। मंत्र कहा कि आजकल बलने ने पेन ने लिखुन बाती फार्म भर तो बीती एक काम बोले धीरे धीरे सरे से मतलब सरली यदा सब काम ऑनलाइन हो से बोले ने आम के कंप्यूटर ने ऑनलाइन फार्म भरता है तेबे हुन योजना चो लाभ धरुक लाए सकवा। तो ये हिसाब ने बोल दकू कि आम के खेती बाड़ी करतो ताने लोग किसान भाई भी मन के बोले खिंडिक ना खिंडिक पढ़ा लिखा होक लाए पढ़े दे तेबे हुन आगे उन्नति बाढ़ती करुक लाए सक दे। आजकल देखा कि बल्ले ने कोनी किसान भाई खूबे बल्ले ने कहा कि कहीं जो खेती बाड़ी कर सो तो आजकल तो खूबे खूबे साग भाजी बल्ले 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ ने जोंदरा लगाए सोत है, मीरी लगाए सोत, सेमी लगाए सोत, बरबट्टी लगाए सोत, भेंडी लगाए सोत, कुमड़ा लगाए सोत। तो ये सपाए बिक्री भांजरी कर तो काज बोले आजकल ऑनलाइन सिस्टम होली से हम होता दुख लाए सकूँ कि ऑनलाइन ने आम चो दखुन बाती कहाँ कौन काय रेट चले से आम बल का है कि होता आम चो जोन फसल क्या है होता कंप्यूटर डालून बाती आम गुलाए देश ने आम के फैलाव को लाए सकूँ कि मचो लगे इतलो माल आसे इतलो सब्जी आसे इतलो अनाज आसे मैं बिकू चाहे से मैं इतलो कीमत ले बिकू आए। तो ये सब चीज के का है कि सांग तो काज बोले का। पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी है। तो होने काजे ये सब मैंने आम के पढ़ा लिखा बल्ले हो तो खूब जरूरी है। और संग संग देखा बल्ले ने कहा कि भाई बहन मन कोनी बाटे गेलू जसन कि आमी भ्रमण ने कहा बुलू गेलू कहाँ कहीं काम ने गेलू तो ऐसो काज बल का है कि पढ़ा लिखा होता जरूरी है। सबले पहले तो ये गोटा है कि आम बस स्टैंड ने जाऊँ से तो ता दखुक लाए पड़े से कौन बस स्टैंड ने गेले तो गाड़ा भर होता बस मन है जोन पढ़ा लिखा आदमी आए होने उन डगरा उक लाए सके कि कौन बस ने काय लिखला से कौन बस कहाँ जातो बीती आए ये तो लिखो रहे से जोन पढ़ा लिखा है उन आदमी जानुक लाए सके। तो ये ता बोले का है कि कितलो आम के तकलीफ होए से जोन पढ़ा लिखा नहीं आता और जोन असन ठान ने जोन अमरुन जाए से होने मन के पूछ ले जानुक हो दे कि अनपढ़ रहे ने कितलो माने के चिपा होक लाए सके। ये आए पढ़ा लिखा चो ताकत, ये आए शिक्षा चो ताकत। बल्ले ने कहा कि आमी कहाँ जावा कहाँ बुलुक जावा कोनी बाटे गेलो ने कहाँ गेलो ने तो कहा कि ये सपाय चीज के पढ़ा लिखा रोलो ने आमी जानुक लाए सकवा। आजकल तो ये बोले आए कि देखा बल्ले ने कहीं बोले घेनू कहीं बोले खाऊं तो ये चुका जो कहा कि मतलब ऑनलाइन भुगतान जेके बोलूँ से ऑनलाइन भुगतान करूँ से पैसा कोड़ी चो झंझट बोले दाए गेली जोन पढ़ा लिखा आदमी आए आमित अपन मन एक कप चाह पिया 10 रुपया हो 5 रुपया हो है कहीं नाश्ता करा कहीं साग भात कहीं खाना खा नाले कपड़ा लता घेन बोले ने कहीं बोले घेन तो काम ने आजकल ऑनलाइन पेमेंट बोले ने ऑनलाइन पैसा दे तो बीती वाट होली से। तो ये सब के दखुन बाती आम के ये भी गोटो गोटक माने के पढ़ा लिखा हो तो जरूरी आए और पढ़ा लिखा रहने ने ते भी आम ये ऑनलाइन भुगतान बोल कर सो मान लो अनपढ़ आसो तो कहीं आम के पैसा बोले दे तो रहा है पैसा आसे जाल उनके बोले आम कहीं घेन उन बात उनके देते रहा है तो उनके कौन नोट कितलो चो आए कौन 20 रहा है कि कौन 50 आए कौन 100 आए कौन 500 चो नोट आए एक बोल तो जोन पढ़ा लिखा आदमी है होनी जानुक लाए सके दे और गेन तोर बोले आमी लाखों कई लाखों करोड़ों गेंद तो राय जाल हो चुका आज बोल पढ़ा लिखा होक लागे से तेबे हुन गेंद तू के रुक लाए सके तो आम चो जीवना ने बल्ले ने कहा कि काई काज बोले पढ़ा लिखा हो तो जरूरी आए और संगे कहा कि आम चो बुद्धि के आम के बड़ा तो काजे आम चो ज्ञान के बड़ा तो काजे आजकल तो आपन मन जाना सी कि समाचार पत्र होली से पत्र पत्रिका होली से कई पुस्तक मन छपली से कई बड़े बड़े महान व्यक्ति मन जोन आम चो देश काजे लड़नता वीर मन बोले आसोत स्वतंत्रता सेनानी मन बोले आसोत समाज सुधारक मन बोले आसोत और कई कसन बड़े बड़े ज्ञानी मन आसोत ए मन चो पुस्तक मन बोले छपली से जोन आदमी जोन माने जोन लेका लेकी पढ़ा लिखा आसो तो मन पढ़ून बाती आप लोग ज्ञान के बढ़ाऊ के लाए सको आप लोग देश के जानू के लाए सको तेबे उनचो जीवना सुधरुक लाए सके दे आमी पढ़ा लिखा नहीं रहलू बोले ना मैं काय करूँ आम की कोनी तो बोले ने कहा कि कथा पुराण सुना लो सन बोले हर समय तो सुना उकलाय नहीं सके केबे के बार कहीं टाइम दे उन बाती सांगे दे सुनाए दे मतलब हर समय तो आम के सुना उकलाय नहीं सको तो ये आम चो ज्ञान के अर्जन कर तो काजे आम चो ज्ञान के बड़ा तो काजे कापी पुस्तक बल्ले ने पढ़ून बाती सीख तो काजे आम के शिक्षा बल्ले ने पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी आए ये समय इली से है और संग संग का है कि आमी बल्ले ने काची संगे आम के बल्ले ने संपर्क बनान बाती रोतो राय ये जो काज बल्ले पढ़ा लिखा लागे से कसन संपर्क बल्ले दखा आमी इतली मैं सांगे से जसन कि आजकल तो सपाए लोग मोबाइल चो गोट ने खबर दिया दी सांगा सांगी होए सोत कहीं अटकनी होली कहीं घर ने कहीं काम पड़ ली आम कोई कोनी सगा बल्ले ने 20-25 किलोमीटर लापी आसोत नाले बस्तर चो कोनी ची बल गाँव ने आसोत सगा मन आपन मन तो जाना ची कि सपाय परिवार चो जो सगा है बेटी बहिना है मामा है काका काकी है बल्ले रिश्तेदारी नाता नारी मन का है कि गाँव गाँव ने आसोत आगे जुगे का है कि आमे बल्ले ने कहीं बिया शादी आए नाल कहीं दिन नहानी आए नाल कहीं आए तो बल्ले हिंडते हिंडते जावन बाती उनके सांगु कुलाए पड़ते रहे तो कितलो दिन लागत रहे जावन मंत्र ये भी तोसन हुआ मोबाइल चो होली से आमी का है कि एक सेकंड ने फोन करून बाती उनके सांगु कुलाए सपू मंत्र ये चो काज बोल का है कि उता पढ़ा लिखा हो कुलाए पड़े से है पढ़ा लिखा आम के उता का है नंबर आए उन नंबर के उता चेपा उकलाए पड़े से नाल काची नंबर के मोबाइल ने सेव करते रहे बल्ले ने उनचो नंबर संगे का है कि नावन ने उनकी सेव करुक लाए पड़े से है और कहाँ के भी कहीं असन काम पड़ ली उनसे संग गोड़ बात करता रहा है भले ने उन मोबाइल ने उनचो नाव के टाइप करुक लाए पड़े से तेबे उनचो नाव होता निकले से तेबे हम उनके मोबाइल ने फोन करून बात कहीं बोल खबर आए नाल कहीं बोल गोट आए हम उनके संग लाए सकूँ उनसे संग गोड़ बात करुक लाए सकूँ या कौन आदमी करुक सके है जो अनपढ़ आदमी है उन तो करुक लाए नहीं सके जोन पढ़ा लिखा आदमी आए होनी करुक लाए सके तो आम के गोटक दूसर संगे बल्ले ने कहा कि संपर्क बनान संगा तो काज बले बल्ले ने गोड़ बात हर समय उनचो संगे आमी नजदीकी ने रहो बल्ले ने गोड़ बात करते रहो कहीं खबर बल्ले ने कहीं सुना सुनी सांगा सांगी हो ये चो काज है आजकल मोबाइल खूबे काम दे से और मोबाइल के चला तो काज बोले खूबे पढ़ा लिखा हो तो जरूरी है है तो ये असन असन बल्ले ने कहा कि काम मन एबे पढ़े लिखा रतो काजे आम के खूबे जरूरी आए और संग संग देखा बल्ले ने कहा कि आजकल तो कंप्यूटर चो जमाना बल्ले होली से है कंप्यूटर ने कई काम मन होए से है मैं आगे बल गोटे उरले कि जो ऑनलाइन कहीं बल फार्म वगैरह भरूँ से कहीं भराऊ से तो कंप्यूटर ले भरसो तो ये चो काजे सीख तो काज बल खूब जरूरी है बल्ले ने कहा कि पढ़ा लिखा हो लेने तेभी आम कंप्यूटर के सीख लाए सकूँ तेभी आम कंप्यूटर के चला उलाए सकूँ आजकल देखा कई कसन आसे कि कंप्यूटर ने जो दिलो रासे कि कई आमी काम करूँ से जाले होता कंप्यूटर चला बेरा हूँ सांगे से कि तू गलत करसी नाल तू अच्छा करसी नाल तू एता जा नाल तू होता कर नाल तू उनके बल्ले ने माउस ने दबाओ होता सांगते जाए से जोन पढ़ा लिखा आदमी है होने तो पढ़ उन बातें समझुक सके और कंप्यूटर जो काम के अनुकूल सके तो असन असन बल्ले ने कहा कि आमचो ये जोन ये तो बल्ले ने ए समिया ने पढ़ा लिखा चो काम होए से है। जसन कि मैं आगे बोले बोलते रहे कि ऑनलाइन से जोन काम आए बोलू कहीं बोले फार्म भर तो काजी आए ना ले कहीं बोले जोन पढ़े लिखे जोन लेखा लिखी मना था आजकल तो बोले ने कहीं से बोले जोन नौकरी पैसा काजी आए ना ले पढ़ाई लिखाई काजी आए है। ये चो काज बोले का है कि ऑनलाइन ने कर सो और आजकल एक आया है कि जैसन कि आमी असन बोले होली से कि ऑनलाइन बीती आमी कहाँ है बस ने जात रहा है कहीं रेल ने जात रहा है कहीं जहाज ले जात रहा है तो आम के टिकट कटा तो काजे बोले घर ले आमी मोबाइल ने करुक ला सकूं टिकट आमी शहर ले रायपुर जात रहा है रायपुर ले शहर ये तो रहा है ना ले कहीं दूसर बाट जात रहा है जहाज चेगुन को दिल्ली जात रहा है भोपाल जात रहा है ना रेल चेगुन बात कोनी आम के रायपुर जात रहा है। तो ये बोल का है कि आमी घर ले ची मोबाइल ले टिकट बोले न होता घेन उकलाय सकूं बोले ने आम के पढ़ा लिखा रोलो नहीं तो आम जानुक लाय सकूं आम रेल चु टिकट के कसन घेनवा जहाज चु टिकट के कसन घेनवा बस चु टिकट तो कसन घेनवा है। उनचो जो टिकट घेन तो जो नियम धियम आए उनके आम के जानुक लाय पढ़े दे ते भी आमी उन टिकट के बोले घेनुक लाय सकूँ बोले ये काम के भी हो दे जे भी आमी पढ़ा लिखा हुआ निरक्षर रले अनपढ़ रले ने आमी बल्ले ने कहा कि ये काम के करुक लाए नहीं सकूं होने का जे मचो बोल तो गोट यही आए भाई बहन मन आम के पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी आए ये समय ने पढ़ा लिखा चो खूबे महत्ता आसे। अपन मन आजकल तो गांव गांव ने अपन घर घर ने दक्षास बल्ले ने कोचो घर का है कि चार चक्का बीती गाड़ी आसे कोचो घर का है कि दुई चक्का बीती गाड़ी आसे कोचो घर का है कि तीन चक्का बीती गाड़ी आसे है। खेती किसानी करते बीता मन लग का है कि ट्रैक्टर आसे कई कल मन आसे मशीन मन आसे तो ये मशीन बोल काय नहीं चलेस डीजल और पेट्रोल नहीं चलेस है। आजकल तो जो पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो सपाय लग गाड़ी मन आसे नानी सुनी गाड़ी तो सपाय घर मन नहीं आसे तो ये गाड़ी मन ने कहीं पेट्रोल सर ली कहीं डीजल सर ली तो आमी पेट्रोल पंप ने जाऊं से और पेट्रोल पंप बेरा आमी होता बोलूं से कि आम के तीन लीटर पेट्रोल देस पांच लीटर पेट्रोल देस बोले होता लीटर दका ऐसे मशीन रहे से उन भर तो बेरा अपन मन दक्षास की नहीं जाले होता सांगे से कि इतलो लीटर होली इतलो लीटर होली इतलो लीटर होली इतलो पैसा होली है। जोन आदमी पढ़ा लिखा है तो उन आदमी का है कि उनके उन मशीन के दक उन बातें सांग जानुक सके हाँ इतलो लीटर होली इतलो पैसा होली नाले एता बोले अभी ठगा खाओ ले सकूँ कसन बल्ले अनपढ़ रहे ने कहा कि मान लो आमी 20 लीटर पेट्रोल डाल लूँ उता 15 लीटर डालू हाँ होली जोन पढ़ा लिखा है उन तो दकुन बातें सांगे नहीं यथा तु 15 लीटर डाल लीस 5 लीटर आउट डाल और जोन अनपढ़ आदमी है हाँ होली बोले ना होली 20 लीटर चो पैसा दे दिलो 15 लीटर डीजल भराओ दिलो पेट्रोल भराओ दिलो ये तो आमी अनपढ़ चो कारण ठगा खा लू कहीं तो यही काजे आमचो जीवना ने पढ़ा लिखा हो तो खूबे जरूरी है। जसन जसन का है कि आमचो देश बल्ले ने कहा है कि बाढ़ते जाए से बदलते जाए से उसन उसन का है कि आमचो जोन काम ने आन तो जोन जिनिस मन है उन मन बोले बदल जाए से जसन कि मैं तुम संग गोटिया ले कि आगे का है कि हिंडते जाते रहलू फिर उतलन का है कि आमी साइकिल ने जाते रहलू ले आसोत तो काय कर सो पीला पीला के आजकल देखो कैसे कि जोन पीला पड़ुक जाते रहे हुन दूसरी तीसरी पढ़ लो पढ़ते पढ़ते पांचवी पढ़ते पढ़ते है हुन घरे गोटक फिर पीला चू जन्म होली है जन्म हो तो के फिर उनके खेला तो कूदा तो किनिक डंड होली बोले ने कहा कि घर तो लोग गांव के लोग तो कहा कि जुगे करो कूली बूती जाए सो तो काय हो ऐसे कि जोन पीला स्कूल जाते रहे पांचवी पढ़ू रहे उनके उन पीला खेला तो काज हट कान दे सो नहीं तु पीला खेला आमी भूती जाऊं दे कूली जाऊं दे ये बोले आम के गांव मैंने धका दे ऐसे तो ये चो ने काय हो ऐसे हुन पीला तो नहीं पढ़ लो और ये तो जो जन्म लो से हुन पीला बोला आगे पढ़ुक लाई नहीं सके तो ये सब चीज के आम के जानते रहे कि जोन बोले पीला मनासोत उनके कसने करुन बोले आम के पढ़ाई लिखाई करत रहे बाधा एवक लाए नहीं देत रहे पीला के अच्छा पढ़ात रहे भले आमी आमचो लगे आमचो गांव ने आमी अनपढ़ आसू एवेबल कई गांव ने अनपढ़ आसो कसन बल्ले का है कि हुन गांव ने हुन पारा ने आगे स्कूल चो जो सुविधा नहीं रही पढ़तो काज पढ़ा तो लिखा तो काज सुविधा नहीं रही तो ये होते रही मंतर एवे तो गांव गांव ने पारा पारा ने स्कूल नासे आमी पढ़ाऊ के लाइ सकूँ है आमचो जो परंपरा ने आगे चलते रही जे कि आमी बोलूँ से कि कई कसन परंपरा मनासे कई कसन बल्ले ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे तो जोन आमचो जीवना का जे बल्ले ने बाधा है आमचो जीवना का जे चीपा है आमचो जीवना का जे अटकनी है तो असन परंपरा मन के टूटा उकलाए पड़े दे जसन की अभी मैं गोट बात करते रहे कि आम अपन मन संगे कि आमचो लगे गाय बैला हासे तो उन पड़ुक जाए से उन पीला तीन चार साल स्कूल ने गेलो तो गाय बैला चरा तो काजे उन पीला के आम स्कूल ले छड़ना उसे पड़ा तो जोन पीला मन क्या है उनके ठेबा तरन आए उनके सिखा तो रहा उन मन के पटा तो रहा आजकल तो कहा है कि घर नहीं आए जल कई हॉस्टल मन आसे हॉस्टल ने भर्ती करात रहा उन मन के पढ़ात रहा आगे सिखात रहा उन लेखा पढ़ लो लिख लो जल का है कि आप लो बल्ले ने परिवार ने जित लो खेती बाड़ी बल आसे उन खेती बाड़ी के अच्छा करुक लाए सके दे आरु आमी जोन डोकरा डोकरी होलू बल्ले ने हुन पीला आमचो जतन नगत करुक लाए सके दे कहीं बीमारी से मारी पढ़ लू बल्ले ने उन अस्पताल ने उकला सके दे है कहीं अच्छा उन पढ़ा लिखा रहे ने सरकार चो योजना मंचो लाभ धुरुन बाती नगद ढंग ले बल्ले ने उन्नत हिसाब ने खेती बाड़ी करुन बाती घर से जोन परिवार आत घर से जोन डोकरा डोकरी आत हुंचो जीवना के अच्छा अस्थिर ने संग उकला सके आम के तकलीफ हो उकलाए नी सके तो रेडियो सुन तो भाई बहन मन शहर चो हो नाले गाँव चो हो जोन अनपढ़ आसोत माए बाप अनपढ़ आसोत नाले काय की कसन और बोले असन कई कासे जोन पढ़े लिखे जोन गांव चो रहतो हो नाल शहर चो लोग होतो हो तो हुनमन आप लोग पीड़ा पीला के पढ़ा तो काजेबल ध्यान दे उन्होंने तो भले अनपढ़ रहा माए बाप अनपढ़ बोल रहा नाले शिक्षित बोल रहा हुनमन जोन बोले पीला घरे आसो जन्म धर दे उन पीला मन के जरूर पढ़ावा जरूर लिखावा तेबे हुन आमचो समाज काजे आमचो परिवार काजे आमचो गांव काजे आमचो देश काजे नगत रह दे यही याद पीला मन आमचो भविष्य तो दखा इतलो मैं अपन मन संग गोट बात कर ले कि साक्षर बल्ले ने पढ़ा लिखा रलो ने निरक्षर बल्ले ने अनपढ़ रोले ने जीवनाचो उन्नति बाढ़ती ने कितलो अटकनी है उकलाए सके कितलो चीपा ये उकलाए सके फिर आरक मैं सरासरी बल्ले से पीला मन के पढ़ावा लिखावा आगे बढ़ावा खूबे खूबे सेवा जोहार।
0: भेंटघाट कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता साक्षरता की आवश्यकता। वार्ताकार थे बलबीर सिंह कच्छ। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। रात के 10 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम कोदो माली। इसमें सुनिए जयमनी और साथियों के स्वर में हल्बी जगार गीत।

लोक गीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में अभी आप सुन रहे हैं जयमणि और साथियों के स्वर में हल्बी जगार गीत। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में अभी आप सुन रहे थे जयमणि और साथियों के स्वर में हल्बी जगार गीत। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
4: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operations was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the 3 Fs. Fuel, fertilizer and forex amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
2: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
4: External Affairs Minister Dr. A. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of the State of United States Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent development in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Home Minister Amit Shah will visit India's border region over the next few days and hold security-related meetings. Sources said he will reach Bikaner, Rajasthan tonight and will visit the BSF's Sanshu border outpost in the morning tomorrow where he will interact with the security forces and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region of Bikaner. Officials said the Home Minister and the Rajasthan government, BSF officials along with the district collectors and superintendent of police from five borders district will attend the meeting. At Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing two gold medal today. And that's the end of the news bulletin.
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। रात के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब समाप्त होता है। कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे।

केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। रात के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब समाप्त होता है। कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे।